kuzumidan druma dalaş o benim. Suhasini, sumaduram haşenim.

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी उठिए, सुबह का समय हो गया है। प्रातःकाल की ये बेला नई ऊर्जाएं, नई संभावनाएं और ना जाने अपने साथ कितने सारे अवसर लेकर आई है। उठिए, जागिए, इस सुबह का आनंद लीजिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उठ के बाहर जाइए, देखिए मौसम का आनंद लीजिए।

लुत्फ उठाइए, प्रकृति का आनंद लीजिए और उस परम पिता परमेश्वर को अपना धन्यवाद व्यक्त कीजिए जिसने आपको एक और नई बहुत ही सुंदर और अद्भुत सुबह दी है, नए अवसर जिस दिन आने वाले हैं। और आकाशवाणी लखनऊ पे हम आपके साथ जुड़े हैं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ। और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त नंदिनी मिश्रा। स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले हैं, आपको हिंदी में समाचार सुनवाने के लिए अब दिल्ली लिए चलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित

नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ में। और नमस्कार लखनऊ में सबसे पहले बात कृषि की, तो कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज जायद फसलों में पोषक तत्व कमी के लक्षण और उपचार, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर काशीनाथ तिवारी। आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जायद फसलों में, धान्य फसलों में जैसे मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं और सब्जियां खेत में हैं
2: जी,
1: तो उनमें पोषक तत्व कमी के कौन कौन से लक्षण हैं और उनका उपचार कैसे करें किसान भाई बहन?
3: पहले हम मक्का की चर्चा करते हैं। जायद में मक्का जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ किसान नगदी फसल के रूप में इसको ले रहे हैं, तो मक्के में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जो है ये पुरानी पत्तियों पर आम तौर पर पीली हो जाती हैं, और अगर फास्फोरस की कमी है तो पुरानी पत्तियों पर बैगनी रंग दिखाई देता है, और ये आम तौर पर जब मक्का घुटने की ऊंचाई का होता है तो दिखाई देते हैं। अगर पोटाश की कमी है तो पुरानी पत्तियां जो है वो किनारे किनारे पीली होती हैं और बाद में ये झुलस जाती हैं, जिसे किसान आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा चौथा पोषक तत्व जो है वो जिंक है। अगर पिछली फसल में जिंक का प्रयोग नहीं किया गया है तो आमतौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रदेश की मिट्टियों में जिंक की व्यापक कमी है तो जिंक के अभाव के लक्षण मक्के में दिखाई देते हैं, और हम इसे एक सूचक फसल के रूप में जानते हैं जिंक की कमी के लिए। होता यह है कि जो बीच वाली पत्तियां हैं, मिडिल लीफ, न तो बिल्कुल ऊपर की और न तो बिल्कुल नीचे की, उनमें सफेद रंग के, पीले रंग के बैंड से धारियां सी बन जाती हैं, जिसे हम व्हाइट बैंड या सफेद पट्टी के नाम से जानते हैं, तो इसे किसान भाई आसानी से पहचान सकते हैं, और ये नसों के बीच में पीलापन आता है।
1: तो इसका उपचार कैसे हो डॉक्टर साहब?
3: अब उपचार के लिए, जैसे घुटने के करीब अगर मक्के की फसल है तो नाइट्रोजन की कमी के उपचार के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, या कह लीजिए 12 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें तो इससे नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सकती है। और जैसे ही यूरिया का बुरकाव खेत में करें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दोपहर के बाद में यूरिया का प्रयोग किया जाए, और प्रयोग के बाद खेत में नमी सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके बाद उसे गुड़ाई करके मिला देना चाहिए, नहीं तो नाइट्रोजन की हानि जो है अमोनिया गैस के रूप में हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, दलहनी फसलें भी इस समय हैं, जैसे लोबिया है, उर्द है, मूंग है,
3: इसमें जो है नाइट्रोजन की खुराक तो प्रकृति की तरफ से पूरी हो जाती है, लेकिन जो समस्या होती है वो फास्फोरस की, पोटाश की, जिंक की, गंधक की भी कमी आजकल दलहनी फसलों में देखी जा रही है। कभी कभी किसान ये कहता है कि फसल की वृद्धि जो है वो रुक गई है, वृद्धि ठमक गई है, और फसल जो है पूरी तरह से गाढ़े हरे रंग की रहती है। तो इस तरह की अगर स्थिति खेत में उत्पन्न होती है तो ये समझना चाहिए कि फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए, एक तो अगर मान लीजिए नमी की

0: कमी है खेत में, तो पानी लगाने से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। अगर इसके बावजूद भी नहीं सुधार होता है तो खेत में फास्फोरसधारी उर्वरक, वैसे तो संस्कृति यही है कि इसको बुआई के समय ही प्रयोग किया जाए, लेकिन किसी भी तरह से अगर किसान डीएपी का प्रयोग बुआई के समय नहीं कर पाए हैं तो उसका बुरकाव अगर लाइन से है तो कूड़ के सहारे कर दें, मिट्टी में उसको अच्छी तरह से मिला दें तो फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, जो 100% घुलनशील उर्वरक हैं उनका प्रयोग भी तो फायदेमंद
0: जी
1: हो?
0: हाँ, अब दो तरह के उर्वरक इसमें आते हैं, एक तो 1844 है, इसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, और दूसरा आता है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास भी है, ये भी दो तरह का आता है, 18-18-18 माने 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस और 18% पोटास। इसी तरह से 19-19-19 भी आता है। अगर पोटास की कमी नहीं है तो हमारा तो सुझाव यही होगा कि 18-44 का जो नाइट्रोजन और फास्फोरस वाला जल विलेय उर्वरक है उसका 1% का घोल बना लें और 2-3 बार पत्तियों पर एक एक सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव कर दें तो इससे फसल अच्छी हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जायद फसलों में पोषक तत्व कमी के लक्षण और उसके उपचार के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 750-510-30-59 7505-103059 750-510-30-59।
1: डॉक्टर केएन तिवारी साहब आज आप कार्यक्रम में आए और जायद फसलों में पोषक तत्व कमी के लक्षण और उनके उपचार के बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि चर्चा समाप्त हुई और इसी के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सकारात्मक विचार सुविचार हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो आइए आज सुनते हैं आज का सुविचार जीवन मंथन।
3: अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अच्छे से अच्छा काम करने पर भी बुराइयां सामने आती हैं, चाहे समाज सेवा का कार्य हो अथवा बड़ा से बड़ा धार्मिक आयोजन हो, और चाहे जितने निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाए फिर भी आलोचनाएं और बुराइयां बाधाएं अवश्य आती हैं, और बहुधा अच्छा कार्य करने वाले निराश हो जाते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में प्रकृति का नियम ही है कि जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलता है। हमारी पौराणिक गाथाओं में समुद्र मंथन का वर्णन आता है, जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। साक्षात ईश्वर ने कछुए का अवतार लेकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष बाहर आया, बाद में अमृत। साक्षात ईश्वर के आदेश से किए गए समुद्र मंथन में पहले विष ही निकला। संदेश मिलता है कि मंदराचल रूपी मन को ईश्वर के आधार पर स्थिर करके बासुकी नाग रूपी प्रेम की डोर से मंथन करोगे तो भी पहले विष ही निकलेगा, और अगर विष को सहलोगे तो बाद में अमृत भी मिलेगा। समुद्र मंथन की तरह जीवन का मंथन भी 16वें वर्ष में प्रारंभ होता है, जिसमें पहले विषय रूपी विष आते हैं। चाहे कोई कितना ही महान क्यों न हो, उसके जीवन में विविध कष्टों के रूप में विष आते हैं। महापुरुष हंसते हंसते विष का पान करते हैं, अर्थात कष्टों को सहन करते हैं, और बाद में उन्हें अमृत के रूप में ज्ञान का अमृत मिल जाता है। जीवन में हर अच्छे कार्य में जो बुराइयां मिलती हैं वे ही विष हैं, परंतु विष को कैसे सहन किया जाए इसका उत्तर भी समुद्र मंथन की कथा में स्पष्ट किया गया है। ज्यों ही समुद्र से विष बाहर निकला देवता घबरा गए। विष की दुर्गंध उनसे सहन न हुई तो प्रभु ने विषपान हेतु शंकर जी को बुलाया। जिसके सिर पर ज्ञान की गंगा होती है वो विष को पचा सकता है। इस संसार में निंदा और कर्कश वाणी का विष सभी को सताता है, परंतु ज्ञानियों को नहीं। जब शिव जी से विष पीने के लिए कहा गया तब वे मान गए, क्योंकि जो दूसरों को सुखी करने के लिए दुख सहता है वही शिव है, तथा जो दूसरों को दुख देता है वो जीव है। अतः शिव ने विष का पान किया, परंतु एक महानतम सूत्र दे दिया कि विष को गले में धारण करना है। पेट में नहीं।

0: ले जाना है और बाहर भी नहीं लाना है। आशय स्पष्ट है कि कर्कश वाणी एवं निंदा आदि का जो विष है उसका स्थान गला होना चाहिए। अगर वो पेट में गया तो मृत्यु हो जाएगी और बाहर निकला तो संघर्ष होगा। समुद्र मंथन का पौराणिक वर्णन अनेक सूत्रों का प्रतिपादन करता है जो जीवन के लिए प्रेरणादायी ही नहीं मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर गौ माता कामधेनु निकली। कामधेनु को ऋषि मुनियों और तपस्वियों को दे दिया गया, अर्थात जीवन में जब भी प्रथम संपत्ति मिले उसी पर उपकार में लगाओ। तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो कीर्ति का प्रतीक है। सद्गुणी को कीर्ति से बचना चाहिए क्योंकि इससे अहंकार आता है, अतः घोड़ा राक्षसों को दे दिया गया। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। इसकी आंखें छोटी होती हैं जो सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, अतः ऐरावत हाथी देवताओं को दे दिया गया। पांचवें नंबर पर पारिजात का वृक्ष और अप्सरा निकली जिन्हें सद्गुणों के प्रतीक देवों को दिया गया। छठे नंबर पर लक्ष्मी जी निकली, वे सर्वगुण संपन्न नारायण का वर्णन करती हैं। लक्ष्मी जी ऋषियों के क्रोधी स्वभाव, देवों के कामी स्वभाव, परशुराम के निष्ठुर स्वभाव, मार्कंडेय ऋषि के अनाशक्त भाव तथा शिव के अमंगल वेश के कारण उनकी तरफ नहीं जाती, अर्थात जीवन मंथन में लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो धीर वीर गंभीर सदाचारी होते हैं। मंथन की क्रिया में सातवें नंबर पर मदिरा आती है, वो राक्षसों को तथा अंत में अमृत कलश लेकर धनवंतरी जी प्रकट होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में विष से अमृत प्राप्त होने का क्रम अत्यंत सांकेतिक है। लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्त करना है तो कर्म करते ही कुबेर का खजाना नहीं मिलेगा, कार्य प्रारंभ करते ही विष रूपी कष्ट प्रारंभ होंगे। विष को धारण करने के बाद छठवें नंबर पर लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी जी भी सीधे आपकी तिजोरी में तब तक नहीं जाएंगी जब तक आपका तिजोरी रूपी मन साफ स्वच्छ और परोपकारी नहीं है। रातों रात अमीर बनने वाले लोग भले ही नकली नोट छापकर या डकैती लूट हत्या या नकली माल बेचकर पैसा कमा लें, परंतु वो लक्ष्मी उनके पास टिकने वाली नहीं है। अतः अमृत मंथन के आध्यात्मिक चिंतन से धैर्य के साथ मेहनत करते हुए ज्ञान का अमृत पाने हेतु अपने जीवन का मंथन करना चाहिए। हमें विश्वास रखना होगा सत्कर्म का मंथन चलता रहे और एक दिन अमृत अर्थात उद्देश्य लक्ष्य और सफलता की पूर्ति में कोई संदेह नहीं होगा।
1: तो आज का सुविचार जीवन मंथन, और इसी के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रवाहित करते हैं अपनी भक्ति धारा को। आरंभ करते हैं आज की आराधना।

प्रभु की लीला अपरंपार है, उसे साधारण मनुष्य को समझ पाना असंभव है। बस हमें तो ईश्वर पर पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उनकी शरण में चले जाना चाहिए और जीवन में जो कुछ भी जिस तरह जिस स्वरूप में आता है उसको प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए।

चिंताओं को कम करने और जीवन में सच्ची शांति पाने का मार्ग है। सच्ची भक्ति बिना छल कपट और लोभ के होती है, जो मनुष्य को धैर्य और सकारात्मकता प्रदान करती है।

भक्ति वो भाव है जिसमें न पाने की चाह होती है न खोने का भय। मन जहाँ पूरी श्रद्धा से ठहर जाता है, आनंद वहीं से फूट पड़ता है।

दिखावे और लोभ से दूर रहकर निष्काम भाव से ही की गई प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार्य होती है। जीवन में सफलता मिले या असफलता, भक्ति मन को शांत रखती है और निराशा को पास नहीं आने देती।

इस भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारी सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें, इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना ही संपन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 201, जिसमें अयोध्या कांड का वो प्रसंग सुनवा रहे हैं जिसमें भारद्वाज मुनि द्वारा विचलित भरत को संवेदना सांत्वना देने का प्रसंग आता है।

भारतवाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरतवाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्या रत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का और आज आपने सुना इसका भाग 201। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ और जैसा कि आप जानते हैं सुबह के 6:55 होने वाले हैं। ये समय है संस्कृत समाचारों का, तो आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अनस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणाम् असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकासपर्यावरणव्यवस्थायाः वर्धमानशक्तेः प्रमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायां उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्ड वृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृङ्खलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब पारी आ गई है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ले। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओ नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मैं नीना सोनकर आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे सेहत के लिए एक चमत्कारी पोषक तत्व माना जाता है। ये न केवल हमारे हृदय और मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है, बल्कि शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। लेकिन हर चीज में संतुलन की आवश्यकता होती है और यही बात ओमेगा 3 पर भी लागू होती है। आज की चर्चा में हम जानेंगे ओमेगा 3 के फायदे क्या हैं और इसके संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं, और आप इसे अपने आहार में सही मात्रा में कैसे शामिल करें। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओमेगा 3 क्या है। ये एक आवश्यक फैटी एसिड है जिसे हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता, इसे हमें अपने आहार के जरिए प्राप्त करना होता है। ओमेगा 3 मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो पौधों में पाया जाता है, EPA इसका मतलब है इकोसा पेंटेनोइक एसिड, और DHA यानी कि डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड जो मुख्य रूप से मछली और समुद्री उत्पादों में मिलते हैं। ये फैटी एसिड हमारे शरीर के कई कार्यों के लिए जरूरी हैं, जैसे मस्तिष्क का विकास, हृदय का स्वास्थ्य बनाए रखना और सूजन को कम करना। ओमेगा 3 के फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ है हृदय स्वास्थ्य में सुधार। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने, ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से ओमेगा 3 का सेवन हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है और धमनियों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा ये मस्तिष्क के लिए भी बेहद फायदेमंद है। ये बच्चों में मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देता है और बुजुर्गों में स्मरण शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं को कम करने में भी ये उपयोगी है। ओमेगा 3 के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के बारे में अब हम बात करेंगे तो ये सूजन को कम करने में मदद करते हैं। गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ओमेगा 3 शिशु के मस्तिष्क और आंखों के विकास में मदद करता है और प्रीमैच्योर डिलीवरी के खतरे को भी कम करता है। अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 के प्राकृतिक स्रोतों की। ये फैटी एसिड मुख्य रूप से मछलियों में पाया जाता है, जैसे सैल्मन,

मैकरल, ट्यूना और सार्डिन। यदि आप शाकाहारी हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधों के स्रोतों में अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। इसके अलावा अलसी का तेल, कैनोला तेल और सोयाबीन का तेल भी इसके अच्छे स्रोत हैं। आजकल बाजार में ओमेगा 3 से समृद्ध दूध भी उपलब्ध है। इन स्रोतों को भी आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ये भी बेहद आसान है, जैसे कि आप अलसी के बीज या चिया सीड्स को सलाद में डाल सकते हैं, अखरोट को स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं या सप्ताह में 2 बार मछली खा सकते हैं। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में ओमेगा 3 से समृद्ध दूध का सेवन भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं इसके संभावित नुकसान की। हर अच्छी चीज की तरह ओमेगा 3 का अत्यधिक सेवन भी हानिकारक हो सकता है। यदि इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये रक्त को पतला कर सकता है, जिससे चोट लगने पर खून बहने का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों की सर्जरी होने वाली हो, उन्हें इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। अत्यधिक ओमेगा 3 का सेवन पाचन समस्याओं का कारण भी बन सकता है, जैसे अपच, डायरिया या पेट फूलना। इसके अलावा कुछ मछलियों में पारा और अन्य हानिकारक पदार्थों का स्तर अधिक हो सकता है, जो ओमेगा 3 के फायदों को नुकसान में बदल सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप सही स्रोतों का चयन करें और इसे संतुलित मात्रा में सेवन करें। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

तो दोस्तों, आज की स्वास्थ्य चर्चा में आपने बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्राप्त की और हमें आशा है कि आप इससे लाभान्वित अवश्य हुए होंगे। और अब समय हो गया है कि हम आपको आज अपनी विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं। आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसका विषय होगा अष्ट लक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। रात 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज सुनिएगा हास्य काव्य पाठ। कवि होंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार। शाम 7:30 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत IIT वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक पांडे से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा, जितना छोटा कण उतना बड़ा असर, नैनो टेक्नोलॉजी के वरदान और नैनो टेक्नोलॉजी के अलर्ट। आपसे बातचीत करेंगे प्रवीण कुमार। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा वाराणसी और मऊ जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा, जिसमें समाज फरमाइएगा मुबाहिसा अदब कल और आज। शुरुआत होंगे डॉक्टर अरशद रिजवी, डॉक्टर लुबना हामिद और मोहतरमा समना जुबैर। कार्यक्रम की मेजबानी करेंगी फैजा जुबैर। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में आज का विषय है बढ़ता उपभोग सिकुड़ते वन, बीमार हो रहा धरती का तन। सुबह 7:30 पर श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम।

आज सुबह। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में राम प्रवेश मौर्य से सुनिएगा सफलता की कहानी सब्जी उत्पादन। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। इसमें डॉक्टर कुलदीप चंद्र रस्तोगी बताएंगे गर्मी में स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। शाम 5:45 पर श्रोता कार्यक्रम सुन सकते हैं नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम होगा जिसमें मोहित कुमार की वार्ता सुनिएगा विकसित भारत और गांवों में हरित विकास। खेती किसानी कार्यक्रम होगा शाम 6:50 पर। इसमें डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह सिक्की की भेंट वार्ता सुनिएगा खरीफ फसलों में समन्वित खर पतवार प्रबंधन। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गुलाम कासिम की कई गजलें। लोक गीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा अंजलि खन्ना और पल्लवी निगम के गाए कुछ अवधि युगल लोक गीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब वो कार्यक्रम जिसकी आपको सभी को प्रतीक्षा रहती है, आज की विविधता।

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि एक विशाल हरा भरा जंगल, पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवाएं, स्वच्छ जल धाराएं और जीवन से भरपूर प्रकृति। अब उसी दृश्य की जगह सोचिए, कटे हुए पेड़, धूल से भरी हवा, सूखी नदियां और बढ़ता हुआ तापमान। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वो वास्तविकता है जिसकी ओर हमारी धरती तेजी से बढ़ रही है। साथियों, मनुष्य की आवश्यकताएं हमेशा से रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में आवश्यकताएं धीरे धीरे अंधाधुंध उपभोग में बदल गई हैं। आज हम पहले से कहीं अधिक खरीद रहे हैं, अधिक संसाधन उपयोग कर रहे हैं, अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं और अधिक कचरा पैदा कर रहे हैं। मोबाइल बदलने से लेकर फैशन के नए ट्रेंड तक, हर चीज की दौड़ में प्रकृति पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। हम भूल जाते हैं कि हमारी हर सुविधा की कीमत कहीं ना कहीं प्रकृति चुका रही है। एक नया फर्नीचर, एक नया घर, एक नया उद्योग, इन सब के लिए जमीन चाहिए, लकड़ी चाहिए, संसाधन चाहिए। और यही कारण है कि दुनिया भर में जंगलों का क्षेत्र लगातार घट रहा है। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, वे धरती के फेफड़े हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये वे वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी को कटाव से बचाते हैं, हजारों जीव जंतुओं का घर होते हैं। जब जंगल कटते हैं तो केवल पेड़ नहीं गिरते बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो जाता है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की जिन चुनौती का सामना कर रही है उसमें वनों की कटाई एक बड़ा कारण है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की लहरें अधिक तीव्र हो रही हैं, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। कभी जो मौसम अनुमानित हुआ करते थे, आज वे अनिश्चित होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने विकास

विकास को केवल उपभोग से जोड़ दिया है। हमने ये मान लिया है कि जितना अधिक उत्पादन और उपभोग होगा उतनी ही अधिक प्रगति होगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या विकास वो है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में डाल दे? क्या विकास वो है जो नदियों को प्रदूषित कर दे, जंगलों को खत्म कर दे और हवा को जहरीला बना दे? सच्चाई ये है कि प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है। कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं नदियां सूख रही हैं, कहीं वन्य जीव अपने आवास खो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इनका असर अंततः मनुष्य पर ही पड़ रहा है। जब जंगल कम होते हैं तो बारिश का संतुलन बिगड़ता है, जब बारिश असंतुलित होती है तो खेती प्रभावित होती है, जब खेती प्रभावित होती है तो खाद्य संकट बढ़ता है, यानी प्रकृति को होने वाला हर नुकसान अंततः मानव जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, धरती हमारी माँ कही जाती है, लेकिन सोचिए यदि कोई माँ लगातार बीमार होती जाए और उसके बच्चे केवल अपनी सुविधाओं में व्यस्त रहे तो क्या होगा? आज धरती का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो हमें पानी देती है, हवा देती है, भोजन देती है, जीवन देती है, लेकिन बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? कटते जंगल, बढ़ता प्रदूषण और असीमित उपभोग। हमें ये समझना होगा कि समस्या केवल सरकारों या संस्थाओं की नहीं है, समाधान की शुरुआत हमसे भी होती है। यदि हम अनावश्यक खरीदारी कम करें, प्लास्टिक का उपयोग घटाएं, पुनर्चक्रण को अपनाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तो बदलाव संभव है। हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि प्रकृति कोई असीमित खजाना नहीं है, उसकी भी सीमाएं हैं। यदि हम आज नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। वे पूछेंगी कि जब जंगल कट रहे थे तब आपने क्या किया, जब नदियां प्रदूषित हो रही थी तब आपने क्या किया, जब धरती बीमार हो रही थी तब आपने क्या किया। और उस समय हमारे पास शायद कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होगा। इसलिए आज आवश्यकता है जागरूकता की, जिम्मेदारी की और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की। याद रखिए, एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। एक जिम्मेदार उपभोक्ता बनना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि धरती के प्रति हमारा कर्तव्य है। आइए संकल्प ले कि हम विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाएंगे। हम अपनी जरूरतों को समझेंगे, लालच को नहीं। हम जंगलों को बचाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि यदि वन बचेंगे तो जीवन बचेगा, यदि प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो मानवता भी स्वस्थ रहेगी। तो श्रोताओं, याद रखिए, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। आइए इस अमानत की रक्षा करें। इसी के साथ अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति। आज की विविधा में बस इतना ही।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कल लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
6: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
4: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंस

0: के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और गोरखपुर में अलग अलग विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री योगी आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ की लागत से 39 विकास परियोजनाओं और गोरखपुर में 295 करोड़ रुपये की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थयात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री सीमा तय कर दी है। अब किसी पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन या प्रति व्यक्ति 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीदा जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतिबंध 90 दिनों के लिए लगाया गया है। देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज वाराणसी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और जैसा कि आप जानते ही हैं आज है शनिवार, तो शनिवार को आता है आपका मनपसंद कार्यक्रम आज सुबह। तो आज की ये पेशकश आपके लिए लेकर आई हूँ मैं नंदिनी मिश्रा।
1: जी हाँ, और साथ में हूँ लवी सिन्हा।
0: तो स्वीकार करें हमारा नमस्कार। एक समय में एक ही काम करो और उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक दो। जब तक आप अपने काम में व्यस्त होते हैं तब तक काम बहुत आसान लगता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आलसी अगर कोई हो जाता है तो फिर बहुत सारे काम मुश्किल हो जाते हैं, है ना?
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का, और उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य आप करिए, बिल्कुल ही आपने महसूस भी किया होगा कि जिस भी कार्य को हम करें पूरे मनोयोग के साथ अगर उसको करते हैं तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होते।
1: जी बिल्कुल, कहा भी जाता है ना, पुरानी कहावत भी है कि दो नाव पर पैर नहीं रह सकते।
0: बिल्कुल सही बात है। आपको जीवन में एक लक्ष्य साधिए और पूरे ध्यान के साथ तो उसको, बिल्कुल अर्जुन ने जिस प्रकार से मछली की आंख फेंधी थी ठीक उसी प्रकार, यानी एक उदाहरण है कि आप अपने लक्ष्य को साधिए, इधर उधर के डायवर्जन से अपने मन को इधर उधर भागने मत दीजिए, विचलित मत होने दीजिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए पूरे योग के साथ।
1: मन पे लगाम लगाते हैं और मन की लगाम को ले चलते हैं उस पतवार।

0: की ओर, जो पतवार हमें बहुत ही सुंदर सुंदर हौले हौले नैया जो है, संगीत की नैया, उसमें प्यारा सा मधुर गीत हम तक पहुंचा रही
1: समझ
0: है।
1: गए, हम समझ गए। चलिए लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी करते हैं।

जी हाँ, जानते हैं ये जो गीत है ये हमने फिल्म डोर से लिया है, और गायक कलाकार हैं शौकत अमानत अली, और गीतकार हैं मीर अली हुसैन, और संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने।

0: जी हाँ, बिल्कुल नहीं रुक सकता है और बिल्कुल नहीं झुक सकता है वो हौसला जो वाकई में हिम्मत से लिया गया, हिम्मत से बनाया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे हौसले की जो पहचान है, हौसले की बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो हमारे बहुत सारे दिव्यांग साथियों ने भी पेश किए हैं।
1: बात तो सही है।
0: जी
1: जीवन में अगर ईश्वर, ये हम लोगों ने देखा है कि कहीं कुछ कमी कर देते हैं तो उसको भरपाई कहीं और दूसरी जगह जरूर कर देते
0: जी
1: हैं।
0: इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है ना कि सिक्स सेंसेस मिल जाते हैं ऐसे ही लोगों को। और यही बात की जाए अगर, तो हमारे बहुत सारे संगीतकार हैं, हमारे गीतकार भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं की हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे खिलाड़ी भी हैं। आप बहुत और
1: हर
0: निक्षेत्रों में
1: क्षेत्र
0: देखिए
1: में
0: और फिर हम दूर क्यों
1: आगे
0: जाएं,
1: बढ़
0: हम
1: रहे हैं।
0: बात करें सूरदास जी की भी
1: बिल्कुल, तो
0: तो
1: हर
0: फिर
1: क्षेत्र
0: हाँ,
1: में
0: हर
1: इन्होंने
0: क्षेत्र में।
1: अपनी
0: जी
1: एक धाक जमाई है और
0: जी
1: अपनी दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब बात हो गई है हौसले की और दिव्यांगों की, अगर हम बात कर रहे हैं तो लवी, इसी बात पे आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय शंकर जी से उनकी वार्ता सुनिए। सशक्त दिव्यांग, समृद्ध भारत, केंद्र सरकार के 12 वर्ष और बदलता जीवन। आइए सुनते हैं इस वार्ता को।
2: नमस्कार श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके सबसे शक्तिशाली लोग कितना आगे बढ़े, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने अपने सबसे जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग को कितना सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया है। आज जब हम केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं तो यह सिर्फ आंकड़ों या योजनाओं का जश्न नहीं है, यह जश्न है उस गरिमापूर्ण बदलाव का जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में आया है। बीते एक दशक से अधिक समय में देश ने सहानुभूति की जगह अधिकार और समान अवसर की नई सोच को अपनाया है। सुगम्य भारत अभियान से लेकर विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी UDID तक का यह सफर बेहद ऐतिहासिक रहा है। आइए सुनते हैं वार्ता डॉक्टर विजय शंकर शर्मा जी से।
3: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ।

और मैं दृष्टिबाधित अर्थ विभाग का पूर्व विभागाध्यक्ष भी हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसको कार्य करते हुए 12 वर्ष हो गए हैं, और इन 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितने कार्य किए हैं दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित, वो वाकई काबिले तारीफ हैं। मैं कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे ये साफ परिलक्षित होता है कि जो वर्तमान सरकार है वह दिव्यांगजनों के प्रति कितना ज़्यादा ध्यान देती है और अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए तमाम वह प्रयास कर रही है जिससे दिव्यांगजन अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। इन्हीं प्रयासों से आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जो दिव्यांगजनों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत बदला है। मैं आपका ध्यान सबसे पहले आकर्षित कराना चाहूँगा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016 में आया। सबसे पहले उसमें यह बात चर्चा करने योग्य है कि किस प्रकार जो अन्य दिव्यांगजन थे उनकी जो श्रेणियाँ थीं वो पहले वाले जो एक्ट थे उसमें अछूती थी, और 1995 का एक्ट हुआ करता था जिसमें केवल 7 दिव्यांगताएं थीं, उनको बड़े अच्छे तरीके से श्रेणीबद्ध करते हुए, 4 श्रेणियों में विभक्त करते हुए कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता श्रेणियों में बांटा गया, जिसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ा, जिसका सीधा प्रभाव उन दिव्यांगजनों पर पड़ा जो पहले सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। विगत कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव शिक्षा नीति निकल करके आई, उसमें दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए जो विद्यालयी शिक्षा है उस पर भी बड़ा ध्यान दिया गया, और जो उच्च शिक्षा है उसके लिए भी एक अलग अध्याय में दिव्यांगजनों की शिक्षा के हितों की बात की गई। आप देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, अर्थात जो भी दिव्यांगजन है वो उन समस्त सुविधाओं तक पहुंच सके, यानी उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके प्रयास किए गए। अक्सर ये देखा जाता है कि दिव्यांगजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनकी लर्निंग को इंश्योर करने के लिए डिजिटल संसाधनों का विकास किया गया। जिस वक्त इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 वर्ष पूर्ण हो गया था, तत्समय भारत के प्रधानमंत्री ने जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, भारतीय सांकेतिक भाषा, उसको एक विषय की मान्यता दी, और उसके बहुत दूरगामी प्रभाव हमारे जो श्रवण दिव्यांगजन हैं उन पर पड़ने वाला है, और किस प्रकार उच्च शिक्षा में और विद्यालयी शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, इन सभी की व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुनिश्चित की गई। बहुत सारी छात्रवृत्ति की योजनाएं चलती हैं, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए योजनाएं हैं। पहले इनके लिए विद्यार्थियों को एक अलग अलग पोर्टल्स पर ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में हमारे पास एक सिंगल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है जिस पर प्रत्येक विद्यार्थी को स्कॉलरशिप के लिए सारी सुविधाएं एक सिंगल विंडो के तहत मिल जाती हैं, और इससे जितने भी विद्यार्थी जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं उनको अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिलती है। आपने ध्यान दिया होगा सरकार ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की थी, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया था। इस कैंपेन का ये प्रभाव पड़ा कि एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, यानी जितने भी सार्वजनिक स्थान थे, सार्वजनिक परिवहन थे, उन सबको दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुरूप डिजाइन किया जाने लगा। आज आप देखेंगे जितनी भी बसेस हमको दिखाई देती हैं वो सब लो फ्लोर बसेस दिखाई देती हैं। विद्यार्थी जो भी दिव्यांगजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में एक व्हीलचेयर बाउंड व्यक्ति भी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो फ्लाइट हो, कहीं पर भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विकसित किया गया जिससे विद्यार्थी अपने घर पर ही रह करके स्वयं और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से अपनी लर्निंग जारी रख सकता है। एक योजना आपको याद होगी जिसे हम एडिप स्कीम के नाम से जानते हैं। एडिप स्कीम में दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार मदद करती है, और इस एडिप योजना में विगत कुछ दिनों में हमने देखा कुछ उपकरण हैं जो मूल्य है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह

से एडिप योजना के में परिवर्तन करते हुए उसका जो प्रति उपकरण मूल्य था उसको बढ़ाया गया। आप देखेंगे कि एडिप योजना में कॉकलियर इम्प्लांट को भी डाला गया जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए प्रति दिव्यांगजन श्रवण बाधित बालक के लिए है, यानी श्रवण बाधित बालक को यदि कॉकलियर इम्प्लांट कराना है तो 6 लाख रुपए तक की सुविधा सरकार अपनी ओर से देती है। इसके अलावा आपने देखा

0: ओर से देती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज हैं जो चलन दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ उपकरण अत्यंत महंगे होते हैं, उनकी भी व्यवस्था जैसे ट्राई साइकिल है, व्हील चेयर है, इन जो हाई एंड हाई टेक डिवाइसेज हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था इस हृदय योजना में की गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके अधीन क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र यानी कंपोजिट रीजनल सेंटर CRCs काम करते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई, जिससे क्षेत्रीय प्रभाव के चलते और जो हमारे देश के विभिन्न भाग हैं उन सभी में जो दिव्यांगजन रहते हैं उनको आप बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसकी सुनिश्चितता सरकार द्वारा की गई। आजकल कौशल विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है और दिव्यांगजनों को यदि आप विभिन्न कौशलों को प्रशिक्षण देते हैं, कुछ कौशलों का विकास उनके अंदर करते हैं, तो वो स्वयं रोजगार उन्मुख होते हैं। और यह भी देखा जाता है कि कुछ स्किल्स को प्राप्त करके दिव्यांगजन बहुत अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे ऐसे कौशल हैं जिनको यदि श्रवण बाधित व्यक्तियों को सिखाया जाए तो वो ऐसे रोजगार में जा सकते हैं जहाँ पर श्रवण की आवश्यकता नहीं हो, बल्कि वहाँ पर तेज आवाज करने वाले स्थान हैं, ऐसी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे वे आसानी से अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो मानसिक बंधित जन हैं उनके लिए भी ये सुविधा है कि जो रूटीन का काम है जैसे शर्ट में बटन लगाना, बॉक्सेस में कुछ सामग्री को निश्चित मात्रा में पैक करना, इन सब का भी प्रशिक्षण देने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए गए हैं। और आजकल के डेट में आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो बजट सरकार की ओर से पेश किया गया उसमें एक टैगलाइन थी, वंचितों को वरीयता, अर्थात जो भी डिप्राइव्ड हमारे देश में लोग हैं उन सब लोगों को हम वरीयता प्रदान करें, टेक्नोलॉजी में वरीयता प्रदान करें, प्रवेश में वरीयता प्रदान करें और प्रत्येक आयाम में उनको वरीयता मिलनी चाहिए। एक सरकार की बड़ी अच्छी योजना रही है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना, जिससे प्रत्येक दिव्यांगजन को एक अलग पहचान मिलती है। इस योजना से एक फायदा यह भी हुआ है कि दिव्यांगजनों को पहचाना जा सके और उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन सुविधाओं को दिया जा सके। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो मूल उद्देश्य है वो बच्चे को शिक्षा तक पहुंचाना है, और यदि शिक्षा तक बच्चा नहीं पहुंच सकता तो शिक्षा को बच्चे तक पहुंचाना है। इन सब प्रयासों से जो भी दिव्यांगजन हैं उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित हुआ है, और जो टेक्निकल सशक्तिकरण है, जो टेक्नोलॉजिकल इम्पावरमेंट हुआ है, आप देखेंगे कितने ही दिव्यांगजन मोबाइल लिए अपना सारा काम अपने मोबाइल से कर लेते हैं। अपने मैं विश्वविद्यालय की बात करूं तो विश्वविद्यालय में दिव्यांगजन, दृष्टि दिव्यांगजन स्वयं अपने टेक्निकल जो मोबाइल है उसका इस्तेमाल करके, स्मार्ट मोबाइल का यूज करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर के फीस इत्यादि तक भी स्वयं जमा कर लेता है, और इससे उसका जो जीवन है वो अधिक गुणवत्ता परक हो गया है। ये देखते हैं कि भाई जो प्रयास लाखों दिव्यांगजनों के लिए सरकार कर रही है उससे हम ये मान सकते हैं कि जो भी दिव्यांगजन हैं वो हमारे देश के एक उत्पादक नागरिक बनने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उत्पादक नागरिक बन भी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।
1: साथियों, 12 साल एक बड़ा मुकाम होता है और इस दौरान बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक सोच तक एक बड़ा बदलाव देखा गया है। लेकिन समावेश की यह राह यहीं समाप्त नहीं होती। असली सफलता तब सिद्ध होगी जब देश का हर दिव्यांग नागरिक बिना किसी बाधा के अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। सरकार ने नीतियां बनाई हैं, मार्ग प्रशस्त किए हैं, परंतु एक संवेदनशील और सुगम्य समाज के निर्माण की जिम्मेदारी हम सभी की है। आइए इस 12 वर्षों के सफर से प्रेरणा लें और ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं जहां किसी की शारीरिक या मानसिक अक्षमता उसकी योग्यताओं के आड़े न आए। इसी अटूट विश्वास के साथ कि बदलाव का यह कारवां आगे भी निरंतर जारी रहेगा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
2: ये वार्ता आप सुन रहे थे सशक्त दिव्यांग समृद्ध भारत, केंद्र सरकार के 12 वर्ष और बदलता जीवन विषय पर। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे रमनप्रीत सिंह। और जैसा कि हम लोग अभी कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आज के विषय की, तो कहीं ना कहीं हम लोग के

0: मन में ना बहुत सारी बातें आती हैं। हम हर बात को हम बड़े आसानी से ग्रहण कर लेते हैं कि हमें यो मिला वो हमने बहुत
1: फॉर ग्रांटेड हम ले लेते हैं।
0: हाँ, उसको हमने खास नहीं लेते ना।
1: एक छोटा सा यही उदाहरण यहीं पे बहुत जल्दी से शेयर करना चाहूंगी क्योंकि आज समय कम है हमारे पास। अभी कुछ दिन पहले ना घर में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम जल्दी जल्दी के फ्रिज बंद कर दो, टीवी बंद, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे तो उनको बंद कर रहे थे। तो सबको बंद करते समय एक ख्याल आया कि ईश्वर ने जो हमें ये शरीर दिया है मानव शरीर, इसमें भी तो कितने सारी मशीन उन्होंने फिट करके दी है, ये दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, हम इन्हें आराम देने की कभी नहीं सोचते।
0: बिल्कुल। और ये तो
1: अपनी ये जबान जो हमारी है इसको कभी भी नहीं रोकते, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, जबान के तहत हम लोग इतना ज्यादा उसके अधीन है, स्वाद के अधीन है हम लोग, कभी ये नहीं सोचते कि शरीर में जो हमें ईश्वर ने ये अनमोल हमारा जो उपहार हमें मिला है इसको भी हम दुरुस्त रखें।
0: जी जी बिल्कुल। तभी तो देखिए फ्लक्चुएशन होता है, बॉडी में भी फ्लक्चुएशन होता है, यानी बीमारियां अपना संकेत देती हैं और कहती हैं जरा हमें भी आराम दो, हमें भी विश्राम दो। और देखिए यही रूप यही रंग हमारे पारंपरिक तौर से जो चलता आ रहा है व्रत उपवास का, जिसे लोग आजकल डाइटिंग पर ले आ जाते हैं, वो शायद वो तो सही नहीं है कहेंगे, लेकिन व्रत उपवास में भी देखिए ना आप अपने शरीर को आराम देते हैं, हर शरीर के हर अंग के लिए सोचा जाता
1: है, बहुत जरूरी है और इस चीज पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जो ईश्वर ने ये उपहार दिया है इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मानव चाहे बहुत कुछ बना लेता है, बहुत
0: आर्टिफिशियल
1: चीजें बन गई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही है ना?
0: और सेहतमंद रहना है तो हमें ऐसी बातें जरूर सोचते रहना चाहिए। और अब सोचते सोचते आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म लिबास से, स्वर लता मंगेशकर के थे, संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने और गीतकार हैं गुलजार।

0: और लवी, यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज हम याद कर रहे हैं उस महान प्रतिभा को, उस महान शख्सियत को जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर,
1: जी
0: जिन्होंने जिन्हें बाबा राव सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। आपका जन्म 13 जून 1879 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। ये विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, के बड़े भाई थे।
1: जी और अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के आप संस्थापक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, और साथ ही

0: ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल में बंद किया था। ऐसे शहीद, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हम सब नमन करते हैं।
1: बिल्कुल, हमारा शत शत नमन।

0: और लवी, आज कुछ बहुत बेहतरीन दिवस भी मनाए जाते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। इस दिवस की शुरुआत 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के प्रति जन सामान्य को जागरूक करने के लिए की गई थी।
1: जी हाँ, और ये एक तरह से बीमारी नहीं है, ये आनुवांशिक स्थिति है जिसमें त्वचा की, व्यक्ति के बालों की, आंखों की, उसमें जो थोड़े से रंग का जो भेद हो जाता है, मेलानिन की कमी होती है जिसे रंग द्रव्य कहते हैं, इसके कारण की त्वचा सूरज की किरणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है और दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसी भेदभाव को मिटाने के लिए और अच्छी भावना एक दूसरे को एक दूसरे के बराबर समझने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, जिसे
0: बिल्कुल
1: हम कह सकते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। और इसी
0: बिल्कुल
1: के साथ ही साथ आज है सिलाई मशीन दिवस। जी, और सिलाई मशीन यूं तो अब बहुत सारे लोगों ने इसका व्यवसाय कर लिया है और बहुत सारे लोग अब इसको अपने शौक में भी लेकर के आते हैं, और ये दिन सिलाई मशीन के प्रति आविष्कार और कपड़ों की सिलाई की कला को समर्पित है।
0: इसके अलावा आज है विश्व सॉफ्ट बॉल दिवस। हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस तेज गति वाले समावेशी और स्वास्थ्यवर्धक खेल को बढ़ावा देना तथा इसके वैश्विक समुदाय को एकजुट करना है।
1: जी, और आज राष्ट्रीय खरपतवार दिवस भी मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है कि हम अपने बगीचे की देखभाल करें और साथ ही साथ शुरुआत करें कि हम कुछ अच्छा खरपतवार, यानी कि कुछ ऐसी जो भी हमारे घर में है हम लगा सकते हैं बगीचे का, उसकी देखभाल के साथ कुछ शांति का अनुभव करें। और देखिए, आज एक बहुत ही बढ़िया दिवस और भी मनाते हैं, क्योंकि
0: बताइए।
1: हर दिन का है, अंतर्राष्ट्रीय कुल्हाड़ी फेंक दिवस है। यूं तो
0: अच्छा।
1: सुनकर के कुछ हंसी आ ही सकती है, लेकिन ये जो खेल है, खेल के तौर पर इसको लिया जाता है, खेल और मनोरंजन के रूप में कुल्हाड़ी फेंकने की कला का उत्सव ये मनाने के पीछे इसका है उद्देश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्हाड़ी फेंक दिवस है, हम इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ अब हम
0: इसके बारे में एक और छोटी सी घटना आज के दिन हुई थी,
1: हाँ
0: बहुत महत्वपूर्ण है, हम भारतीयों को इसके बारे में जानना आवश्यक है,
1: जी
0: इसलिए यहाँ इसका जिक्र कर रही हूँ। 1940 में आज ही के दिन महान भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन के जेल में फांसी दे दी गई थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने लंदन में पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
1: जी
0: तो ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये जानकारी हमारे लिए जानना हमारी बहुत आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: हमारी पीढ़ी इस बात में जागरूक होना चाहिए कि हम लोगों ने कितनी सारी बातों को देखा है, जो गवाह है कि
0: कितने
1: हम
0: त्याग के बाद
1: कितना।
0: ये आजादी पाई है।
1: जी

0: जी जो गीत श्रोताओं आप सुन रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म एक विलन से।
1: जी, और इसे स्वर दिया है अरिजीत सिंह ने, गीतकार है मिथुन, और बहुत
0: संगीतकार
1: ही
0: भी वही है।
1: जी, और बहुत ही प्यारा सा ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसी

0: ईद के साथ ही साथ अब हमें वक्त हो चुका है कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम आज सुबह से ले लें इजाजत।
1: हाँ, तो अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा
0: और लवी सिन्हा को दीजिए
1: अनुमति।
0: नमस्कार।

और इसी के साथ आज सुबह कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। साथ ही संपन्न हुआ आज का नमस्कार लखनऊ। फिलहाल सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचार प्रभात सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने

0: पर चर्चा करेंगे।
1: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड तालेतिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। दोस्तों हम नमस्ते बरेली में आपको आज मिला रहे हैं योग शिक्षिका और साधिका अनुष्का मिश्रा से, जिन्होंने योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। आपको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित भी किया गया है। 8 से 10 अप्रैल तक योग नगरी ऋषिकेश में हुए ऋषिकेश योग महोत्सव में अनुष्का मिश्रा ने योग निद्रा आसन को लगातार 35 मिनट तक सफलतापूर्वक करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। अनुष्का MSc योग विषय की छात्रा भी है। आइए तो हम उनसे मिलते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ अनुष्का जी, आपका कार्यक्रम नमस्ते बरेली में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो अनुष्का जी, आपने योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी है। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। तो योग का शौक यानी कि आदत आपको कब से डली?
1: जब मैं क्लास 7th में थी तब से मैंने गेम्स योगा के खेलने स्टार्ट किए थे। तब मैं पहली बार रीजनल खेलने गई थी और उसके बाद नेशनल भी मैंने खेला। तो एज ए गेम मुझे बहुत पसंद था और फिर ये फेवरेट सब्जेक्ट बन गया मेरा।
0: तो ऐसे कौन से गुरु हैं जिनका आपके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ा और जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में मदद करी?
1: मेरी मैम जो एक बरेली कॉलेज में रही थी, डॉक्टर हिना माहेश्वरी मैम, बाकी फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है मुझे।
0: तो हिना जी से आप कैसे मिली थी?
1: मैंने वहाँ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया था योगा में, तब वो हमारी टीचर रही थी।
0: तो उन्होंने ही आपकी कला को देखते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है ना?
1: हाँ जी।
0: योग के माध्यम से आपको क्या फायदा मिला और हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि योग से क्या फायदा मिलता है?
1: योग से सबसे पहले तो श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य लाभ होता है। जो वर्तमान समय की स्थिति है, सभी को लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही है, हर कोई शुगर BP पेशेंट हो रहे हैं, तो इन सबसे बचाव के लिए तो योग सबसे अच्छा रास्ता है। और मुझे पर्सनली मेरा करियर योगा है, तो मेरे लिए तो योगा सब कुछ है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अगर डॉक्टर से बचना है तो स्वस्थ जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। और भारत तो वैसे भी योग नगरी कहलाता था, क्योंकि योगाचार्य पाषाण काल से ही भारत में विद्यमान रहे हैं और योग नगरी ऋषिकेश इसी मारे फेमस है, क्योंकि वहां पे हमारे योग गुरुओं ने साधना करी थी, कठिन साधना करी थी, है ना?
1: योग का उद्गम ही हमारे भारत से हुआ है
0: जी। और आपने देखा होगा कि बर्फ के बर्फीले पहाड़ों में नाम मात्र के कपड़े पहन के योग ऋषि साधना में लीन रहते हैं। तो मन का वशीकरण, इंद्रियों का वशीकरण भी योग सिखाता है ना? तो आगे आप भविष्य में क्या करना चाहेंगी योग के जरिए?
1: मैं और लोगों को इस तरह जागरूक करना चाहूंगी, चाहूंगी कि सभी लोग योग को अपनाते हुए अपना स्वास्थ्य अच्छा करें और बाकी और उच्च शिक्षा में योग में चाहूंगी। अभी मेरा MSc चल रहा है और भी आगे मैं जाना चाहूंगी।
0: तो अनुष्का जी, आप

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: दोस्तों, जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते 3 दिनों से आंधी व बरसात के बाद जिले में तापमान में काफी कमी आई है। मित्रों, मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि रविवार को तेज धूप होने की संभावना है। जिले में शुक्रवार सुबह शहर और आसपास के क्षेत्रों में घने बादल छाए रहे तथा कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। दिनभर आसमान में बादलों का डेरा बना रहा और बीच बीच में धूप निकलने से उमस का असर भी महसूस किया गया। हालांकि बादलों और हल्की बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से जिले में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बुधवार शाम से लेकर बृहस्पतिवार तक और शुक्रवार को मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा। दोस्तों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही। मौसम में आए बदलाव से किसानों और नागरिकों को भी राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून पूर्व गतिविधियों के कारण मौसम में इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लोगों को यह सलाह है कि बदलते मौसम के बीच स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बहुत ही आवश्यक होने पर धूप में निकलें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के निकलें, साथ में छाता और पानी की बोतल जरूर रखें।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आपने ट्यून किया है 100.4।

FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुन रहे हैं नमस्ते बरेली देवेंद्र रावत के साथ। दोस्तों, रेलवे ने बिहार के पूर्णिया कोट और दरभंगा से पंजाब के अमृतसर के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO सुमित कुमार के मुताबिक पूर्णिया कोट से अमृतसर के लिए 05517 पूर्णिया कोट अमृतसर और दरभंगा से अमृतसर के लिए 05511 दरभंगा अमृतसर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दोस्तों, 13 जून को 05517 पूर्णिया कोट से सुबह 6:30 पर चलकर ये नियमित ट्रेन 14617 पूर्णिया कोट अमृतसर एक्सप्रेस के मार्ग पे ठहराव प्रदान करते हुए चलाई जाएगी। 05511 दरभंगा अमृतसर दरभंगा से 18:30 पे चलकर नियमित ट्रेन 15211 दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस के मार्ग पर ठहराव प्रदान करते हुए अमृतसर के लिए चलाई जाएगी। मित्रों, दोनों ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी एवं शयन श्रेणी के 20 कोच लगाए जाएंगे और सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के होंगे।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: नाथ नगरी का विकास प्राथमिकता, अवैध निर्माण पे सख्ती। मित्रों, बीडीए की नई उपाध्यक्ष बनी वर्ष 2017 बैच की आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे ने शहर के विकास और अवैध निर्माण पर सख्ती जारी रखने की बात की है। उन्होंने कहा कि नाथ नगरी धार्मिक एवं प्राचीन शहरों में एक है। ऐसे में शहर में निर्माणाधीन और प्रस्तावित योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार नाथ मंदिरों की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को और सुदृढ़ किया जाएगा, साथ ही विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। मित्रों, सौम्या पांडे अब तक कानपुर में अपर श्रमायुक्त के जिम्मेदारी संभाल रही थी। उन्हें बीडीए उपाध्यक्ष के साथ संभागीय खाद्य नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मूलतः प्रयागराज की निवासी सौम्या पांडे ने 10वीं में 98% और 12वीं में 97.8% अंक के साथ अपने जिले में टॉप किया था।

नमस्ते बरेली। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए अब सुनते हैं कुछ लोकगीत कार्यक्रम लोकरंग में। कार्यक्रम का पहला लोकगीत है अंशुना सक्सेना के स्वर में।

अभी आपने सुने कुछ लोकगीत लोक रंग में। 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे विशाल भारद्वाज की आवाज में। गुलजार की रचना थी, विशाल शेखर का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पालोमी की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामू गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमजोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है। सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खानपान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे जरूरत से ज्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खानपान कैसा है, उनके डाइट में क्या क्या चीजें शामिल है। कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज्यादा तो नहीं कर रहे? सुनते हैं ये गाना, फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पलोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे।

0: व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य जवान।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त।

0: जान है तो जहान है। अब आप सुनेंगे एक कार्यक्रम, और अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: किसी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया है। अगर हमारी काया शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमें सभी सुख मिल सकते हैं। अगर शरीर बीमार होगा तो खाने पीने का और अन्य सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। कीजिए स्वीकार रविंद्र मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम में आज फिर हमारे मेहमान हैं बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस MRI और डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.4 FM और मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हर घर से जुड़ा है, बदलता हुआ मौसम और हमारी सेहत। आजकल सुबह ठंड, कभी दोपहर में गर्मी बहुत तेज और फिर ठंडी हवा या बहुत ज्यादा आंधी आना, कभी बारिश तो कभी ओले, ऐसा मौसम में बीमारियां बढ़ना स्वाभाविक है, बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। एक सुंदर एक विचार है, लोगों ने कहा है कि हितभुकम मितभुकम ऋतुभुकम, अर्थात जो व्यक्ति हितकारी सीमित मात्रा में और ऋतु के अनुसार भोजन करता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। मौसम क्यों बदल रहा है
1: जी? डॉक्टर साहब, मौसम क्यों बदल रहा है?
2: क्योंकि हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वनों की कटाई होती है या अनियमित वर्षा हो जाती है या बढ़ता हुआ तापमान है, है ना। इन परिवर्तनों को, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रभाव केवल पर्यावरण पर नहीं हमारी सेहत पर ही पड़ता है। WHO के अनुसार बदलती जलवायु के कारण संक्रमण रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे वायरल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, उनका संक्रमण बढ़ जाता है। हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे जो श्वसन तंत्र है, ब्रीदिंग, जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर सर्दी जुकाम जल्दी होगा या वायरल हो जाएगा या एलर्जी होगी या अस्थमा हो जाएगा। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमको, किसी को आप देखते होगे फूड पॉइजनिंग हो गई, किसी को कोई दस्त हो गया या किसी को उल्टी हो रही है या पेट दर्द हो रहा है। स्किन में डर्मेटोलॉजी में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई या कुछ रैशेज हो रही हैं। मतलब बदलता हुआ मौसम होता है तो आप देखते हो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं हर एक के पास।
1: जी डॉक्टर साहब, बदलाव बिल्कुल आते हैं। और मौसम बदलने पर
2: कुछ लोग मेंटली उनको दिक्कत पड़ती है, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान होने लगती है या चिड़चिड़ापन होता है या नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। तो इन सब सामान्य बीमारियां जो लगती हैं बहुत, उनसे हम बचाव कैसे करें? तो बीमारी की बात हो गई, है ना। बचाव कैसे करना है? अगर किसी को वायरल फीवर के लक्षण लग रहे हैं, जैसे बुखार है, हो रही है, तो उसका बचाव क्या है कि भाई हमको रेगुलर अपने हाथ धोते रहें, खाना खा रहे हैं उससे पहले हाथ धोएं, या कभी हम बाहर से आए हैं तो कहते हैं हाथ मुंह पैर धो, वो धोना चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है।
1: इस समय आप सुन रहे हैं बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस MRI और फोकस डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD को। डॉक्टर साहब, पानी पीने के लिए क्या कहेंगे आप?
2: और पानी पीजिए, मतलब ना पानी का कोई तोड़ नहीं है कि आप सोच रहे हैं पानी नहीं पी रहे हैं, है ना। कि गर्म, लोग कहते हैं सर्दी में हम कम पानी पीते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, एक आध लीटर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कम से कम 2.5-3 लीटर तो पानी पीना ही पीना है। फिर अभी जैसे मौसम ये चेंज हो रहा है, अभी बारिश आएगी खूब तेज, है ना, तो कहीं पे पानी भरेगा तो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो क्या करना है उसके लिए?
1: हाँ डॉक्टर साहब, जल भराव के लिए क्या करना चाहिए?
2: पहली बात, घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, चाहे वो गंदा हो चाहे साफ, इससे मतलब नहीं, पानी जमा नहीं होना चाहिए, है ना। पूरी स्लीव्स के कपड़े पहनिए, पूरी बांह के कपड़े पहनिए, है ना। मच्छरदानी का प्रयोग करिए, सिंपल चीज है मच्छरदानी,

0: कोई पैसे नहीं लगने, थोड़े से पैसे की मच्छरदानी आती है, मच्छरदानी यूज करिए।
1: अगर डॉक्टर मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो मच्छर भी काटेंगे तो
0: डेंगू क्या है? डेंगू है, आपको मलेरिया है। जब जैसे कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा, बारिशें शुरू होंगी तो कहीं पानी जमा होगा। लोग कहते हैं यार हम गंदा पानी जमा नहीं होने देते अपने आसपास। गंदा पानी नहीं, साफ पानी भी जमा नहीं होना चाहिए आसपास। पानी जमा हुआ है, पानी हमेशा बहता हुआ अच्छा होता है। पानी अगर जमा है, चाहे वो साफ हो चाहे गंदा, वो गंदा हो ही जाएगा, तो उसको जमा ना होने दें। पूरी स्लीव के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, है ना। सोते मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने। एक बार खरीदेंगे पूरे सीजन चलेगी या 2-4 साल चलेगी, तो जो करिए। फिर एलर्जी है, किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, सीजन चेंज हो जाए तो हो जाता है, तो क्या धूल से बचें, मास्क पहने अगर आपको लगता है तो, और डॉक्टर की सलाह से दवाई लें।
1: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, इस मौसम में लू भी लग जाती है तो फिर क्या करें?
0: हीट स्ट्रोक जो कहते हैं, लू लग जाना जिसे हम लोग कहते हैं अपनी हिंदी में, उसमें क्या है भैया, धूप में अगर आप जा रहे हैं, मजबूरी है जाना, वैसे तो 12 से 3 के बीच में निकलिए मत घर से, ऑफिस के बाहर निकलना पड़ा है, टोपी पहनी है ना। तो ORS लीजिए या नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी है वो पीजिए, नींबू पानी में हल्का सी चीनी हो, हल्का सा नमक हो, नींबू पानी पीजिए, है ना। और अपना वाटर लेवल ठीक रखिए। फिर जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई, जैसे हमारे पुराने टाइम में सनातन धर्म में या आयुर्वेद में कहाँ क्या क्या कहा गया है,
1: जी डॉक्टर साहब,
0: हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि ऋतुचर्या का विशेष महत्व है। मतलब सीजन के अनुसार अपने आप को बदलिए, अपना खाना पीना बदलिए, अपना रहन सहन बदलिए, है ना। गर्मी का टाइम है तो ज्यादा पानी पीजिए, छाछ पीजिए, कितनी अच्छी चीज होती है, सत्तू पीजिए, फल खाइए, है ना। थोड़ा बारिश का मौसम आ रहा है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, हल्का भोजन खाइए, तला भोजन कम कर दीजिए, है ना। तो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल चीजें खाइए। तो हमें मौसम सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, और जिन चीजों का कार्बन फुटप्रिंट कम है उनको यूज करना चाहिए। और ऑफ कोर्स नींद क्या, तो हमें है ही कि कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए। एक बहुत फेमस कोट है कि व्हेन डाइट इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: अगर हमारी डाइट ठीक है, हमारा खान पान ठीक है, तो हमें दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, खाना ही मेडिसिन बन जाता है। बदलते मौसम में क्या खाएं, सबसे लोग कहते हैं बदलता मौसम में तो क्या खाएं, तो यार बदलता मौसम होता है तो 2 टाइम सबसे ज्यादा मौसम बदलता है, जब हमारे नवरात्र आते हैं। आपने कभी लिखा होगा नवरात्र में फास्ट रखते हैं हम लोग, क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि वो तो बदलता हुआ मौसम होता है ज्यादातर, और इसलिए फास्ट रखे जाते हैं कि उस समय हम बीमार ना पड़े। लेकिन इस समय भी जैसे मौसम बदल रहा है, और कभी कभी जैसे कि गर्मी सर्दी बीच में भी हो जाती है, तो उसमें हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो सबसे ज्यादा बढ़िया चीजें हमारे सुपर फूड्स हैं, कुछ जो हमारे किचन में मिलते हैं, इंडियन किचन से मिलते हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन, छाछ या योगर्ट, आंवला, नींबू, तुलसी, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो आपको बीमार पड़ने ही नहीं देंगी।
1: इस समय आप सुन रहे हैं बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस MRI और फोकस डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD को। जी डॉक्टर साहब,
0: और क्या चीज ना खाएं, बासी भोजन ना खाएं, फ्रेश खाएं खाना, है ना। खुले में जो बिकने वाला खाना होता है, चाहे उसमें जाली भी लगी है तब भी मत खाइए, है ना। जो होता है उसको अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडी चीजें मत लीजिए, है ना, और फ्राइड फूड मत खाइए। कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिनको, जैसे बच्चे हैं, उनको उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर रखिए, है ना। आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताते होंगे डॉक्टर की क्या क्या वैक्सीन लेनी, तो वो करें। पानी ऑफकोर्स पीजिए, और जंक फूड ना खाएं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे बुजुर्ग घर की शान होते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए और उनकी भी आन बान शान है, तो उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: बूढ़े लोग हैं तो वो अपना ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये बेसिक चीजें हैं, इनको हमेशा कंट्रोल में रखें और उनको जांचते भी रहें, है ना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम रखें, चलते फिरते रहें, और दवाइयां जो भी उनकी चल रही हैं वो समय पे लेते रहें।
1: डॉक्टर साहब, ये तो हमारे बुजुर्गों की बात रही, और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको अपना ऑफकोर्स संतुलित आहार तो लेना ही होता है ना, और अपने आप को वायरल उससे बचाना ही होता है ना। तो और नियमित जांच कराते रहें। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या मौसम बदलने पे एंटीबायोटिक लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं हम एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं, ऑगमेंटिन खा लेते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं खाओ एंटीबायोटिक। जो ज्यादातर अधिकांश जो वायरल फीवर्स होते हैं उनमें एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं होती है ना। अगर लेनी भी एंटीबायोटिक तो डॉक्टर से पूछ के लीजिए, अपने आप मत लीजिए, है ना। फिर क्या रोज कहते हैं रोज हम काढ़ा पी लें, है ना, या कुछ एक लिमसी टाइप की टेबलेट वो खा लें। अरे लिमसी मत खाइए, नींबू पीजिए, नींबू पीजिए, है ना, आंवला खाइए। कुछ लोग काढ़ा पीना चाहिए तो भैया काढ़ा पीना थोड़ा बहुत ले लीजिए, आपको मन है लेने का तो रोज ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में लीजिए। ज्यादा सेवन करेंगे तो उससे कुछ आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। हाँ
1: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, आपने बुजुर्गों की बात की, युवाओं की बात की, माताओं बहनों की बात की, अब बच्चे भी तो होते हैं जो मन के सच्चे होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?

0: जी
1: बच्चों को बार बार सर्दी क्यों होती है, लोग पूछते हैं। अरे भाई इसलिए होती है सर्दी क्योंकि उनका वो लोग ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के, तो उनको अगर वो हाइड्रेशन प्रॉपर रखेंगे और अच्छा खाना खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, तो जल्दी बीमार नहीं होंगे। लोग पूछते हैं क्या दही खा लें सर्दी का मौसम है या बदलता हुआ मौसम है, तो मैं कहता हूँ देखिए दिन में जो 4 बजे तक दिन के आप दही खाएंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर रात में खाएंगे तो आपको सर्दी हो जुकाम होने के बहुत चांसेस हैं, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। तो प्रिय श्रोताओं, मौसम बदलना प्रकृति का नियम है ना। चेंज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ओनली वन थिंग इज कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। और हमारे हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ इतने सारे मौसम होते हैं, है ना। तो मौसम बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन अपनी दिनचर्या, अपना खान पान और थोड़ी सी सावधानी हमारे हाथ में है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अपने आप रखना चाहिए।
1: तो उसको आप रखिए अपने हाथ में, और अधिकांश मौसमी फल फलों को खाइए। ये जो मौसमी फल क्यों आते हैं या सब्जियां होती हैं मौसमी फल, ये हमको प्रोटेक्ट करती हैं इनडायरेक्टली, जो हमारे जो मौसम बदलाव हो रहा उनको आप खाएंगे। आप जो कोल्ड स्टोर में चीज रखी है उसको खा रहे हैं, है ना लोग, तो वो नहीं। आप मौसमी फल मौसमी सब्जियां खाइए, आप तंदुरुस्त रहेंगे चुस्त रहेंगे। एक हमारा एक और कोटेशन है, लोग जो कहते हैं अक्सर कि ह्यू टेक्स होलसम फूड, होलसम फूड जो मतलब पूरा फूड खाते हैं, तो वो ही दे लिव लॉन्ग एंड फ्री फ्रॉम डिजीज ना। तो जैसे हम सेब खा रहे हैं तो सेब को पूरा खाएं, मतलब उसे काट के रखा हुआ है फिर खा रहे हैं नहीं, उसको धो के बढ़िया करके धोइए, बिल्कुल रगड़ रगड़ धोइए और पूरा खाइए, तो आपको ज्यादा उसका टेस्ट भी आएगा और बॉडी को लगेगा भी ज्यादा वो। श्रोताओं, मैं बस एक, भारत को फलों का देश कहा जाता है ना, और अगर फलों का राजा की बात करी जाए तो अनडाउटली मैंगो है, आम है ना। तो आम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मतलब 2 मिनट की, कि गर्मी के आते ही बाजार दशहरी, लंगड़ा, सफेदा, सबसे अल्फांजो जैसे भर जाता है। लेकिन आम केवल स्वाद ही नहीं, स्वास्थ्य का भी खजाना है ना। उसमें वाइटामिन सी बहुत होता है, आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं जो कि हमें गर्मी से ही बचाते हैं अगर सही से लिया जाए, है ना। आपने देखा होगा आम पन्ना पिया जाता है ना, आम भी खाया जाता है, तो इसको अगर ढंग से लेंगे तो इट विल हेल्प यू फॉर अ बेटर हेल्थ। तो हर चीज की तरह आम भी संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन एक मीडियम साइज का आम खा रहा है तो वो हेल्दी रहेगा, है ना। ऑफकोर्स जो जिनको डायबिटीज है उनको आम नहीं खा सकते बहुत या कम अमाउंट में खा सकते हैं, क्योंकि उससे शुगर लेवल बढ़ सकता है। हमारे बुजुर्गों को एक अच्छी आदत थी, आम को खाने से पहले वो कुछ देर उसको पानी में भिगोते देते हैं।
0: इस समय आप सुन रहे हैं बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस MRI और फोकस डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD को। डॉक्टर साहब, आम को पानी में क्यों भिगोया जाता है?
1: तो पानी में क्यों भिगोया जाता था ना, माना जाता है कि इससे फल की सतह की गर्मी जो होती है वो और धूल मिट्टी साफ हो जाती है। पहले हम आम लेके आए, हमने पानी बाल्टी में डाल दिया, उसके बाद आधे घंटे बाद खाया। अब क्या कर रहे हैं लोग, पानी लेके आते हैं और फ्रिज में डाल देते हैं। जो काम पानी की बाल्टी करेगी आम के लिए वो फ्रिज नहीं कर सकता, उससे गर्मी नहीं निकलेगी इतनी। तो लेकिन आम ही नहीं, हर मौसम के साथ कुछ विशेष फल लेकर आता है प्रकृति। शायद हमें यही संदेश देती है, जो फल जिस मौसम में मिलता है उसी में खाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के चक्कर में मत पड़िए, अंग्रेज मत बनिए, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहिए।
0: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, आपने बिल्कुल भारत भूमि से जुड़ी हुई बात कही है, अंग्रेज मत बनिए, हिंदुस्तानी रहिए।
1: उनके यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें आप यहाँ मत लाइए ना।
0: डॉक्टर साहब, तरबूज भी बेचारा अपनी तारीफ सुनना चाहेगा, आम की तो आपने तारीफ कर दी, अब तरबूज की भी बारी होनी चाहिए ना।
1: तो अब तरबूज की छोटी सी बात कर लेते हैं। तरबूज शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, गर्मी में आता है, इसलिए तो आता है गर्मी में, जिससे कि आपका वाटर लेवल ठीक रहे, है ना। तो इसमें लगभग 90% वाटर होता है, तो इसलिए ये हमें लू और डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो अंत में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य कोई खर्च नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। आपका मतलब आपका जो खर्चा हो रहा है खाने पीने में, वो दिस इज जस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर हेल्थ, और वो भी जो कि आपकी खुद की है।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा।
1: तो इस पे इन्वेस्ट करिए, खुश रहिए, हम तो चाहते हैं बीमार कोई पड़े ही ना।
0: कार्यक्रम का उद्देश्य यही
1: है। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहित अग्रवाल, आपसे विदा लेता हूँ, और आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए।
0: और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है यहीं पर समाप्त होता है। रविंद्र कुमार मिश्र को दीजिए अनुमति। श्रोता नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।
2: आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान थे बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस MRI और फोकस डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD।

दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको बताते चलें, जान है तो जहान है कार्यक्रम आप सुनते हैं माह के प्रत्येक सोमवार और शनिवार को, समय सुबह 9:30 पर। तो सुनना ना भूलिए, नई नई जानकारियों के साथ हम लेकर आते हैं आपका ये कार्यक्रम जान है तो जहान है। जी हाँ, मैं रविंद्र मिश्रा।

0: जान है तो जहान है। अभी आपने सुना यह प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: फिर चला था।

से जग में छम छम दीपक चांद बने।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है, आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: पत्थर के
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पे आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बंपर एंटरटेनमेंट। लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंद। सोशल मीडिया पे आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म रामलखन से, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज की। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय अपूर्वा। आप हैं हमारे पुराने श्रोता बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। रामपुर रोड हल्द्वानी से आप हैं हमारे श्रोता गंगा सिंह रावत। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करूल अमरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। कस्बा सेथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरत जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नन्नी जंगेल ने। दमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शगुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। नाज रेडियो क्लब करेली से हैं निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी। और ये सुन रहे हैं हमें आज बागपत के बड़ौत से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, मैंडी शर्मा। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। आप हमारे श्रोता बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। तो सुनते हैं ये गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म खानदान से। स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार है नक्श लायकपुरी और संगीतकार है खयाम। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा। कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल। ये कमेंट में आया है रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर का। आप हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। शारदू शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। इसी गीत को सुनना चाहा है सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश कश्यप, करिश्मा कश्यप, कुमारी मुस्कान कश्यप। ये कमेंट है चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम। बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई, बैजू से आप हैं राजू जी। ग्राम व पोस्ट हरपुर मटकली जिला बरेली से शारूनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान। इसी गीत को सुनना चाहा हमारे पुराने श्रोता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, सबरीन परवीन, माहिरा नूर ने। बैंक सेंटर चनहटी के पास बरेली से आप हैं हमारे श्रोता विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। पद्म टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से आप हैं हमारे पुराने श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजीन जी शाह। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। दादा बाबू रोड गेढ़े झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से आप हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल और सुनते हैं ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म नसीब से, आवाज है डॉक्टर कमलेश अवस्थी और अनवर की। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम कोठा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी, जबनुशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान ने। ग्राम वीरपुर पोस्ट बिलसर तहसील अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश से विपिन कुमार, शाह के, सपना शाह के, रविंद्र, राजेंद्र, रमेश चंद, राजी, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, कुमारी सुजाता, कुमारी संगमित्रा, कुमारी प्रज्ञा, कुमारी प्रतिज्ञा और इनके मम्मी पापा और समस्त शाह के परिवार। चडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे पुराने लिस्नर रामपुर रोड लिस्नर क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद ने। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाह के, ज्योति शाह के और सक्षम शाह के। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजिए हमारी पुरानी श्रोता हैं आप राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदा कुमार और बिट्टू कुमार। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्स सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह। बोलसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, भीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला

वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। नागपुर महाराष्ट्र से आप हैं कमल सानी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी साहनी। गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से उमपाल गंगवार, अनीता गंगवार और इनके मम्मी पापा। ये फरमाइश है पंजाब के सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। पलारी छत्तीसगढ़ से निर्देश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तनुजा, ईशान देवांगन। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतिक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। मेरठ से आप हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये कमेंट में आया है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा का। बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगावकर, कंचन कारेगावकर, सृष्टि कारेगावकर, समरजीत कारेगावकर का। शनि बाजार कस्बा उभयथी से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता, काव्या गुप्ता। कुम्हार गली श्रीरामपुर से सप्तरंग श्रोता परिवार, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवले, करिश्मा सोनवले, अविका सोनवले, विशाखा सोनवले। कटरचाक का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुरान शहर बरेली से आप हैं अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति, राम, बहादुर मौर्य। तो सुनते हैं फिल्म नसीब का ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मेरे हमसफर, इस फिल्म में आप सुनेंगे महेंद्र कपूर और बलबीर के युगल स्वरों में गीत। धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम लसुडीहा पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद डांगी। राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से हैं रामचंद्र मखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरा मखीजा परिवार। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वन्ना गौहर, मयंक एवं तन्वी गौहर और साथ में हैं इनके जयपाल यादव। ग्राम कुमारपुर, जिला बरेली, थाना अलीगंज, पोस्ट मनोरा, तहसील आंवला से आप हैं मधुसा डोना, मुकेश राणा। मां बम्बलेश्वरी धाम सांकरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, दीपेंद्र साहू। इसी गीत को सुनना चाह है कर्मा चौक लोहारी डी, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से आप है अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, लालिमा साहू, सुशांत साहू, निशांत साहू। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी भी हैं। गांव हीरा वाली फजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। ये कमेंट हमें आया हिंगोली महाराज से, शाहजी बोटखे, श्रीमती नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे, उत्तम चमताले का। मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा, जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, मोहम्मद हसन अंसारी, अजरुद्दीन अंसारी। ग्राम चांदूर बिस्वा, जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से किशुन वानखड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखड़े। ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से आप हैं हमारे पुराने श्रोता राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और RK राजा। मजनू का टीला से आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा,

सागर बालूजा, और सतना मध्य प्रदेश से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। गांव खोकरा वाली श्री गंगानगर से विनोद वारसा, विशाल वारसा, विकास वारसा, रोशनी वारसा, शगुन वारसा। आप हैं हमारे पुराने श्रोता कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। एटा रोज गंडू द्वारा उत्तर प्रदेश से बीबी गौतम, सरता गौतम, कुश गौतम। संजय नगर ऐशबाग से आप हैं हमारे पुराने श्रोता एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घट्टे, संगीता घट्टे, साक्षी घट्टे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टुल, पीबी कुलथे। मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लूबना और यश मंसूरी। दुधी कुशीनगर से आप हैं पारसनाथ कुशवाहा। ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, पदरीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। छोटी बलिया करजत मुंबई से भाई अहमद बागवान, जूही शफत, सदफ इकबाल अहमद, इमरान अहमद। तो सुनते हैं ये गीत मेरे हम सफर फिल्म से।

0: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
1: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
0: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
1: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
0: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
2: समाधि, इस फिल्म में आप सुनेंगे आशा भोसले के स्वर में ये गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आरडी वर्मन। और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बुलडारा महाराज से वासुदेव बोलवडे, अनिता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से आप हमारे श्रोता सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राय नारंग, अंजु नारंग, मोहित नारंग, तनिष तानिया नारंग। आप हैं हमारे पुराने श्रोता मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, राजेश कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, श्रीमती उमती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और साथ में है प्रथव सिंह। ये कमेंट हमें भेजा है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने। गांव बांडी वाला फजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति। डकिया केसरपुर बांसखेड़ा पीलीभीत उत्तर प्रदेश से ए के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश भगवान दास राजपूत, मदन लाल भाई, रवि कुमार वर्मा, नवनीत वर्मा, खुशी वर्मा, संतोषी, प्रिया वर्मा और देवराज। और साथ में है छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। ये कमेंट है एयरपोर्ट रोड वंदा नगर इंदौर से नारायण भाऊ खटसे, ललिता आशा रानी खटसे, संजना परी खटसे, गणेश कार्तिक खटसे, रक्षताई खटसे, कुमारी वंदना। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। देवरी भाटपारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, कन्नू लाल रजक, मुरली छत्री। इसी गीत को सुना चाह लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। ग्राम धुर्रा बांधा भाटपारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़।

से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। आप हैं हमारे पुराने श्रोता, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। ग्राम शिट्टे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा। कस्बा अग्रवाल मंडी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान। इंदिरा कॉटेज दलिताल नैनीताल से आप हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत और साथ में है वान्या। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेटी हंसिका जोशी, बेटी वैदेही जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजाना लेले, नवदीप एले, विश्वदीप एले, गुरांग एले। ग्राम पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये फरमाइश है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब की। गांव टुरवाल जिला नवशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका और वाणी थांदी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश चौधरी। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्य गोस्वामी, अनु गोस्वामी। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशूर रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से हैं सोनम सिंह, अनामिका सिंह। चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी और प्रथम सिंह चौहान। बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करम कर सुनीता करम कर। डोमरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। रेलवे रोड गंजुड़वा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनर अनवार, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम। कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। गंजुड़वा से आप हैं शमसुर कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान और फैजान खान। तो सुनते हैं फिल्म समाधि का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है विजय आनंद द्वारा निर्देशित और देवानंद द्वारा अभिनीत फिल्म ज्वेल थीप से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की और धुन बनाई है एसडी वर्मन ने और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयमान पाल, जयहन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल। इसी गीत को सुना चाहे पीपरपारा, पालचुआ, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर ने। श्री रामपुर भोकर महाराज से हरिभाऊ बिडवे, चिरंजीव अनिकेत सोनवणे, शुभांगी श्रावण, अनिता बिडवे। गांव भोजपुर तगा चिलकाना, सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और मोहम्मद इंतजार। सिद्ध बाबा भाटपारा छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा, शिवम वैष्णव। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनी शर्मा और राहुल शर्मा। राजनगर मधुबनी विहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत चुलबुल राही। बड़बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू। ग्रामबा पोस्ट ललहवा, जिला खीरी से आप हैं विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव। आप हैं हमारी श्रोता इंदौर से ललिता। सदर बाजार कुरावली से ये कमेंट हमें भेजा अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा ने। पोस्ट भोजीपुरा ग्राम उदयपुर बन्नो जन, जिला बरेली से नाजिम अली, वसीम अंसारी, फुरकान, साहिर अली, ताहिर अली। दिल्ली से खालिद अली, अहमद अली, आसिफ मद। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना। आप हैं हमारे पुराने श्रोता ताज मंडी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गणगराड़े, वनिता गणगराड़े, मोहम्मद हसनैन पवार। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से हैं आप है सुनील बाबू, शिवम सिंह, सर्वेश कश्यप, अभयमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम। ये फरमाइश आई है आमा खोलडा रेंगाखार, जिला कवर्धा से राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह नेताम, लक्ष्मीप्रिया, महामाया नेताम। गीत सरगम जय सूर्या नेताम। राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो सुनते हैं फिल्म ज्वेल थीप का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म भीगी पलकें से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं एमजी हशमत और संगीतकार हैं जुगल किशोर तिलक। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है हमारे पुराने श्रोता जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने। आलागंज जनपद शाहजहांपुर से आप हैं डॉक्टर आरवी सिंह, अरिजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, दीक्षा यादव। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली। इसी गीत को सुना जा रहा है ग्राम बड़बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेश नेताम, कुसुम नेताम ने। विराटनगर नेपाल से आप हैं अरुण चंद शर्मा, रेणुका शर्मा और इनके साथी। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेव जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकित जोशी। अनुपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर। कोल सिटी बरकाकाना से अफजालता, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता ने। ग्राम मझुआ गंगापुर भोजपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया और शानूर। पलक नूर, ताज, मोहम्मद अबनूर गुप्ता जी। कांट रोड लदावली से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। अड़ार नाथगाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी वर्मा। रामपुर रोड की लछावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी रिंकी, प्रिखो, प्रियर सिंह, अलका, संगीता, गरीब भाई और श्रीराम राठौर। नई बस्ती डुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। मदरसा गेट भावपुर मणिहाऊ जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। टापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। स्याहरा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात, अदीब, कादिर चौधरी। गांधीनगर गुजरात से कमेंट में भेजा है सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशाने। साशीनगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल। गंजंडवारा उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज, बेगा इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू। चक 15 पीएस जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सरजीत सिंह जोसन, सरजीत कौर जोसन, गुरमन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से।

आदर्शपाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोसन, नावा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरुमंत कौर मनु, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मिक्का बलविंदर विर्क जैतिक विर्क मिका विर्क, अकोट से विनायक बेंडे श्रीमती मंगला बेंडे विजय शुभम बेंडे पवन जरिए के संजीव डावे राव। इसी गीत को सुनना चाहे हमारे श्रोता हैं आप सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना चंचल खन्ना लाडलू लल्ली खन्ना लव खन्ना कुश खन्ना और समस खन्ना परिवार। बी के हितेंद्र हैं लेकिन आपने अपना पता नहीं भेजा है। सरलाही सोनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा रेणु देवी शर्मा राहुल कुमार शर्मा वंदना कुमार शर्मा प्रियंका कुमारी शर्मा उनके साथी। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत। पटियाली रोड गंजुंडवारा से आमिर हुसैन बेगम तैयब शेख फौजिया शेख अहिल हुसैन अरहान हुसैन। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा जसवीर जस्सी और सीता गीता। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले सुजाता हिवराले प्रतीक हिवराले। मुजफ्फरपुर बिहार से आप हैं राजू कुमार बिट्टू कुमार अर्चना कुमारी कल्पना कुमारी मुन्नी कुमारी चांदनी कुमारी नन्नी कुमारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ओजस्वी यादव। रवीर नगर से आप हैं दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायब और लड्डू। तो सुनते हैं ये गीत।

जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। बिल्कुल सही है श्रोताओं, और हमारा जन्म जन्म का साथ है, तो इसी प्रकार अपना प्रेम बनाए रखें। और इसी गीत के साथ आज का सफर आपकी पसंद का संपन्न होता है। देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं सबरंग। सबरंग में पहली प्रस्तुति है फागुनी पाठक के स्वर में ये गीत।

0: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
1: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
0: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
1: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
0: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
2: कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है फाग्नी पाठक के स्वर में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए अब सुनते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के

0: घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो

0: काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके, जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके, मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी, ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाए, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है।

0: रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पांस आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और

पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे।

स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो है वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया, वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जेन अल्फा होगी, बीटा होगी, जेन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा।

0: और न केवल भारत के प्रति अपितु भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है माननीय।

0: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हो, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी।

0: तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आपने सुना केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे FM रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

ровень. वेल, बहुत ही प्यारा सा गाना है, लेकिन ये तो कह रही थी कि जा रही पवन, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि कितनी ठंडी ठंडी प्यारी सी हवाएं चल रही हैं और उसमें एफएम रेनबो पर 100.7 एफएम रेनबो पर प्रोग्राम आ चुका है, जिसके शत्रुपा के तहत आज का जो सेगमेंट होता है वो है फैमिली फन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज फैमिली फन प्रोग्राम करते वक्त बहुत ही खुशी के साथ सुबह से हम इनफैक्ट इस खुशी को मना रहे हैं, वो खुशी ऐसी कि रिमझिम फुहारे हैं, पकोड़े हैं, परिवार है, आप हैं, हम हैं, और उसके साथ साथ लजीज फेवरेट सी डिश भी है जिसका मन पूरी तरह से आपने प्रिपेयर कर लिया कि उस डिश को हम बनाने वाले हैं। और फैमिली में फन को बरकरार करने के लिए कुछ आपने सेलिब्रेट करने के लिए सोच के रखा है, क्योंकि मौसम जब बहुत ज़्यादा साथ देता है ना, तो मौसम में कोई भी मौसम अगर आपका फेवरेबल कुछ चीज़ हो सकती है तो उस मौसम में आपको उसको करने में एक अलग ही मजा आता है, एक अलग ही अंदाज के साथ उस काम को, या चाहे आपने कुछ ट्रिप प्लान कर रखा, कुछ भी आपको करना है, मौसम अगर फेवरेबल है तो बस बल्ले बल्ले हो जाती है। और इन सब चीजों के लिए आप काफी एनर्जेटिक रहते हैं और कभी कभी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए भी ये दिन आपको उत्साहित करता है। तो हम आपसे क्या कहेंगे कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खिड़की खोल के अपनी बालकनी पे, अपने टेरेस पे, अपने आंगन में या घर के बाहर कहीं भी जहां पर आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ करिए और आप अपने फैमिली में या अपने पड़ोसियों के जरिए कुछ किस तरह का एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ये आप आज के दिन पूरी तरह से प्लान कर सकते हैं। और हाँ, आपके मेल के जरिए आप अपने फैमिली में फन आज के दिन कैसे विशेष तौर पर ला सकते हैं वो आपके मेल का इंतजार हम करेंगे। FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। हमें रत्ना शुक्ला है आपके साथ प्रोग्राम फैमिली फन में। आप कहीं मजा ही मेल करके बताइए आप किस तरीके से अपनी फैमिली में आज फन को लाने वाले हैं, या आपने कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज सुनी रखा है जो आप सिर्फ हमसे रेडियो पर शेयर करिए और अपने घर वालों को बिल्कुल मत बताइएगा, ठीक है।

क्योंकि अगर आप घरवालों को बता देंगे तो फिर शाम का या दोपहर का जो सरप्राइज आपने प्लान किया वो कहाँ चल पाएगा, है ना। तो उसको आपको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको हमें मेल करना होगा। तो मेल के करिए, आपके मेल का हम इंतजार कर रहे हैं। और प्रोग्राम फैमिली फन में रत्ना आपसे कहती है बस सुनते रहिए, जुड़े रहिए, कीप लिसनिंग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

वेल प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फंड, 12:19 हो गए हैं और इस प्रोग्राम के साथ साथ हम आपसे क्या कहना चाहते हैं पता है आपको, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कहाँ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम फैमिली फंड में जुड़े हैं, इतना मुझे विश्वास है। चूंकि देखिए आलोक साहू जी का मेल आ गया और लिखते हैं, मैं रायबरेली उचहार धमधमा से हूँ। हेलो मैम, सर आप कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ 8:30 बजे से मूसलाधार बारिश आंधी आई है और उचहार में वहाँ पर बारिश आंधी आई है या नहीं मुझे तो पता नहीं, लखनऊ ऐसा है कि नहीं। और इन्होंने लिखा है कि ये फैमिली में फन करने की जो बात है ना, तो हमारे आगे जो पार्क बनाया है उस पर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कीचड़ सा हो गया है और बारिश के साथ साथ कुछ आसपास की नालियाँ भी हमारी भर गई, तो हम मोहल्ले वाले मिलकर एक कुछ ऐसा हम लोग ने प्लान किया फ़ोन से और उसके बाद हम सब लोग, बारिश हल्की सी थमी है तो हम लोग बाहर आकर उस पानी को बाहर निकाल कर, यानी कि उसकी जो निकासी बना सकते हैं उस पानी की निकासी बना करके, और पानी इतना उसको उसका फ्लो बना दे रहे हैं जिससे हम लोग सब मिलकर ये मोहल्ले वाले सब काम कर रहे हैं, जिससे किसी भी घर में किसी भी तरह के मच्छर पनपना या किसी तरह की कोई बीमारी ऐसा कुछ भी पनप ना पाए और कोई भी बैक्टीरिया हानिकारक वहां पर पनप ना पाए, ऐसे हम आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारी सभी की फैमिली में सारे मेंबर्स जो जो आ सकते हैं जुड़ सकते हैं सब आए हैं और हम लोग बाहर कुछ अच्छा सा माहौल बना, अच्छे से वेदर में कुछ खाने पीने की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग को इस काम को करने के बाद क्या आगे करना है। ये तो बहुत अच्छा सा संदेश आपने, बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात आपने कि इस तरीके से आप फैमिली फंड कर रहे हैं और सब लोग मोहल्ले वाले मिलकर इस अच्छे से काम को भी कर रहे हैं और एक फंड भी आपके बीच में क्रिएट हो रहा है। वैसे यूं भी बरसात का मौसम आते ही कुछ घर का माहौल एकदम से बदल जाता है ना, जैसे पहली बूंद जब गिरती है तो लगता है कि अरे इतनी सुंदर सुंदर खुशबू मिट्टी की जो होती है, चाहे आपके घर में आपके बालकनी में प्लांट्स लगे हों या आपके छत पे प्लांट्स लगे हों या आपके आंगन में प्लांट्स लगे हों या फिर बाकायदा बाग बगीचा हो, कहीं भी हो, तो वो जो सोंधी खुशबू है वो कुछ आपके दिल में ऐसे जज्बात उठाती है कि कुछ हमें अलग सा करना है और कुछ आज के दिन या इस मौसम को हमें किस तरीके से सजाना और सेलिब्रेट करना है ना। बस आप मम्मी को कहते हैं और थोड़ी आपको हेल्प भी करनी चाहिए अगर फैमिली में फंड चाहिए, तो मम्मी से आप कहते हैं कि वो बेसन का डिब्बा उठाइए मम्मी।

बेसन को पेस्ट बनाकर एक अच्छा सा एक बढ़िया वाली जो टेस्टी वाली पकौड़ी होती है उसकी तरफ बढ़ी मम्मी प्लीज। आज खाने वाने के चक्कर में नहीं पड़ी, थोड़ी सी पकौड़ी, थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी कॉफी, अब या फिर कुछ आपका शरबत वगैरह, कुछ जो आप पसंद करते हो, इस तरीके का फन भी आप क्रिएट कर सकती हैं। आप कुछ बस फैमिली में खुशी की मुस्कान, और वो दौर जब एक बार शुरू हो जाता है तो सभी एक दूसरे को कॉपरेट करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हम बस इंजॉय करते हैं। और फैमिली में फन अगर है, मुस्कुराहट है, एंजॉयमेंट है, तो बस क्या ही कहने, एफएम रेनबो है ना साथ आपके।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और देखिए फैमिली फन का सफर यहाँ तक आ गया है, यानी कि 12:29 हो गया। प्रोग्राम फैमिली फन 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं रत्ना शुक्ला के साथ, और हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बच्चों के नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं ना, उनके क्या ही कहने का, उनके माइंड में क्या चलता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छुट्टियों में जब समर वेकेशन होती है तो उनको लगता है कि बस खेल, ये वाला खेल, वो वाला खेल, उसके घर जाना, उसको बुलाना है। और ऐसे में पेरेंट्स कहने की मम्मी पापा की ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका भी मन करता है कि पानी के गड्ढे हो, हम उसमें छई छप छई छपा कि छई ऐसा कुछ करें। और उसके साथ साथ लेकिन बरसात जब होती है तो हमें उसी के दूसरी तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं बारिश के पानी से या बारिश से होने वाले नुकसान से बचाना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके साथ बैठ कर आप बच्चों का फेवरेट डिश जो है ना, उसको आप ज़रूर प्रीफर करिए, क्योंकि आप जो अपने मन का कुछ पकौड़े बना रहे हैं, तहरी या जो भी आप डिश बना रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों की जो फेवरेट डिश है आपके घर में, उसको आप ज़रूर बनाने की कोशिश करिए। उनका भी इंट्रैक्शन आपके साथ बढ़ेगा, साथ में उसको आप भी इंजॉय कर पाएंगे। अगर वो आप वाली सेम डिश को नहीं पसंद करते हैं तो उनकी प्रेफरेंस को आप सामने रखिए, और कुछ अच्छी सी प्यारी सी जो बच्चों की फेवरेट डिश हो, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, जो उनको पसंद हो आपके घर के बच्चों को, उन बच्चों उस डिश को बनाना और उनको पैक करके अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसको भी साथ में लेकर जाना। और साथ में अगर बच्चे थोड़े से छाते के साथ शरारत करते हैं ना, कि छाता बारिश में लेके घूमते हैं, छाता लेकर के थोड़ी शरारत करते हैं, थोड़ा सा छाता लगाया फिर थोड़ा सा हटाया और उसके बाद आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो उनको करने दीजिए, क्योंकि बहुत नुकसान ही होना चाहिए, बारिश से बहुत ज़्यादा भीगे ना ये, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ी तो जो कहते हैं ना कि एक उनकी जो शरारत होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे आपसे अलग ही होते हैं, और उनको कुछ ना कुछ उनके मन का थोड़ा बहुत ज़रूर करने दीजिए, बस हाँ किसी तरह का हार्मफुल नहीं होना चाहिए।

कि मोबाइल कनेक्शन से बच्चों का जो नाता है ना, इस मौसम में आप कहीं ना कहीं उनको सेव कर सकते हैं। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक कई लोगों का फेवरेट सॉन्ग है, उसको आप तक पहुंचाते हैं।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

और देखिए आप लोग भला एफएम रेनबो से दूर कैसे रह सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन और 12:40 हो रहे हैं। मैंने कहा था आप लोग मेल कर सकते हैं आप अपने फैमिली में फन को, यानी कि फैमिली में किसी कुछ भी ऐसा करके कि आपकी फैमिली खुश हो जाए, आपके परिवार वालों के लबों पर मुस्कुराहट है। आप किस तरह से ऐसा कुछ आज मौसम को देखते हुए नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो इन सब बातों के लिए हमें काफी सारे मेल भी आ रहे हैं। आपको मेल आईडी फिर से बता देती हूँ, fmakashwani@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। तो हमें तालिब अंसारी जी ने भी मेल किया है और राजा कटरा बाराबंकी से इनका मेल आया है और इन्होंने कहा है कि बारिश के मौसम में बहुत कुछ आज हम लोगों ने प्लान किया है और उसके करने के साथ साथ हम एफएम रेनबो को सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तालिब जी, आपने ये मेल किया। और इसी के साथ साथ कई लोगों को और मेल आया है, हम उन शिव प्रकाश जी का भी मेल आया है, उन्होंने भी बहुत लिखा है कि कार्यक्रम बहुत प्यारा लग रहा है और नमस्कार उन्होंने भेजा है। इसके अलावा कई लोगों को और मेल आया, लेकिन मेल के साथ हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं कि बच्चों को हम जहां तक बात करते हैं कि छुट्टियों में बच्चे थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत कुछ पढ़ाई से के थोड़ा सा लोड कम रहता है, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें, बहुत कुछ करें, लेकिन हाँ कुछ उनको अपना रूटीन भी फॉलो करना होता है। मैंने बात की थी घर में अगर वाईफाई का कनेक्शन

0: है या आप डाटा से, अगर बच्ची मोबाइल से बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, तो ये मौसम आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके बच्चे स्क्रीन से काफ़ी दूर रह सकते हैं। चूंकि अगर आप सब मिलकर कुछ प्लान करते हैं फैमिली में, फन को थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपका दिल कुछ दिन आपका कुछ स्पेशल सा हो जाता है और बच्चे अपने आप स्क्रीन से दूर होकर आप जो उनके लिए स्पेशल सा तैयार करते हैं उससे आगे बढ़कर उसमें जुड़ जाते हैं। तो बच्चे आपके सबसे ज्यादा किस चीज की फरमाइश करते हैं ऐसे प्यारे से मौसम में, या कुछ ऐसा फन ऐसा क्या उन तक आप ले जाना चाहते हैं, या आज जैसे आज है या आगे की छुट्टियां भी हैं उनमें आप लखनऊ जू उसमें आप उनको ले जाने का जरूर प्लान करिएगा, क्योंकि वो नई नई चीज़ों को देखेंगे वहां पर, नए नए तरह के एनिमल्स देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज देखेंगे, उनके क्या खान पान रहता है वो सब देखेंगे, तो एक उनकी लाइफ में एक नई चीज़ जुड़ेगी और इस तरह के चीज़ों को बच्चों से एक आप लर्निंग प्रोसेस भी हो जाएगा और आपके फैमिली में फन और खुशी का भी एक दौर जुड़ जाएगा। तो बहुत देर से सोच रहे थे कि बच्चों के लिए कोई गाना सुना है, लेकिन पहले से ये गाना क्यों करके रखा था, तो पहले तो ये गाना आप तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद फिर कुछ और आपसे बातें लेकर आपके बीच जुड़े रहेंगे। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम फैमिली फन।
1: अगर कोई मुझसे ये पूछे
2: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
2: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूं क्या
2: क्या

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देखिए, बारिश के मौसम में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम फैमिली फन में आपसे बात कर रहे हैं कि आपके मेल भी आ रहे हैं। मेल की पहले बात कर लेते हैं। हमें रोशनी रावत जी ने मेल कर दिया है और इनका गुड आफ्टरनून भी हम तक पहुंच गया। हम बहुत अच्छे हैं, आपने जैसा कि पूछा, और आप सुबह से प्रोग्राम सुन रही हैं, जुड़ी हैं, आप हमेशा प्रोग्राम में सुनती रहती हैं। फैमिली रेनबो पर आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, उन्नाव जिला उन्नाव से गांव बहमाना तहसील सफीपुर से इन्होंने मेल किया है। चंडीगढ़ से इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रही है और लिखा है कि यहाँ बारिश होने वाली है, बस कुछ देर में घर जाकर पकौड़े चाय बनाकर खाएंगे, प्रोग्राम बहुत कास लग रहा है। भाई, हम लोगों की कोशिश रहती है जितने भी आरजेस आपसे जुड़ते हैं कि प्रोग्राम में कुछ ऐसी बात रहे कि आप सबको अच्छा लगे। अब हम अच्छा लगने की बात करते हैं। हमने बच्चों की बात अभी की कि आप उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन अब हमने स्पेशली इनवाइट किया है और बुलाया है, पता है किनको, तो आप केवल हेलो कह के चुप हो जाइए जरा जनाब
4: जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? 12:49
3: जी। तो इनको आप पहचान तो गए होंगे या नहीं पहचान पाए? बस हमने इनसे केवल इतना ही पूछने के लिए बुलाया है कि आप कैसे हैं, पहले तो ये पूछना चाहो। दूसरा कि आप जब बचपन में बारिश होती थी या पहली बारिश होती थी, उसको किस तरह से एंजॉय करते थे और क्या करने का बहुत ज्यादा मन करता था, ये बताने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं अगले कई घंटे तक रहने वाले आपके साथ शिवम। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम फैमिली फन में।
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताते चले कि ये जो अभी आपने पूछा कि बारिश में लोग क्या करते, देखिए हम लोग के टाइम में स्क्रीन होती ही नहीं थी, और जो स्क्रीन होती थी वो सैटरडे संडे को सिर्फ कुछ टाइम के लिए हम लोगों को मिलती थी। घर वालों से बड़ा लड़ झगड़ के मिन्नतें करने के बाद कुछ प्रोग्राम देखने को मिला करते थे। और बारिश जब होती थी तो बारिश में सिर्फ एक काम कि घर में सभी लोग सो रहे हो, हम लोग छत पे चल के घूमे, और वो भी सर पे पन्नी लगा के। और अभी के लड़के जो, मतलब अभी के बच्चे जो आंधी आती है तो होता है ना, घर के लोग बुजुर्ग कहते हैं कि चलो आंधी आ रही है बच्चे घर में चलो। हम लोग आम लूटने के लिए बागीचे में पहले जाते थे, कौन सबसे ज्यादा आम मतलब लूट के ले आएगा। मतलब हम लोग उस टाइप वाले थे, और अभी भी इसीलिए मैं घर में बदनाम हूँ कि जब भी बारिश होता है तो ये घर में दिखता ही नहीं है।
3: वाकई में अगर बारिश में घर में कैद होके रहे तो फिर क्या, बारिश का मजा कहाँ आ पाएगा? कुछ नहीं तो आपके घर में जो भी खुला स्पेस है उसमें आप जरूर जाइए, क्योंकि बारिश का मौसम खुले ही मौसम है। और शिवम ने तो फिलहाल बताया कि मैं खेत खलियान में निकल जाता था या फिर आम बीनने निकल जाता था, छोटे छोटे अमिया हो चाहे फिर वो बड़े पक्के आम हो, ये सब कुछ इनकी शरारत हुआ करती थी। इसके साथ भाई यही कहेंगे कि छोटे बच्चे हैं तो चलो कुछ
4: बिल्कुल
3: अवॉइड कर देते हैं, उनको एंजॉय करने देते हैं। तो शिवम, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना फैमिली फन
4: जी,
3: तो इसमें कई सारे मेल भी आ रहे हैं।
4: बहुत सारे मेल आए और बड़े ही इंटरेस्टिंग मेल, अपने जो है निजी विचार जो लोग साझा करते हैं ना, तो वो बिल्कुल लगता है कि एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहा है।
3: देखिए, एमा नवाब जी ने तुरंत आपकी आवाज सुनी और नाम बता दिया कि ये शिवम भाई है।
4: ये तो बात है, बिल्कुल सही जवाब,
3: बिल्कुल सही जवाब है भाई। और एमन जी के साथ साथ कई और भी मेल आए हैं, लेकिन शिवम आपसे कहेंगे कि मेरे तो जाने का वक्त आ रहा है। ठीक है,
4: बिल्कुल। हाँ। तो हम अब जो आगे का साथ रहेगा वो भी इसी पे बरकरार रखेंगे। और आपने जो अभी भी जो गाना बजाया ना, हाँ। मतलब उसकी मैं तारीफ जरूर करूंगा कि बेहतरीन गाने। और ये जो बाहर मौसम हुआ है, हाँ। अभी आप सुबह से स्टूडियो में हैं, लेकिन अभी आप जब बाहर जाएंगे तो बिल्कुल एकदम शानदार वाला मौसम आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, खास बात ये भी

0: कि आज लखनऊ में कई जगह आपको भंडारे भी देखने को मिल जाएंगे।
1: यानी कि जो आप बेहतरीन सी सब्जी और पूड़ी खाकर आए हैं, जिसकी खुशबू आपने यहाँ पर केवल बताई है, लेकिन उसके जायका तो मिली नहीं भाई, क्योंकि आप लेकर नहीं आए।
0: क्योंकि जब हम आ रहे थे तो अभी आरती वारती हो रही थी, पूजा हो रहा था, तो अभी 1:30-2 बजे के बाद मिलने का प्रोग्राम था।
1: अच्छा, तो आपने थोड़ा सा वहाँ पर चखा है तो वो हमें अच्छा लगा सुनकर। लेकिन इसके साथ हम आपसे कहेंगे कि भाई 12:52 हो रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फंड में, आपने जो कुछ भी आज प्लान करके रखा है आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए या कुछ अच्छा महसूस कराने के लिए अपनों को, तो उसको जरूर करिएगा। बिल्कुल भी टालिएगा मत, बिल्कुल भी आलस मत करिएगा। और 100.7 FM रेनबो अपने कार्यक्रमों के जरिए आप तक कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ाता रहता है कि आप कहीं ना कहीं प्रेरित हो और कुछ अच्छा करने की सोचें। तो आपको एक गाने के साथ छोड़ के जाते हैं, और शिवम को तो हमने सौंपी दी है कमान, तो शिवम आपके साथ अगले प्रोग्राम में रहेंगे। इसके साथ जितने भी लोगों का मेल आया उन सबका हम दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। और प्रोग्राम में शिवम
0: जी,
1: ये बताइए कि आप अगला प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोगों के मेल भी शामिल करेंगे।
0: जी हाँ, प्रोग्राम होगा,
1: बढ़िया सा टॉपिक भी देंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, तो जो मैं
1: जी टॉपिक भी देंगे।
0: जी हाँ, तो आज का जो मैं टॉपिक देने वाला हूँ वो थोड़ा सरप्राइज है, तो अभी एक बढ़िया सा गाना सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक जरूर रहेगा कि आपके जो सीने में कहीं दबी सी वो जो एक शिकन है वो जरूर आज बाहर निकल आएगी।
1: यानी कि कुछ अलग सा करने का अगर मन है तो वो तो हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपके दिल में दबी सी जो चिंगारी है उसको भी आप निकाल सकते हैं, अपने मेल के जरिए प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। बाकी आगे आपको शिवम बताने वाले हैं। तो ये गाना तो मैं प्ले कर देती हूँ, चूंकि मैंने वादा किया था बच्चों के लिए ये गाना जरूर आने वाला है। फिलहाल रत्ना शुक्ला कहती है 100.7 FM रेनबो से आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिए, मौसम को एंजॉय करते रहिए, और शिवम के साथ अगले कुछ घंटे FM रेनबो पर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी।

अभी आपने सुने FM रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए सुनते हैं श्रोताओं के प्यारे प्यारे पत्रों पे आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत के आज के सुरीले और कर्णप्रिय गीतों के सुरीले सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हमसफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। गंगा जमुना सरस्वती, इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत। शब्द रचना है इंदिवर की और धुन बनाई है अनु मलिक ने, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ये खत हमें भेजा है सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, कुसुम गौड़, सुयश आशीष, राधिका गौड़ ने। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लाल मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। आप हैं परिमहल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नवील, एम असलब सैफी। गंजुडवारा से शमसुल कमर रही। बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर और तनु करमकर। मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आन्या अनाया, नेहा सागर, गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्मू कुरैशी, सुधीर नूतन। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

थानेदार। इस फिल्म में आप सुनेंगे बप्पी लहरी, अनुराधा पटवाल और साथियों के स्वर में ये गीत। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से आप हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी और मुस्कान। ग्राम व पोस्ट हरपुर मटकली बरेली से शारून अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वे सैनी और डीजे प्रधान। इसी गीत के लिए हमें खत भेजा है मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला।

लाहौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। बीजना मुरादाबाद से आप हैं राजवीर सिंह यादव, कुनाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव। यहीं से हैं यूनुस खान, सरताज बेगम और सोफिया खान। अलीगंज रोड ग्राम महेलिया से हसमत खान, हशमत खान, अजमत खान और डालमिया। वार्ड नंबर 6 आंवला बजरिया से मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, कासिम अंसारी, असलम इकरम, इर्तिका कौसर, आयरा कौशर, मोहम्मद दानियाल अंसारी। मोहल्ला गड़ैया बरेली से मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी, बेबी। ये खाता में भेजा है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जमीन शबेगम, अक्रम सैफी, आबाद खान ने। आप हमारे पुराने श्रोता बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कहका शाह, दानिश आदिल और शफक। गुजरात सीमंदर पार्क वीरम गांव से आप हैं अजीत प्रेमिला, भावेश, सन्नी भावसार, हेतल कृष्णा, जयमीन भावसार। तो सुनते हैं थानेदार फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म बीबी नंबर वन से। आवाजें हैं अनुष्का, श्रीराम और अभिजीत की। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक। और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा। ये पत्र हमें भेजा है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से सी आर कुलकर्णी। आप हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता और सुनीता यादव। फरीदपुर ककराला बदायूं से आनंद यादव, सनोज यादव, सूरज श्री यादव। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इरफान, आमिर, फैजल, इकबाल, अफजाल, संजीदा भी, शायन अभी, अफजल, सानिया, सैबिर, सैर, सबनूर, अमान, मोनिस और इनके मम्मी पापा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। इसी गीत की हमें फरमाइश भेजी है मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई ने।

नमक हलाल। इस फिल्म में आप सुनेंगे आशा भोसले के स्वर में ये गीत। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं बप्पी लहरी और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम बूढ़ गहन से आप हैं राम दुलार प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंदेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति, नए मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी, अब्दुल सलाम, अख्तर, हिना और नाजरीन, शेरगढ़ बहेड़ी से लगे इदरीसी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अतीक, यास्मीन, शिवाबी, सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 6 इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव, गोलू, मोनिका और आशा श्रीवास्तव, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से ये खत हमें भेजा है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोता मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, मौला अफगानान, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत, भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं मुकेश शर्मा, सरता शर्मा, गौरव शर्मा और करीमा शर्मा।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म तलाल से, आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं बप्पी लहरी, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। ग्राम ममलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। ये खत्म है भेजा है मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पनीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मीर मनमोहन जी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्य भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश ने। नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी, मैजबी निसार, बेटी नुजरत फातमा, अबरार अहमद, इकबाल, इसरार, तस्लीम रजा और मुन्ना भाई। आप हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जय प्रकाश, राहुल, नूर, अमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल। आप हैं हमारे पुराने श्रोता खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। तो सुनते हैं फिल्म दलाल का ये गीत।

0: दरार।
1: इस फिल्म में आप सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू को। गीतकार हैं रानी मलिक और संगीतकार हैं अनु मलिक। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई और विक्की भारद्वाज। आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख। इसी गीत के लिए हमें खत भेजा है अशरफ खां, पानी की टंकी के पास। बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वन्ना शर्मा, महिमा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश, कनिष्का और घर के सभी लोगों ने। दौलतबाद मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। मोहल्ला किशोर बाजार बिहारीपुर सिविल लाइन से कुंदनलाल सागर, ब्रजेश कुमार सागर, विपिन कुमार सागर, कल्पना सागर, पूजा सागर, बेटी नैना सागर और समस्त सागर परिवार।

कर्ज इस फिल्म में आप सुनेंगे किशोर कुमार के स्वर में ये गीत। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से आपने हमें फरमाइश भेजी है राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया, तनिष सेतिया ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंतशाह, मोहम्मद शादाब खत्री। ये खत हमें भेजा चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। ये फरमाइश है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, उस्ताक अहमद, बेबी मंतशाह, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म सागर से, आवाज है एसपी बाला सुब्रमण्यम की और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। फूलबाग किला छावनी बरेली से विशनदत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु मिश्रा, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ उजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत उजरे, रेहान शेख। महाराष्ट्र झिंगोली से शाहजी बोटखे, नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे। कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबे नवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। मौलागढ़ नई बस्ती से तनु अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन, रिदा, एजा और मम्मी पापा। बटिंगकेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी रामपुर से अमरजीत जी, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। रामपुर और हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत, मोहन रावत। गणेश कॉलोनी चंदौसी से देवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रिंस प्रशांत, कार्तिक और पवि। पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुरेंद्र शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर। उगती बदायूं से डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता और डी के हिटलर। तो सुनते हैं सागर फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ आज का अनुरोध गीत संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए, नमस्कार। और आगे के कार्यक्रमों में आपके साथ होंगी हमारी साथी मुनव्वर जहां।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत देवेंद्र रावत के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम जनमंच। दोस्तों, आज का विषय है कृषि का बदलता स्वरूप और आम किसान। आज के प्रतिभागी हैं बाबूराम नौगवा वीरान, बद्रुल हसन बरखना हरचंदपुर, रामचरण नौगवा वीरान। संचालन किया है रविंद्र कुमार ने।
1: मैं रविंद्र कुमार लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम जनमंच, और आज के हमारे जनमंच कार्यक्रम का विषय है कृषि का बदलता स्वरूप और आम किसान। इस विषय पर हमने बातचीत करने के लिए आज स्टूडियोज में आमंत्रित किया है श्री बाबूराम जी को, जो कि नौगमा वीरान गांव तहसील नवाबगंज जनपद बरेली से हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं श्री बद्रुल हसन जी, जो कि बरखना हरचंदपुर से हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, और हमारे साथ श्री रामचरण जी भी हैं, जो कि नौगमा वीरान से हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: अब हम बात करते हैं श्री रामचरण जी से। रामचरण जी, आपकी कितनी उम्र होगी?
3: हमारी 60 साल।
1: 60 साल है। बचपन से गांव में रह रहे हो?
3: बचपन से गांव में रह रहे हैं सर।
1: अच्छा, खेती बाड़ी कब से कर रहे हो?
3: जब से 16-15 साल तो सब खेता खेत में चल रहा है।
1: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये है कि काफी समय से आप
3: खेती बाड़ी काम करते।
1: अब हम जानना चाह रहे हैं कि पहले कैसे खेती करते?
3: पहले बैलन से जोतते थे। बैलन से यूरिया खाते, देसी खाद डालते, पम्बे डंगर निकलिए। अब ट्रैक्टर चल पा रहे हैं। अब एमपीओ वाला गाँव नहीं होता है। पहले राइट रूट चलते, अब कुछ ना, अब ट्यूबवेल चल रहा है फटाफट, नहरा है ना।
1: बिल्कुल। तो पहले की खेती में जो बदलाव आज आप देख रहे हो, पहले का उत्पादन भी जाते हो लगभग?
3: पहले कुछ ना हो तो भाई 30-40 किलो बीघा हो, तब तो ये जाता अच्छो खासो हो रहा पैदा।
1: अच्छा अच्छा।

0: मगर एक बात और देखी होगी आपने रामचरण भैया, पहले बीमारी इतनी ना ही।
1: ना बीमारी कतई का ना, बस चना मटर खाते कुछ ना हो तो, अब बहुत विकट बीमारी है,
0: तो चना मटर से क्या फायदा हो
1: बस कोई बीमारी ना आई।
0: तो अब आज की खेती में क्या अंतर देख रहे हो?
1: अब ये ज्यादा दवाई स्प्रे हो रही, बहु हो रही, तो इसके मारे ज्यादा बीमारी दौड़ रही।
0: ज्यादा बीमारी दौड़ रही। अब बात करते हैं बाबूराम भैया से। बाबूराम भैया आपकी उम्र
2: हमारी 60-65 साल है लगभग।
0: 60-65 साल उम्र है, तो खेती कौन से कर रहे हो?
2: खेती तो हम बचपन से कर रहे हैं।
0: अच्छा, पहले कैसे खेती होती?
2: पैसे हल हल से होती थी, भैंसा भी पालते थे और गाय भी पालते थे, और वो ही अपने हर चलाते, डल्लभ भी चलाते थे, काश्कारी करते थे। बचपन से करने लगे, हमारे बाप कमजोर थे, सांस की बीमारी थी, तो हम बचपन से काश्कारी कर रहे हैं।
0: उस समय पढ़ाई लिखाई को क्या माहौल हो गांव में?
2: गांव में पढ़ाई लिखाई जिसको मान ली पढ़ाना चाहते थे वो पढ़े थे, हमारे तो बाप हम अकेले पढ़ गए तो नहीं पढ़ा पाए, और कमजोर हो गए तो हमने काश्कारी पकड़ ली।
0: काश्कारी पकड़ ली,
2: जी
0: जैसो परिवार हो तो वैसे काम काज चलो कर दो,
2: हाँ
0: मगर जब देखते हैं कि पहले कितना तो प्रेम हो तो गांव में आपस में।
2: हाँ प्रेम बहुत थे, अब हम भाईचारा थे, अपने मिलकर रहते थे, कोई लड़ाई वगैरह नहीं करते थे। अब तो माली बहुत बेसाह मामला पड़ गया, अब तो हर आदमी।
0: आपने अपने जमाने में कैसे देखी खेती, कैसे होती पुरानी खेती?
2: पुरानी खेती हम अपने काश्कारी हर से करते थे, देसी खाद डालते थे, रेट था हमारे पास वो चलाते थे, उससे सिंचाई करते थे, बोरिंग तलक नहीं थी। आप फिर हमारी बारात उरात हो गई, उसके बाद में मंजन उंजन लिया, फिर बोरिंग से सिंचाई करी।
0: तो जैसे पहले ज्यादा मेहनत थी खेती में, आज ज्यादा मेहनत है?
2: अब इस समय जमाने में ज्यादा मेहनत है, पहले जब मेहनत नहीं थी इतनी, और सुरक्षित रहते, मजबूती शरीर में, अपने खूब अपने खाते पीते थे। अब तो सारी बीमारियां हैं, अब तो कोई काम करने ही नहीं मिलता है। पहले कोई बीमारी ऐसी नहीं थी, अपने आराम से खाते थे, खूब बोई पैदा करते थे, हर चीज पैदा कर लेते अपने खेती में, बगैर खाद की खेती थी, कोई बीमारी नहीं लगती थी।
0: बिल्कुल, मतलब पहले जो खेती थी वो उत्पादन तो जरूर कम मिलता था लेकिन शुद्ध बहुत
2: शुद्ध
0: था,
2: भोजन था,
0: चना मटर
2: सब चीज करी,
0: मक्का भुंटा
1: सब चीज
2: हर
1: रह
2: चीज
1: कैसा कर रसम
2: बढ़ाने में
1: होती।
2: अपने सारी सब्जियां पैदा कर लेते थे, लहसुन प्याज धनिया ये सारी चीजें अपने अपने ही हाथ की खाते थे।
0: बिल्कुल, पहले मतलब ये था कि खुद उगा के खुद खाते थे, शुद्ध रहती थी तो बीमारियां भी कम रहती
2: कम
0: थी।
2: रहती थी हाँ।
0: अब बदरुल हसन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कितनी उम्र होगी?
3: 26 साल
0: 26 साल उम्र है, खेती बाड़ी कब से कर रहे हो?
3: खेती बाड़ी बचपन से ही कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो 26 साल उम्र है तो आप भी जानते होंगे पहले खेती कैसे होती।
3: पहले तो खेती बहुत कर रही थी, बहुत दिक्कतें थी, अब तो बहुत साधन का अच्छा इंतजाम है, अब ट्रैक्टर से हर चीज सारा जो पाया है, ट्रैक्टर से जोत दो सब काम कर लो, पहले बद्दों से थी खेती।
0: अच्छा, तो पहले की खेती में उत्पादन कम था, पहले की खेती हल बैल की खेती थी, लेकिन बीमारियां जो हम कह रहे हैं कि बीमारियां जो पहले थी, पहले बीमारियां इतनी नहीं थी,
1: नहीं
0: आज ऐसा क्या कारण है जो इतनी बीमारियां हैं?
3: अब पहले खेती में कम पैदा हुआ था, अब आदमी को ज्यादा पैदा करना है, इसी वजह से बीमारियां हैं, दवाइयां लग रही बहुत, अब तो गन्ने में चार चार पांच पांच स्प्रे ना लगा, बहुत गन्ना ना हो रहा, पहले ऐसी हो जाया था, तो इस वजह से बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये है कि अब आज अंधाधुंध ज्यादा उत्पादन लेने की दौड़ में कि बीमारियां ज्यादा बढ़ रही
1: ज्यादा दौड़
0: हैं,
1: रही है,
0: रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत कर दिया है,
1: बहुत।
0: तो रासायनिक खादों का जो प्रयोग है उसको कैसे कम किया जा सकता है, आप बताइए रामचरण जी।
1: बताइए जाए, पैदा नहीं होगा सर, पैदा नहीं हो, इसमें 1 किलो लगा दिया, उसमें 1.25 किलो लग गया तो होगा ही नहीं पैदा।
0: नहीं, इसके दूसरे उपाय भी तो हैं।
1: पुम्बे डंगर पालर देसी खाद पर रहना चाहिए,
0: हाँ,
1: जो होना
0: तो
1: चाहिए
0: देसी खाद से क्या फायदा होगा?
1: देसी पाए तो सब चीज फायदा, वही कोई बीमारी नहीं हुई उसमें।
0: तो देसी खाद कैसे तैयार कर सकते हैं?
1: भैंस पालो या गैया पालो,
0: तो गैया भैंसिया पालने से क्या क्या फायदा होता है इंसान को?
1: सब हर फायदा है, दूध मठा भी मिले, नैनी भी मिले, हर चीज फायदा है उससे,
0: आमदनी भी बढ़ सकती है।
1: आमदनी को ना बढ़े,
0: बाकी ले क्या करना चाहिए किसानन को?
1: किसान चारा इतनी जमीन हो तई तो, जमीन जो आज खेती हो जाता तई तो काश्कार की देंगे, छोटे काश्कार का कर सका तो दुविया दुविगा, और एक भैंसिया बैठे तो चारा भाई हरे हो।
0: तो आजकल पशुपालन क्यों कम कर दो बाबूराम भैया? लोगों ने बहुत कम पशु पालना है।
2: पशु कुछ लोग कम पालना, जिसके पास जमीन कम है तो वो पशु नहीं पालना चाह रहे हैं, अपने मजदूरी जरूरी कर रहे हैं, जा रहा है। हम तो डंगर पाल रहे हैं, काश्कारी है हमारे पास, डंगर भी पाल रहे हैं, दूध खा रहे हैं अब भी, और हरा चारा भी बोते हैं, बरसीन भी बोते हैं, और चरी भी बोते हैं, उन्हें खिलाते हैं, भाई उससे लाभ हमें मिलता है,

0: अपने खाते भी हैं, बच जाता है उसे बेच भी लेते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, आमदनी का एक जरिया भी है
0: जरिया है भी।
1: भाई, कब खेती में कभी नुकसान है कभी
0: नहीं कोई
1: कुछ
0: फायदा
1: है,
0: है,
1: तो
0: फायदा
1: अगर
0: नुकसान ही
1: हम
0: है।
1: घी और मट्ठा और दूध बेच के भी पैसा कमा सकते हैं
0: अब
1: अच्छा
0: बाजार में
1: खासा।
0: मट्ठा खाली पानी मिलता है, अब हम घर का खाते हैं तो वो स्वाद लगता है,
1: अरे बिल्कुल।
0: उसकी बात ही निराली है।
1: और भाई देखो, खेतों में काम करने के लिए शरीर में ताकत चाहिए, और उसके लिए खान पान अगर अच्छा नहीं होगा
0: नहीं
1: तो फिर
0: तो बेकार
1: कैसे।
0: है जाए कहानी सब।
1: हाँ
0: अब उसके
1: बेकार।
0: पालने से हमें अपने देसी खाद भी मिल जाती है, ठंड में अपने पताई वगैरह डाल देते हैं तो उसमें अपने वो सड़ जाती है उसके मुंह से, तो वो खेती में डालते हैं तो उससे ज्यादा लाभ मिलता है।
1: ज्यादा लाभ मिल जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि खेतों के लिए खाद मिल रही है,
0: खाद मिलती है, हम
1: ईंधन के लिए कंडा भी बन
0: कंडा
1: जाता
0: भी
1: है।
0: बनते
1: सब
0: हैं
1: चीज
0: सर।
1: बन जाता है
0: अब
1: उसमें
0: सर गैस की बहुत
1: पशु का
0: प्रॉब्लम हो
1: भी,
0: रही है, अब माली डंगर हम पाल रहे हैं तो उससे अपने पार
1: पशुओं
0: वाला
1: से
0: हमने
1: बहुत
0: मिल
1: फायदा है।
0: नहीं मिलता है तो कोई हज नहीं है, हम अपने कंडा जला लेते हैं, लकड़ियां जला लेते हैं।
1: अब बात करें जैसे जो खेती में आज बदलाव आया है, मशीनें आ गई, हर तरह की मशीन आ गई, तो बदरुल हसन जी इन मशीनों से क्या फायदा हुआ है खेती को?
2: इन मशीनों को खेती का उपज बढ़ा है, दर बढ़ी पहले के मुकाबले।
1: अच्छा।
2: इसी चीज़ से दवाइयाँ हैं और आराम है, आदमियों की कम की ज़रूरत है। अब एक ही आदमी ट्रैक्टर से सारी चीज़ कर लेगा, अब नई मशीन आएगी, धान भी बो रहा है, पहले धान लगता था। तो जैसा फायदा है कि ज़्यादा ज़मीन कम आदमी कर लेंगे।
1: ज्यादा जमीन को कम आदमी कर लेंगे।
2: हाँ
1: और अच्छा, गांव में जो भी समस्या देखने को मिल रही है कि लेबर की कमी है
2: तो
1: आजकल।
2: इसी
1: जी
2: वजह से
1: जी
2: ये
1: बहुत
2: यंत्र आए
1: कमी है।
2: सब, इससे ज्यादा जमीन कम आदमी अच्छी तरीके से कर लेंगे।
1: तो कौन कौन सी ऐसी आधुनिक मशीन है जिनका खेती में प्रयोग हो रहा है?
2: जैसे रूटावेटर हैरो है, अब एक नया सुपर सीडर लाया, गेहूं बो रहे हैं, तो ये सब मशीन है। कंपाइन भी चल रही है अब तो काटन के लिए, पहले लेबर से दिक्कत हुई थी, अब कल्टीवेटर चल गए हैं, ये सब नई मशीनें चल गई हैं, इससे काफी खेती में आराम है
1: बिल्कुल
2: पहले के मुकाबले।
1: बिल्कुल। तो रामचरण भैया एक बात बताओ कि हम खेती के संग संग और कुछ काम करना चाहें तो कौन कौन से काम कर सकते हैं?
0: चाहे पम्मे पालो, चाहे अपने और कोई साधन करो, बरयाने फरयाने को जी हो सकत,
1: तो बस का फायदा होए वो।
0: बरयाने से बहुत फायदा थे। कमजोर आदमी ले बहुत खुपिया होले ले चला उतरा, बस जे फायदा है और का, पैसा पैसा उससे पैदा होगा।
2: खर्च होगा
0: पैसे बरयानो बेचोगे तो पैदा करोगे तो होगा।
1: तो मतलब ये है। और मछली पालन ना कर सकते किसान
0: ना ना
1: भाई?
0: बहुत से करते, बहुत से नहीं कर पाते।
1: हाँ आप बताइए बाबू राम जी, क्या क्या और काम किसान भाई कर सकते हैं?
0: किसान भाई सारे काम कर सकते हैं, बरहाना भी कर सकते हैं, आलू भी गाड़ सकते हैं, प्याज भी, ये लोग हम लगाते हैं, आलू की पैदावार करते हैं, प्याज भी लगाते हैं, मिर्च गोभी वगैरह जो भी लगा लेते हैं, इनसे हमें अपने खाने के लिए भी मिल जाता है, ज़्यादा हो जाता हो तो बाजार में भी बेच लेते हैं उनसे अपने, और सारी सब्जियाँ ले लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो और जैसे वैज्ञानिक बताते हैं कि खेती के साथ मुर्गी पालन है,
0: करते हैं
1: बकरी पालन
0: हाँ
1: है,
0: वो भी कर लेते हैं।
1: तो मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, इन जो काम हैं इनको अपना के भी किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते
0: बढ़ा
1: हैं।
0: सकते हैं, कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, जिनको रुचि है वो कर रहे हैं।
1: तो ये जो बदलाव खेती में हुआ है, इससे आपका क्या विचार है, इससे क्या हुआ है, मतलब फायदा हुआ है, देश की तरक्की हुई है, प्रगति हुई है?
0: मतलब काश्कारी में मतलब पैदावार तो बढ़ी है मगर बीमारियां ज्यादा बढ़ी हैं,
1: बीमारियां ज्यादा बढ़ गई।
0: क्योंकि बगैर दवाइयों से खेती नहीं हो रही है। पहले के जमाने में दवाइयां नहीं लगती थी तो बीमारी नहीं थी, अब आदमी पैदा करने के चक्कर में कि जे दवाई डालो, वो जाइम डालो, वो जिंक डालो, सारी चीजें डालने में वो फसल तो ज्यादा हो रही है मगर बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं।
1: कहीं अब ये देखा जाता है जो खेती में बदलाव आया है बाबूराम जी, तो लोग अब खेती के साथ साथ पेड़ भी लगा रहे हैं खेतों में, तो कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनको लगाया जा सकता है और क्या फायदा उनसे होगा?
0: फायदा वाले वृक्ष वाले फल वाला अगर पेड़ लगावो तो उससे ज्यादा लाभ है। कुछ लोग अपने पापले लिपटे लगा देते जो तो खाली बिकती है, बिक्री मतलब होती है, और जो माले अपने नींबू वगैरह लगा रहे हैं, कुछ लोग केला लगा देते हैं खेत में, पपीता भी लगा देते हैं, इनसे ज्यादा लाभ मिलता है, अमरूद के पेड़ लगा देते हैं।
1: बिल्कुल। तो बात यह है कि देखो किसानों को सोचना पड़ेगा, खाली अगर खेती पे हम बैठे रहेंगे और सोचेंगे आमदनी होती रहे तो हमें दूसरे कामों की तरफ बढ़ना पड़ेगा।
0: बढ़ना पड़ेगा जब भी लाभ ज्यादा मिलेगा।
1: जो लोग बड़े हैं औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं, आजकल तुलसी की खेती कर रहे हैं,
0: जी
1: सतावर की खेती कर रहे हैं,
0: कर रहे हैं
1: काफी आमदनी कमा रहे हैं, तो इसी तरह से किसान भाइयों को अब बदलते परिवेश में खेती भी बदलनी पड़ेगी।
0: बदलने पड़ रही है।
1: तो बदरुल हसन जी जैसे क्या क्या बदलाव कर सकते हैं किसान भाई खेती में?
2: खेती में जैसे छताव

0: है, इसे चेंज करें, इससे ज्यादा आमदनी बढ़ेगी। तुलसी लगावें, नए नए जितने भी फल हैं सब किसान वही लगा सकते हैं। जैसे अमरूद से अच्छी पैदा किसान की अच्छी आमदनी है, आम से है, नींबू से है, केला भी चल रहा है इस समय, तो सब किसान भाई हैं जी, अब फल लगावें, पेड़ लगावें, इससे फल मिलेंगे और उनको बेचे अपने आराम से।
1: अब बात करते हैं कि रामचरण जी आपसे, कि जैसे इन्होंने बताया बदरुल हसन जी ने कि चाहे तो फल के बाग लगा सकते हैं, पापलर और लिप्टिस को भी आमदनी के रूप में आप कर
2: आमदनी रूप
1: सकते
2: सब
1: हैं,
2: सब चीज है उसमें रूप
1: क्योंकि
2: आमदनी।
1: एक तो उससे क्या है कि पर्यावरण भी सही होगा,
2: हाँ जी,
1: जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे
2: अरे
1: उतना अच्छा
2: उछो ही
1: होगा।
2: पैदा बढ़ाएगा।
1: हाँ, तो आपकी नजर में क्या किसानों को करना चाहिए?
2: हमारे तब जो आप पहले लगाना चाहिए, आम है, नींबू है,
1: हाँ
2: यही सब चीजें हैं।
1: हाँ तो अब गांव में आप रहते हो, गांव में साफ सफाई की क्या स्थिति है आपकी,
2: साफ सफाई, ये तो सफाई बढ़िया है,
1: कैसे आप सफाई करते हो?
2: सफाई ये झाड़ू वाले आते हैं अपने अपने अपने दरवाजे अपने अपने आप कर देते हैं सब लोग।
1: इससे क्या फायदा मिलता है,
2: अरे गंदगी ही ना होती, और क्या होता, उससे फायदा
1: और कोई फायदा ना है सफाई
2: कोई ना है,
1: बीमारियां?
2: अच्छा लगता है,
1: हाँ,
2: बीमारी ना
1: और
2: होंगी, बीमारी वो दूर होंगी, ऐसा सब चीज।
1: गंदगी से बीमारियां होती हैं,
2: हाँ
1: और अगर
2: गंदगी
1: हम
2: से होता।
1: साफ स्वच्छ गांव को रखेंगे
2: हाँ
1: तो गांव अच्छा। अब गांव के विकास में किस तरह से आप योगदान कर सकते हो बाबूराम जी, गांव को जैसे हम विकास में हर गांव वाले को साथ होता है,
2: जी,
1: तो किस तरह से एक आम आदमी किसान कैसे गांव के विकास में सहयोग कर सकते हैं?
2: सबको मान ले अपने संगठन बना लो गांव का, यानी हमारे गांव में साफ सफाई होना चाहिए, गंदगी ना होना चाहिए। सरकार ने भी काफी सुविधा दे दी है, झाड़ू पोछा वाले मतलब गांव गांव लगा दिए हैं। अब उसमें वो नहीं आते तो आप देखभाल करो, है हमारे गांव में गंदगी पड़ी है, नाली गंदी है,
1: बिल्कुल
2: इनसे
1: बिल्कुल।
2: मतलब मच्छर वगैरह बहुत पैदा होते हैं,
1: हाँ
2: बीमारी फैल जाती है। तो हम कुछ लोग हैं अपने सूचना देते हैं, जो हमारे नज़दीक गांव में मतलब प्रधान वगैरह आए हैं कि हमारे गांव में बहुत गंदगी मच्छर हो रहे हैं, तो वो लोग दवाई भी छिड़कवाते हैं उनसे, मतलब मच्छर उच्छर मर जाए।
1: हाँ, कहने का मतलब ये है कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा
2: जी
1: जी
2: रहना
1: कि
2: अपने आप सब
1: मतलब
2: कुछ,
1: गांव में गंदगी है
2: जब
1: तो
2: तक
1: हमें
2: हम आप
1: किस,
2: खुद अपनी देखभाल नहीं करेंगे तब तक तो
1: कहीं
2: कैसे कौन आदमी आ
1: कौन आ
2: जाएगा।
1: जाएगा? अगर कोई कर्मचारी भी है तो हम सूचना देंगे, जब भी तो मान ले वो उसकी शिकायत पहुंचेगी, बिल्कुल। और मान लो कहीं कोई कमी है तो हम प्रधान जी को बताएंगे,
2: बताएंगे।
1: भाई गांव के मुखिया होते हैं, और अगर प्रधान जी कहते हैं नहीं सबका सहयोग चाहिए तो सब लोग प्रधान जी का साथ भी
2: सहयोग देते
1: देंगे,
2: हैं
1: गांव स्वच्छ रहेगा,
2: जी
1: खुशहाली आएगी,
2: जी सर,
1: बीमारियां नहीं होंगी,
2: हाँ जी
1: तो
2: सर,
1: लोग अच्छे से जीवन यापन करेंगे।
2: करेंगे आप।
1: देखो आपने देखा है कि आदमी खेती करता है 40, 50, 60 साल तक, और उसके बाद कहीं बीमार पड़ जाता है तो पता चली जितनी उसने मेहनत करी है
2: हाँ
1: जीवन
2: वो
1: भर
2: सब
1: सब
2: बेकार,
1: चली
2: सब
1: जाती
2: चली
1: है,
2: जाती
1: सब
2: है।
1: बेकार। तो इसमें ये है कि हमें स्वस्थ रहना भी बहुत
2: हाँ
1: जरूरी
2: देखभाल
1: है।
2: अपनी बहुत जरूरी है,
1: हाँ
2: वो अपने
1: हाँ
2: लिए बढ़िया है
1: बिल्कुल। तो इसीलिए ये है कि हम गांव के विकास में भी सहयोग कर सकते
2: कर
1: हैं।
2: सकते हैं जी।
1: अब बात करें बदरुल हसन जी आपसे कि तो जैसे जो खेती में नए प्रयोग आए हैं, आपने कहा कि इस बार कि धान बोने की भी मशीन आ
2: मशीन आ
1: गई,
2: गई है,
1: तो वो कैसे काम करती है?
2: वो भी ट्रैक्टर से ही काम करेगी। उसमें
1: अच्छा।
2: एक में खाद डलेगी, एक में पीछे धान डलेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे धान गिरते जाएंगे, और बाकी फिर अच्छी उसमें पानी भरा जाए, वो पानी उसमें ज्यादा चाहिए, कंप्यूटर खेत चाहिए।
1: अच्छा, मतलब उसके लिए कंप्यूटर वाला खेत चाहिए जो
2: हाँ,
1: लेवल हुआ हो।
2: लेवल हुआ हुआ हो, एक जगह पर पानी ज्यादा ना भर हो जाए, ज्यादा भर जाए वो धान सड़ जाए, वो
1: तो ये जो तकनीक है इसका प्रयोग किसान भाई करने लगे हैं क्या?
2: करने लगे इस बार बुवाया हमने थोड़ो।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: तो कैसे क्या महसूस किया आपने, अच्छी है बुवाई इसकी?
2: लेबर की वजह से बुवाया है, सही लगी तो अगले को से और बढ़ावन, अब थोड़ो सा प्रैक्टिकल कर लो जाओ।
1: नहीं तो जरूरी है भाई, कोई भी तकनीक अगर आती है समाज में खेती के लिए उसका प्रयोग करना जरूरी है, तभी
2: जरूरी
1: हम उसका जान पाएंगे कि इससे फायदा, और वैसे तो वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं उन चीजों से फायदा ही होता है। अब रोपाई में आपको 10 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन मशीन चलाने के लिए 2 से 3 लोग, भाई
2: काफी
1: एक
2: है।
1: ट्रैक्टर वाला और दो
2: हाँ
1: लोग साथ में, तो 3 लोग
2: बस
1: वो काम कर सकते हैं
2: पूरा काम कर
1: और
2: सकते
1: बहुत
2: हैं,
1: आसानी से और जल्दी हो जाता
2: जल्दी हो
1: है।
2: सकता है।
1: तो जो युग बदला है, खेती में बदलाव आया है, उससे भी देखो तरक्की तो बढ़ी है देश की।
2: तो बुवाई की दर भी ज्यादा बताई जा रही है पौधे से, तो इस बार 2 एकड़ 2 एकड़ में लगवाया है धान,
1: हाँ,
2: अच्छी लगी दर तो अगले को और बुवाई होगी।
1: बिल्कुल। देखो बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है हमारा, अगर हम ज्यादा अनाज नहीं उत्पादन करेंगे तो लोग भूखे रह जाएंगे,
2: भूखे रहेंगे।
1: तो इसलिए ये है कि हमें बहुत उत्पादन करना पड़ेगा। तो ज्यादा उत्पादन के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं रामचरण?

0: जेई का कर्म हो, बरियानो बनावो, फल लगावो, अमरूद और जो क्या तित्ती सौदा है वही लगाना चाहिए।
1: और देसी खाद को प्रयोग करना चाहिए खेती में,
0: देसी जरूर होना चाहिए, तो बरियानो होगा या पेड़ों कोई पौधा हो सब नीचे लगना चाहिए। तो जड़ हाँ।
1: तो देसी खाद से क्या फायदा होता खेत में?
0: बहुत फायदा हो, बीमारी कुछ ना आए वही ढंग।
1: और मिट्टी की ताकत?
0: ताकत मिट्टी की बढ़ेगी है, कहाँ जब घूरो पर रहो।
1: बाबूराम जी, लगातार आपने देखा है इतने समय से आप खेती कर रहे हैं
2: जी,
1: तो आपने ये महसूस किया होगा बहुत समय से मिट्टी जो है उसकी उर्वरता खत्म होती चली जा रही है।
2: जी, हम लोग मिट्टी की जांच वाले आते हैं, जांच करा लेते हैं, अगर कोई बीमारी होती है तो बेमाले प्रयोग करने ताई दवाइयां बता देते हैं।
1: अच्छा, तो मिट्टी की जांच से क्या चीज पता चल जाती है?
2: मिट्टी की जांच से पता चल जाती है कि हमारी इसमें मतलब पिरोडो कमी है कि काय की कमी है इसमें जमीन में, जो चीज डालो कैल्शियम वगैरह जो की पता जांच चल जाती है।
1: पोटाश की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है,
2: हाँ जी,
1: जिंक की कमी है,
2: हाँ, तो उसी हिसाब से वो डरवा देते हैं, तो वो ही डालते हैं हम, तो उससे लाभ बढ़ जाता है,
1: लाभ बढ़ जाता है। तो ये आधुनिक जो तकनीक है, जो बदलाव खेती में आया है, इसका बहुत फायदा किसानों को मिला है।
2: मिला
1: भाई, एक बात बताइए कि आप एक आम आदमी है
2: जी सर,
1: उसको लग रही है प्यास
2: जी
1: और खिला दोगे रोटी तो वो तो सब गलत हो जाएगा,
2: गलत हो जाएगा सर।
1: इसी तरह से जो हमारी मिट्टी है बड़ी नाजुक चीज है, उसमें हमें खेती करनी है, खेतों को बचाना है, सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है
2: सर।
1: तो इसका मतलब यही है कि अगर आज हम अपनी मिट्टी को बचा लेंगे तो कल जो हमारे बच्चे हैं
2: हाँ,
1: वो भी खेती कर पाएंगे,
2: उन्हें तो लाभ मिलेगा, अच्छा मिलेगा।
1: उसका यही है मतलब कि भाई हम अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखें। अब आपने देखा है कि लोग पराली जला देते हैं,
2: जी सर जला देते
1: तो
2: हैं,
1: तो वो बहुत गलत है, उससे जो है कि जो हमारे मित्र कीट होते हैं खेतों में
2: वो
1: खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा बाबूराम जी, पहले केंचुआ खूब देखने को मिलता था
2: जी सर,
1: अब क्यों नहीं मिल पा रहा है?
2: अब वो जो जहरीली दवाई की वजह से केंचुआ खत्म हो रहा है। हमने तो पिछले साल हमने दवाइयां नहीं लगाई, तो जो हमने अपने खेत में कंधार करा था तो गाड़ने वाले तलक मान ले बोले इसमें बहुत केंचुआ है और इतने हमने कहीं नहीं देखे, मगर उससे जब वो मरे थे कंधार में तो उससे फसल हमारी बहुत अच्छी चली थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बात ये है केंचुआ हमारा मित्र है, खेती का मित्र है, किसान का मित्र है, और केंचुआ अगर हमारे खेतों में रहेगा तो हमारी मिट्टी उर्वरता पूर्ण रहेगी, उपजाऊ रहेगी, और अगर ये मित्र कीट खत्म होते चले जाएंगे
2: फसल में उसमें वृद्धि बहुत मिलती है, केंचुआ
1: वृद्धि बहुत मिलती है और वो मिट्टी के अंदर घुस घुस के उसको उपजाऊ बनाता रहता है। अब बात करें कि जैसे सरकार चाहती है या सरकार की जो योजनाएं हैं वो चाहती है कि किसान भाई जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करें, तो इससे क्या फायदा होगा?
2: इससे और ज्यादा लाभ बढ़ जाएगा, कर रहे हैं कुछ लोग, कर रहे हैं जिनको ज्यादा जानकारी है वो कर रहे हैं जैविक खेती
1: का मतलब है कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत कम कर देंगे, और जब रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर देंगे तो हमारे जो खेत हैं वो सुरक्षित रहेंगे और जो हमें उत्पादन मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं बदरुल हसन जी, गांव में आप रहते हो तो जैसे कुछ खाली समय होता है तो उस समय में क्या करते हैं किसान भाई?
3: उस समय में किसान भाई बैठ जाएंगे अपने इकट्ठे, खाली बैठे कहीं देख लेंगे बगिया है या चौराव है, उस पर बैठ के अपने आराम से बातें करते रहेंगे।
1: हाँ, तो मतलब जैसे पहले प्रेम भाव होता था गांव में, आज क्या स्थिति है?
3: आज तो प्रेम भाव खत्म हो गया,
1: कतई
3: खत्म हो गया है। आदमी कतई एक दूसरे से लड़न के लिए तैयार बैठे हुए, कतई जहाँ चौराहे पे चार लोग बैठे थे अब वहाँ दो दो अलग अलग बैठ रहे हैं, चार इकट्ठे ना बैठे।
1: कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो मोबाइल आ गया है लोगों के जीवन में, इससे भी फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है?
2: जी सर,
1: दूरियां बढ़ी है ना,
3: इससे तो बहुत दूरियां बढ़ी है। इससे तो आदमी का अगर अकेले में जाए मोबाइल देखने लगा वो दूसरे से बोले गुना है और आंखें बेकार कर ले वो।
1: तो बाबूराम जी जैसे पहले की बात करें, पहले गांव में आस पड़ोस वाले सब मिलके पहले बाबूराम भैया को खेत कटवा लो, फिर रामचरण भैया को खेत कटवा लो।
2: जी सर, पहले ऐसा ही करता
0: पहले जय चलते सर।
2: हाँ। एक दूसरे की मदद करते थे कि यार आज हमारा गन्ना कटवा दे,
0: जब भी करते कटाई करते
2: और पौध लगाते थे तब भी माले गुइयाबाजी करते थे कि हमारे कटवा दे हम तेरा बाद में कटवा देंगे, इसी तरीके से कटाई कर लेते थे सर।
1: तो आज ये प्रेम क्यों कम हुआ है लोगों के बीच?
2: अब जैसी चीजें चल पड़ी हैं कि आदमी को बहुत मेहनत ना करने पड़े, मैं नहीं काम करने जाऊंगा पैसा दे दूंगा मजदूर मिल जाए मुझे, अब मजदूर तो मिल नहीं रहे हैं, तो अब भी वही कुछ लोगों में अपने संगठन चल रहे हैं, एक दूसरे का काम अब भी करवा रहे हैं,
0: अब भी करवा रहे हैं,
2: हम भी करते हैं, हम अपना करवाते भी हैं, और कुछ लोगों के नहीं संपर्क नहीं करने जाते हैं, उनसे नहीं होता मेहनत, तो वो ब्ले

0: मजदूरों के ऊपर रहती है,
1: अच्छा
0: तो उनकी बाजी ना फसल बिगड़ भी जाती है जब
1: बिल्कुल
0: वो,
1: सही बात है। और अगर हम देखो एक गांव में मिलके प्रेम से रहेंगे तो
0: तो उसकी
1: जाएगी,
0: बातें निराली है।
1: सबकी तरक्की होगी, सबको विकास
0: जी
1: होएगो। और
0: सर
1: हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो सबको विकास प्रभावित होएगो।
0: वो तो होता ही।
1: तो अब हम बात करें कि जो नशाखोरी एक आजकल ज्यादा चल गई है
0: जी
1: गांव
0: सर
1: में, ज्यादा देखने को मिल रही है, युवा पीढ़ी बहुत नशे के
0: नशा को
1: ऊपर
0: पूरा पूरा
1: पूरा चल
0: नशाबाजी
1: रहा।
0: बहुत है।
1: तो फिर इस संबंध में क्या कहना चाहते हो आज?
0: नशा संबंध में ऐसा है, अब कुछ लोग ने अपने अपने घर बर्बाद कर रहे
1: घर
0: हैं,
1: बर्बाद
0: उनके घर पर
1: करेंगे।
0: खाने को नहीं है मगर उन्हें दारू चाहिए, बच्चे घर पर रो रहे हैं, पापा मतलब जेची ले आना बोले आना। अब घर पर आए भी क्वार्टर तो पिया है 100 रुपए का, घर पर बीवी कह रही कि यानी राशन लाए, तो उन्हें अपनी बीवी को मार के गिरा दिया कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, पैसे थे वो दारू पी आए, अब बच्चे घर पर रो रहे हैं, अब वो कहाँ जाए। तो
1: बिल्कुल।
0: जैसे बहुत से परिवार बहुत दुखी हैं नशे से।
1: नशे, नशे इसका क्या दुष्प्रभाव है समाज में? बदरुल हसन जी, समाज किस तरह से प्रभावित हो रहा है नशे से?
2: नशे से समाज हमें लग रहा है ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अब पहले तो थोड़ा कम था नशा, अब तो हर थोड़ी दूरी पे भट्टियां खुल रही हैं, आदमी पी के घर पाएगा और लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो यही सब नशे से नुकसान हो रहा है।
1: नुकसान हो रहा है। देखो एक तो स्वास्थ्य की बर्बादी है।
2: स्वास्थ्य की तो बर्बादी है, वो अपने जिस्म को तो सोच ही ना रहा है क्या करने, नशे के सामने जिस्म पूरा खराब कर ले रहा है।
1: हाँ, और परिवार की तरक्की भी नहीं हो पा
2: तरक्की
1: रही।
2: ना हो पा रही, परिवार अलग अलग भी नशे से ही हो रहा। आए घर में लड़ गए, नशा है चलो नशे में लड़ लेंगे, सुबह उतर जाए तो शांत बैठ गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि हम बात करें तो आप क्या कहना चाहते हो रामचरण जी, गांव में जो नशे की जो प्रवृत्ति है, तो आज रेडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हो लोगों से?
3: हम तो भाई इनकार करते हैं जी, नशे वाले अपने बच्चों को परिवार को पाल के वह चीज लाओ सब बच्चे खाए नहीं,
1: हाँ।
3: ये नशे वाली चीज बेकार करते ही है, इसमें दुश्मनी बनती है सब में।
1: दुश्मनी बनती है। तो आज क्या बताना चाहते हो रेडियो के माध्यम से लोगों से?
3: हम तो जाकर जिस नशा पानी से दूर हो है,
1: आराम
3: और
1: से अच्छी चीज खाओ,
3: अच्छी चीज खाओ,
1: फल खाओ,
3: फल खाए ले सब बढ़िया
1: मेवा
3: खाओ।
1: खाओ,
3: हाँ नेवा खाओ
1: अच्छा
3: सर,
1: खाना बना के खाओ,
3: केला खाओ सर, सेब खाओ, अंगूर खाओ,
1: हाँ
3: ये चीजें खाओ सब चीज।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और अपने अकेले खाओगे तो बच्चों को लाओ सबको दे, थो थोड़ी दो, ये चीजें अच्छी लगती है सबको।
1: वही
3: हाँ
1: तो ये है कि जैसे लोगों को समझना चाहिए और नशे से दूर
3: दूर
1: रहें
3: रहा के तो
1: और अच्छा जीवन जिए।
3: जीवा बस कुछ शुद्धा, वो शराब से तो शरीर घुनकती घुनती लगती है, कौन टीवी बनती है, कौन कुछ बनती है,
1: बहुत सी बीमारियां
3: बहुत सी
1: हैं।
3: बीमारी आती है।
1: सरकार जागरूकता भी फैला रही
3: और
1: है और जागरूकता फैला रही है, सब जगह पोस्टर लगते
3: सब
1: हैं
3: पोस्टर लग रहा है
1: ब्लॉकों में तहसीलों
3: और
1: में, फिर भी आदमी नहीं समझ
3: नहीं
1: रहा है।
3: मानता है,
1: लेकिन हम तो यही कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लोगों को नशे से दूर
3: दूर
1: रहने
3: कतई
1: को
3: रहना
1: रहना चाहिए।
3: चाहिए।
1: बिल्कुल, मतलब आदमी का स्वास्थ्य सही होगा तो खेती में अच्छे से काम कर
3: कर
1: पाएगा।
3: पाएगा।
1: तो आज के कार्यक्रम में अब कौन सा गीत सुनना चाहते हो?
3: गीत जा कोई सुना दो तो सब सुन ले जाता है।
0: कोई भक्ति गीत सर सुनाओ।
3: हाँ, भक्ति सी है, हम तो भक्ति के बारे में, हम तो खाते नहीं शराब शराब कुछ नहीं पीते सब।
1: अच्छा, तो हम आपको सुनवाते हैं ये भक्ति गीत
4: जी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच। आज का विषय था कृषि का बदलता स्वरूप और आम किसान। आज के प्रतिभागी थे बाबूराम नौगवां वीरान, बदरुल हसन, बरखना हरचंदपुर, रामचरण नौगवां वीरान। संचालन किया था रविंद्र कुमार ने। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आइए अब हम आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलते संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये सुने मनचाहे गीत, मनचाहे गीत।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का

पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्ट कार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाही गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ

गुंडानी, अर्चना गुंडानी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभाताई गुंडानी की फरमाइश है। खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: मुंजाई गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच है गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंद गढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के, ये श्रोता हैं समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज़।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: मुझको बिठा कर।
1: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
2: मनचाही गीत।
1: मनचाही गीत।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
1: क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसर।
1: आप तो व्यर्थ भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा का पालन।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: भाई, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
2: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: कुलदेवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
3: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
2: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
3: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था

0: कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी। जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे वो और कुछ नहीं, एक चिरंतानंदकारमय पद की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप जुगुप्समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने ही हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र त्राष्ट्र ज्योतिहीन है। जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं। वो त्रिश

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
0: गांधारी,
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट छोड़।

0: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ, राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
1: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
0: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ, आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
0: क्यों ना दिलाऊं? आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
1: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निहित स्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: कौन?
1: मैं धृतराष्ट्र।
0: ओह, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है। आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है। यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं है?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा,

0: तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी और तुमने स्वयं मंत्रत्व स्वीकार कर लिया, यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता नहीं।
1: महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
0: हूं। गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा।

ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सच, असहनी है ये सच।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
1: पगली कहेंगी, क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
2: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
2: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
2: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
2: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
2: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
2: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
3: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
2: कहो सूत।
3: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी? क्या अपमान!

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक,
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर किया है?
2: किस पर?
0: दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वारणावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गांधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं, अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदलकर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का

0: आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां आपके साथ आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज जैसे कि राष्ट्रीय सिलाई मशीन दिवस है तो आइए जानते हैं इस बारे में हमारे कॉलर्स के क्या विचार हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, कौन और कहां से बात कर रही हैं आप?
2: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूं, सुनीता से, जो बरेली कैंट के पास।
1: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सुनील कुमार आपका। जैसे कि आज राष्ट्रीय सिलाई मशीन दिवस है तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि घरों से गायब होती सिलाई मशीन, तो इसकी क्या वजह है, क्यों गायब हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही है, इस बारे में आप सबके, जो जितने भी श्रोता हैं उन सबके विचार हमें कलेक्ट करना है।
2: जी जी जी जी।
1: अब आप बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में, आपके घर है सिलाई मशीन?
2: जी जी, हमारे घर तो है, हमारी बहन ने।
1: अच्छा, तो सिलाई मशीन होने से आपको कैसा लगता है, कई फायदे नजर आते हैं?
2: हाँ मैम, ये है, देखो कोई कपड़ा अगर आपका फट गया है थोड़ा बहुत तो वो आप रिपेयर कर लो उसको, या कोई सिलाई आती है कपड़े की वो अपने कर लो।
1: जी,
2: अपनी मशीन है तो कितनी भी टाइम तक काम करो, कितनी भी टाइम बंद करो।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सिलाई मशीन जिन लोगों के घर पे है और फिर अगर नहीं होती है तो उन लोगों को एक अजीब सी कमी महसूस होती है ना?
2: बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी, आज सुनील कुमार आपने कॉल किया है आकाशवाणी बरेली को और अपने विचार रखे कि ये सुनकर तो हमें और अच्छा लगा कि आपके घर आज भी सिलाई मशीन है। और बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे हैं जिनके घर आज भी सिलाई मशीन होगी, यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ। और आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: फिल्म का नाम है मैम सलाम ए मोहब्बत, दिलों के रंग सितारों की रोशनी अपनी, ये गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गाना आपने सुनना पसंद कराया है, ये मेरी भी पसंद का गाना है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ का। लीजिए पेशी खिदमत है ये गीत।

0: हेलो
1: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहां से बात कर रही है?
0: दीदी, मैं सिद्धार्थ नगर इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ।
1: जी राजेश श्रीवास्तव जी, आपके लेटर तो काफी मैंने पढ़ी हैं, लेकिन बात करने का मौका आपसे आज मिला है। क्या करते हैं आप?
0: आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिन के बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है, तो और मतलब खुशनुमा माहौल जैसा महसूस कर रहा हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपकी प्यार और मोहब्बत है, जो आप लोग हमारी आवाज ही सुनकर खुश हो जाते हैं, और हम भी आप लोगों की कॉल का वेट करते हैं और आप लोगों से मिलकर खुश हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ना, घरों से गायब होती सिलाई मशीन। तो इस बारे में आपको विचार रखना है अपने के गायब हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो उसकी क्या वजह है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप?
0: दीदी, पहले जो घरों घरों में सिलाई मशीन हुआ करती थी, उससे हमारी माताएं बहने फटे पुराने कपड़े को सिल के या नए कपड़े भी सिल के, मतलब एक मूल्य के भी कपड़े सिल देती थी। अब तो वो गायब जैसी हो गई, क्योंकि सबको इतने आलसी हो गए, घर में कौन इतना काम करे। सब टेलर के पास जाना पसंद करते हैं, रेडीमेड लेना पसंद करते हैं। लेकिन जो पहले का एक माहौल था, घर घर का माहौल था, एक दूसरे के घर बैठ के सिलाई सीखना, बताना, करना, ये उस समय के माहौल तो बस सब बातें बातों में रह गए हैं। तो बस सब लोग आलसी ही हो गए। हमारा तो मानना यही है दीदी, पहले का जैसा माहौल था वो भगवान वापस फिर से ला
1: दे। जी जी, पहले जैसा माहौल जो था वो वापस ला दे। आलसी तो खैर नहीं हुए हैं, ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि सिलाई मशीन से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे दूसरे काम होते हैं लेडीज के लिए। या फिर एक चीज ये भी होती है कि बहुत ज्यादा जो समय है वो फोन

0: ने ले लिया है हर इंसान का। अब हम बात करें लेडीज की,
1: से इतने लोग अडेप्ट हो गए हैं कि मतलब अपने जी हाथ का वर्क जो है वो करना छोड़ दिया है,
0: करना छोड़ दिया है, जो प्रैक्टिकली काम है वो सारे ही हाथों से छूटे चले जा रहे हैं और सारा समय जो है वो मोबाइल फोन ने ले लिया है। किसी न किसी तरीके से कोई न कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है और अपना टाइम उसी में ही लगा रहा है ना। तो आप क्या श्रोताओं को इस बारे में संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए आज के वक्त?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए जो हमारा वर्क है और जो हमने सीखा हुआ है, जैसे सिलाई है या कढ़ाई है या बुनाई है, जो भी हम लोग करते हैं वो अपने हाथ से अगर करें तो आज भी वही माहौल रहेगा और कनेक्ट लोग दूसरे विधाओं से हुए हैं लेकिन उसमें इतने वो ना हो जाए कि मतलब हम सब कुछ उसी पर निर्भर है,
0: उसी
1: पर हाथ के काम को हमेशा बरकरार।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज जरूरत की है वो तो कभी अपने आप से दूर करना ही नहीं चाहिए। और अगर हम फोन का भी इस्तेमाल करते हैं तो फोन में भी हजारों चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, वो चीजें सीखें और उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाएं, है ना?
1: जी
0: राजेश श्रीवास्तव, बहुत अच्छे विचार आपने रखे हमारे श्रोताओं के सामने। आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आप हम और सभी श्रोता ये मिलकर सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना को, संगीत को संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने फिल्म अनजाना के लिए। गाने के बोल हैं आ मेरी रानी लेकर चल्ला निशानी।
0: लीजिए हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर ये रोमांटिक सॉन्ग।

0: वालेकुम अस्सलाम, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रही है?
1: सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: कैसे हैं सुल्तान रजा
1: जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए मैम, कैसी हैं?
0: सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है, सारा आकाशवाणी परिवार ठीक ठाक है। और कुतुब खाने पे आपकी कपड़े की दुकान है, आप नियमित श्रोता है
1: जी
0: बिल्कुल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप कपड़े बेचते तो इतने हैं, आपको हमें आज बताना है कि घरों से सिलाई मशीन जो गायब हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैम जैसे कि मम्मी हमारी

0: पहले घर पे ही कपड़े सिया करते थे हमारे
1: जी,
0: क्योंकि इतने फैंसी कपड़े नहीं हुआ करते थे पहले, कोई सारा मतलब सारा टाइप के होते थे धोती वगैरह, तो घर पे सिलते थे। आजकल सिस्टर थी, शादियां हो गई, तो वो भी अब घर पे नहीं है, तो मशीन जाहिर सी बात है मचान पर रख दी उठा के अब।
1: अच्छा
0: जी,
1: लेकिन ऐसा होता है ना कि रिपेयर सिपेयर के लिए जरूरत पड़ती है, फिर उसके लिए क्या करते हैं?
0: तो उसके लिए होता है कि आजकल लड़की थोड़ी सी हेल्थी हो गई है ना, पता नहीं सभी मैं सबकी कह रहा हूँ, वो ज्यादातर चाहते हैं कि 10-20 रुपए चले जाए, कहीं बाहर जाके टेलर से करा लाओ या जाके कहीं दर्जी से करा लाओ, मतलब घर में थोड़ा सा इस चीज को तवज्जो नहीं देना चाह रही है। उसके बाद आती थी हाथ से सी आती थी कपड़े जो हाथ से जो थी मशीन, अब तो पैदान होने के बाद भी नहीं चाह रही है लेडीज से।
1: जी जी जी, बात ये है ना कि जब मशीन ही मचान पे रख दी है तो फिर अगर छोटी सी भी सिलाई की जरूरत पड़ती होगी तो वो यही सोचती होंगी अरे ऊपर से कौन उतारे,
0: कौन सफाई करे, कौन तेल डाले, कौन धागा उसमें डाले।
1: जी जी,
0: इससे बेहतर ये 10-20 रुपए जा रहे हैं, वहीं जाओ
1: और करो,
0: टेलर साहब के वहां से करा लो।
1: जी जी बिल्कुल, लेकिन बात ये है ना कि बहुत सारी चीजें हमारे घर की ऐसी होती है, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन वो क्या होता है मतलब पहनने के काबिल नहीं रहते हैं, तो उसके लिए कोई छोटी छोटी चीजें बना लेते हैं, घर के कवर बना लेते हैं, कुशन बना लेते हैं, या
0: घर के कपड़े बनते थे पहले घर पे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी बनते हैं, लेकिन जिन लोगों के यहाँ सिलाई की मशीन है उन लोगों के यहाँ काफी हुनर देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे मतलब उसके शोपीस
0: बनते थे, उसके जार लगाते थे पंखों पे मशीन चल के,
1: बहुत सुंदर
0: जो ट्राई करते होते थे ना, देखने में अच्छी लगती थी।
1: जी जी,
0: सारे घर वाले हुआ करते थे, लेकिन अब मैंने कहा था बचान से रख गई, तो फिर रख गई उठा के
1: रख गई, तो
0: कब उतरेगी?
1: तो आप आज जाकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जाकर उनसे कहें कि वो जी बिल्कुल मशीन अपनी उतारिए मचान पे से और उसे साफ कीजिएगा, और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें कि घर में घुसते ही एक कला का नजारा सामने आता है कि भाई यहाँ पर ये पुरानी चीजों से कितनी अच्छी सिलाई करके कितनी अच्छी चीजें बनाकर लोगों ने लगाई है ना, और वो चीजें बाहर के शोपीस में दिखाई नहीं देती है, भले से हम कितने पैसे खर्चा कर दें, है ना,
0: लेकिन जो घर पे बनता है उसकी बात ही अलग होती है।
1: बात अलग,
0: घर पे जो खाना बनता है स्वादिष्ट, उसकी बात ही अलग है, बाहर से आप कितना महंगा लिया है
1: जी
0: चीज नहीं आती है।
1: जी बिल्कुल, और इसी तरह की सिलाई का भी हाल है, बाहर की अगर सिलाई होती है तो बच्चे 2 दिन में ही कपड़े एकदम अलग अलग सिलाई करके रख देते हैं।
0: हम लगाते हैं, हम ना लेके प्रोग्राम लगाते हैं, बोलो क्या करते हैं, वो नया मतलब कुछ ऐसे जागे सस्ता वाला आइटम डाला, जितना डाल दिया, उन्हें खाली काम निकालना होता है, घर पे क्या होता है सब हम देख के खुद लेके आते हैं।
1: जी जी, तो इससे क्या होता है कपड़े की भी लाइफ बढ़ जाती है अगर घर की सिलाई मशीन होती है ना। जी
0: मैम, एक शेर है आकाशवाणी बरेली के लिए, अजनबी गलियों से हम गुजरा नहीं करते, अजनबी गलियों से हम गुजरा नहीं करते, दिल दिया और दिया नहीं करते।
1: अच्छा,
0: ये प्यारा सा रिश्ता 100.4 FM से है, वरना इतना याद हम क्यों किया नहीं करते।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत प्यारी शायरी आपने आकाशवाणी बरेली के लिए दी है, बहुत दिल खुश हो गया। और सुल्तान रजा, आज आपकी कॉल लगी है, अब आप बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे।
0: मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो
1: जी,
0: और गाने के बोल हैं मेरे जाइयों में गलत बात है।
1: लीजिए सुल्तान रजा, हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: यूपी बनारस से मोहसिन अंसारी बात कर रहा हूं।
1: मोहसिन अंसारी कैसे हैं?
2: बढ़िया हैं, आप लोग की दुआएं हैं। और आप लोग कैसे हो?
1: सब बढ़िया हैं और दुआएं ही रहना चाहिए। मोहसिन अंसारी, आज का हमारा टॉपिक है घर से गायब होती सिलाई मशीन। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले देखते थे घरों में, हर घर में सिलाई मशीन होती थी और मम्मी या दादी या नानी कुछ ना कुछ सिलती पिरोती रहती थी उसमें, लेकिन आज के वक्त में सिलाई मशीन बहुत कम देखने को मिलती है ना?
2: आजकल की सिलाई मशीन जो हो गई है ना, तो थोड़ा सी दूसरे टाइप की सिलाई मशीन हो गई है। पहले के जमाने के जो सिलाई मशीन थी पैर से चलाने वाली
1: जी,
2: तो जो मेरी दादी उससे सिलाई भी करते, मैं बचपन में देख रहा था, तो वो सिलाई मशीन का बात ही कुछ अलग है। मगर आजकल का टेक्नोलॉजी जो निकल गया है थोड़ा बहुत
1: जी,
2: तो लाइट से सिलाई मशीन चलता है। बहुत सारे घर में नहीं मिलता वो
1: जी जी जी।
2: जहाँ पे बहुत जरूरत होता है सिलाई वाली महिलाएं जहाँ पे रहती हैं, तो वहाँ पे ये सब मशीन मिलती है। और मेरे घर पे भी है, तो मेरे घर पे जो साड़ी का काम होता है,
1: अच्छा,
2: तो उस साड़ी का काम उसे सिलाई मशीन से होता है, क्योंकि साड़ी सिलना रहता है।
1: अच्छा,
2: हम लोग यहाँ दुपट्टे पे और साड़ी पे मैम जाल बनता है, जाल आप देखी भी होंगी दुपट्टे
1: जी,
2: पे
1: जी,
2: जो लटकता है सिलने की तरह।
1: तो इसका मतलब ये है आपके घर पर सिलाई मशीन है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं।
2: पुराने वाला है, पहले वाला
1: जी जी, पुराने वाला ही,
2: हाथ से चलाने वाला, हाथ
1: जी बिल्कुल, हाथ से चलाने वाला ही बेस्ट रहता है। और वो हर समय छोटी सी जगह में वो एडजस्ट हो जाता है और जब चाहे उसे लिया और सिलाई करना शुरू कर दिया है ना
2: जी, लाइन का भी टेंशन उसमें नहीं रहता। और एक सिलाई मशीन और भी आता है जो पैर से मोटर लगा के उसको चलाते हैं, पैर से दबाओ तो वो चलने लगता है, तो
1: जी जी।
2: वो वाला नहीं है, हाथ वाला है। तो ऐसे भी अच्छा रहता है हाथ वाला, क्योंकि जॉगिंग भी हो जाता है और काम भी हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई जगहों पर ऐसा होता था कि वो बच्चे शौक में बैठ जाते थे हाथ वाली मशीन को घुमाने के लिए, आप सिलाई कीजिए और हम मशीन का पहिया घुमाते हैं, है ना?
2: जी जी जी हाँ, पहले वो भी था, हम घुमा भी रहे थे। दादी वाला जो था ना
1: जी बिल्कुल,
2: तो उसमें भी मोटर लगा हुआ था, मगर जब लाइट चला जा रहा था तो हाथ से हम लोग को घुमाने के लिए
1: बड़ा मजा आता था, है ना?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: पहले के जमाने का बात ही अलग था मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन अंसारी, आज आपकी कॉल लगी, आपने पहले के जमाने को एकदम आंखों के सामने ताजा कर दिया। और आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: पहले

0: सर मुनव्वर मैम बोल रही हैं क्या आप?
1: जी जी बिल्कुल, मैं मुनव्वर जहां बात कर रही हूँ।
0: इनके बात प्रोग्राम में आई हूँ, आपके बहुत सी आरजे से हमारी बात भी बीच बीच में।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: एक गाना सुनना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल।
0: आग ऑफ 16 फिल्म का और गीत के बोले, एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत बुध है तू है, ये गीत है और ये गाना आलिया खान।
1: जी बिल्कुल, सुनिए आलिया खान जी के साथ अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मेरा नाम सिमी है, थाना टांडा से बात कर रही हूँ।
0: सिमी कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप बताओ, आप कैसी हैं?
0: सब बढ़िया है। घर पर ही रहती हैं सिमी?
1: जी हाँ, मैं घर पर रहती हूँ।
0: क्या करती हैं?
1: कुछ नहीं, घर पे कार चोबी करती हूँ।
0: अच्छा, तब कार चोबी भी होती रहती होगी और रेडियो भी चलता रहता होगा।
1: जी जी हाँ।
0: अच्छा
1: जी
0: सिमी, आज का हमारा टॉपिक है घरों से गायब होती सिलाई मशीन, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपके घर में है सिलाई मशीन?
1: जी हाँ, मेरे घर पे है।
0: बहुत बढ़िया। आज की जितने भी हमारे लिसनर हैं, लगभग ज्यादातर सारे लोगों के घरों में सिलाई मशीन है और ये सुनकर हमें अच्छा भी लग रहा है। क्या
1: जी,
0: फायदे
1: मैं
0: हैं सिलाई
1: सिलाई
0: मशीन
1: करती
0: के?
1: हूँ।
0: अच्छा, सिलाई करती हैं, ये
1: जी
0: तो
1: जी मैं करती हूँ।
0: बहुत गुड न्यूज है। क्या फायदा रहता है घर में सिलाई करने से, कुछ हमारे श्रोताओं को बताएंगी, जिससे जिनके घर में सिलाई मशीन नहीं है वो भी तुरंत ले आए?
1: जी हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। मतलब अपना खुद के भी कपड़े सिल सकते हैं और मतलब वैसे भी सिलाई पे काम कर सकते हैं।
0: जी जी सिलाई पे काम कर सकते हैं और जो पुराने कपड़े हैं
1: हाँ,
0: उनको
1: उनको भी
0: एक
1: संभाल सकते हैं।
0: संभाल सकते हैं और उनको एक नई जिंदगी दे सकते हैं, है ना? अक्सर
1: जी
0: कपड़े
1: जी
0: फट जाते हैं, तो अगर सिलाई मशीन नहीं होती है, अरे ये बार बार फट रहा है, हटाओ इसे, फेंको, दूसरा ले आओ, है ना? लेकिन अगर सिलाई मशीन घर की होगी तो वो बार बार सिलकर उन्हीं कपड़ों को एक नई जिंदगी दी जाती रहेगी, है ना? जी। आज आपका फोन लगा है सिमी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: जी मुझे गाना सुनना है डार्लिंग फिल्म, अकेले तन्हा जिया ना जाए तेरे।
0: लीजिए सिमी, सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: हेलो जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रहा है? सद्दाम अली, कैसे हैं आप?
4: मैम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
3: सब बढ़िया है। आपकी कॉल आ गई है तो और खुशनुमा माहौल हो गया है। आज का हमारा टॉपिक है सद्दाम अली, घरों से गायब होती सिलाई मशीन। आप बताइए इस बारे में क्या कहेंगे, आपके घर पे है या नहीं है सिलाई मशीन?
4: अच्छा टॉपिक है ये, घरों से जो है सिलाई मशीन इसलिए गायब हो रही है, आप लोग रेडीमेड कपड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी जो है अच्छी डिजाइने आती हैं कई तरह, तो लोग वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
3: जी जी, बहुत अच्छा रीजन आपने बताया कि सिलाई मशीन गायब होने का एक बहुत अच्छा रीजन ये भी है कि रेडीमेड की तरफ लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और जो कि एक नए नए डिजाइन के साथ नए नए कलरफुल टाइप में वो बनाते हैं तो लोग उधर ही आकर्षित होते हैं, है ना जी? लेकिन रेडीमेड कपड़ों की जो सिलाई है उसकी लाइफ ज्यादा होती नहीं है, ये तो सारे लोग जानते हैं, है ना? तब भी हमें सिलाई मशीन रखना तो जरूरी है, क्योंकि कल को उसकी सिलाई खराब हो जाती है तो घर में ही हमें सिलना पड़ता है ना
4: जी?
3: तो इसलिए तो उसकी रिपेयर करने के लिए भले से कितना भी हम रेडीमेड के ऊपर आज डिपेंड हो जाएं, लेकिन उस रेडीमेड की रिपेयर करने के लिए भी हमें एक सिलाई मशीन की जरूरत पड़ती है।
4: जी
3: सद्दाम अली, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
4: मैम फिल्म का नाम है खिलाफ और गीत के बोल है आजा सनम मेरी जान चली तेरी कसम।
3: काफी सैड सॉन्ग है लेकिन आपकी पसंद का है, आपकी पसंद आपको नजर।

0: हेलो,
1: हेलो, आपकी बात
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: आप मुन्नप्पा झा जी, नमस्कार। मैं मनकारा मंदिर पीढ़ी कॉलोनी सरगाना बरेली से 15 साल बोलने पर।
0: पन्नीलाल जी नमस्कार आप सब लोगों को। और कैसे हैं पन्नीलाल जी?
1: बढ़िया है सब। आप लोग परिवार में कैसे हैं?
0: सब लोग बढ़िया है, आपकी दुआएं हैं। और आज काफी समय के बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन
1: ये तो है
0: जी, लेकिन आपने भी मुझे पहचान लिया और मैंने भी आपकी आवाज से आपको पहचान लिया। ये सब प्यार ही है जो हम लोगों को आपस में बांधे हुए हैं। जी
1: हाँ, हमारी आकाशवाणी 90 साल से ऊपर की हो गई हो।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: पन्नी, आपको आकाशवाणी टीम को सब बहुत बहुत बधाई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बधाई के पात्र आप सब लोग भी हैं, क्योंकि आप हैं तभी आकाशवाणी है।
1: जी जी, वो तो एक दूसरे से वो है ही, प्रेम है ना।
0: जी जी,
1: हम जुड़े ही रहते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जिन्हें प्रेम नहीं है वो अपने कहीं अलग रहते हैं।
0: जी बिल्कुल। पन्नीलाल जी, आज आप हमें ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि घरों से गायब होती सिलाई मशीन मतलब क्यों हो रही है?
1: वो है विषय है।
0: जी
1: जी, तो इसके विषय में हम तो ये कहेंगे कि जो हमारे आप तो रेडीमेड के कपड़े पहनने लगे ना, घरों में से वो सिलने चाहता है, है?
0: जी।
1: समय का उपयोग नहीं कर सकते, यही है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडीमेड कपड़ों पे डिपेंड हो गए हैं लोग ज्यादातर। हाँ, लेकिन
1: तो अपने गा भी हो रही वो मशीन।
0: जी बिल्कुल, आपके घर है पन्नीलाल जी मशीन?
1: मशीन है, हाँ, चलती है।
0: जी बिल्कुल, बात
1: कपड़े सिल लेते हैं।
0: हाँ, बात यही कहने की मतलब सारा यही है कि

0: हालांकि रेडीमेड पे कोई डिपेंड हो रहा है या मशीन का कोई बाहर के भी काम हो रहे हैं, लेकिन घर में मशीन होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत हालांकि रेडीमेड कपड़ा लाते हैं हम, लेकिन उसकी सिलाई की लाइफ बिल्कुल ना के बराबर होती है,
1: बहुत कम होती है जी, वो उधर जाती जल्दी,
0: उधर जाती है,
1: कपड़ा हो जाता बेकार।
0: और उसको
1: हमारे पास मशीन होगी, हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े को दोबारा सिल सकते हैं,
0: दोबारा सिल सकते हैं और उस कपड़े को एक नई लाइफ दे सकते हैं, है ना
1: जी, जी।
0: पन्नीलाल जी, आज आपने कॉल लगाई, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म का नाम है वो मेला है, और गीत के बोल रहे हैं गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला।
0: लीजिए पन्नीलाल जी, हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये।

घर पे आज भी सिलाई मशीन है, काफी पुरानी, मेरी मम्मी की शादी की है और उसको बेचना नहीं चाहती हैं, यादगार बनकर रखना चाहती हैं। और हमारा ये कहना है कि मशीन को यादगार बनाकर नहीं रखें बल्कि उसे काम में लें। आगे लिखते हैं, घरों से सिलाई मशीन के कम होने के कारण फास्ट फैशन का चलन है, रेडीमेड कपड़ों की आसान उपलब्धता है और आधुनिक लाइफ स्टाइल है और यही वजह है कि सिलाई मशीन की जो उपयोगिता है वो कम होती जा रही है। अगली जो हमारे पास कमेंट आया है, भैरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से है, ये लिखते हैं, सिलाई मशीन तो आज भी घरों में है पर अधिकतर घरों की मशीनें खराब पड़ी हैं, न कोई उन्हें सुधारने में दिलचस्पी लेता है न कोई सिलाई करने में रुचि लेता है। आजकल रेडीमेड कपड़े पहनना ही ज्यादा चलन है और फटे पुराने कपड़े रिपेयर भी घर की महिलाएं अपनी तौहीन समझती हैं। तो हमारा आप लोगों से गुजारिश है कि तौहीन ना समझें और ये घर में कपड़े जो फटे पुराने हैं उन्हें सिलकर एक नई लाइफ देकर अपनी कला को उजागर करें। आगे ही हमारे पास ये आया है फैसल इमाम, ये लिखते हैं, मेरे पिताजी एक टेलर मास्टर थे तो इस मशीन से हमारा पुराना नाता है और वो भी सिलते थे, हम भी अक्सर बैठ जाते थे तो वो हमें पढ़ाई के लिए कहते थे। और आगे लिखते हैं कि कहते थे कि पढ़ाई करो और आगे अच्छे इंसान बनो और आज मैं जो भी हूँ वो उन्हीं की देन है। वाकई दोस्तों ये सारे कमेंट वगैरह से हमें यही पता चलता है, कॉल से भी यही पता चलता है कि सिलाई मशीन की उपयोगिता आज भी कम नहीं हुई है, आज भी लोगों के घरों में सिलाई मशीन मौजूद है। और अब कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, अपने रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, कमेंट आने का सिलसिला अभी भी जारी है। लगातार फेसबुक के माध्यम से कमेंट अभी भी आ रहे हैं। लग रहा है आप लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अभी फिलहाल ये जो कमेंट हमारे पास आया है, ये आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। भेजने वाले हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, और ये लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। रोज एक नए विषय के साथ पेश किया जाता है, और आज का जो विषय है, घरों से गायब होती सिलाई मशीन। तो लिखते हैं, मशीन गायब होने का कारण रेडीमेड वस्त्र। हर कपड़ा रेडीमेड होने से घरों की मशीन गायब हो गई है। आज हर परिवार खुशहाल है, कोई व्यक्ति पेबंद लगे कपड़े पहनना नहीं चाहता, इसलिए भी घरों से मशीन गायब हो गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर पेबंद ना भी लगे हों, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे सिलाई के, छोटे मोटे होते हैं, जो कि सिलाई मशीन के बिना अधूरे ही रहते हैं। अगला ये हमारे पास कमेंट आया है, भेजने वाली है परवीन चौहान। ये लिखते हैं, हमारे घर में एक सिलाई मशीन है जो शायद मेरे दादा दादी के जमाने की है। उस समय सिलाई से ही घर की कमाई होती थी। आज भी वो सिलाई मशीन सही सलामत है, उसे मेरे पापा कभी कभी चलाते हैं। आजकल आधुनिक सिलाई मशीनें बुटीक टेलरिंग शॉप या फिर रेडीमेड कपड़े बनाने वाले बड़े कारखानों में ज्यादा होती हैं। हालांकि दोस्तों, बड़े कारखानों में ये ज्यादा होती हैं, लेकिन हमारा आपसे यही अनुरोध है कि घर में भी आप लोग सिलाई मशीन जरूर रखें, क्योंकि घर में रखने से आप लोगों की ही अपने काम में छोटी मोटी सिलाई के बहुत ही मशीनें आती हैं। और अब दोस्तों, कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत। अगली बार एक नए विषय के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ आपके रेडियो सेट पे देगा दस्तक। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बज चुके हैं, आइए अब हम आपको आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें।

श्रोताओं, आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली। युवाओं का एनर्जी से भरपूर कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा हर रोज की तरह शाम 6 बजे से। कुछ खास है आज इस सेगमेंट में, आप जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस के बारे में। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी शाम 6:30 से। आज आकाशवाणी गांव में किसान के साथ का विषय होगा भूमि उर्वरता और खेत बचाओ अभियान के बारे में। हमारी टीम आज जाएगी ग्राम वाहनपुर तहसील आंवला ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद जिला बरेली में। ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 7 बजे से। चर्चा होगी महिला सशक्तिकरण के बारे में और साथ ही होगा आपके लिए एक क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। दोस्तों, रेडियो हेल्पलाइन आप सुन सकेंगे शाम 7:31 पर। आज का विषय होगा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका, शंकाएं एवं समाधान। आज के विशेषज्ञ होंगे, जी हां दोस्तों, आप तुरंत पहचान गए होंगे, डॉक्टर कुलदीप गंगवार। रात्रि 8 बजे से आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के कार्यक्रमों को आप लोग सुन सकेंगे। श्रोताओं, कल सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे बाल दोस्तों का कार्यक्रम अंकुर। 9 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन डॉक्टर कुलदीप गंगवार के संग। कल 9:15 से आप सुन सकेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोस्तों, कल सुबह 10 बजे से आप आनंद लीजिए अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद में। 11 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपका पत्र मिला, प्रस्तुति होगी गौरव सक्सेना की और पत्र वाचन होगा गजेंद्र सिंह का। 11:30 पर सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला। आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत का समय रहेगा कल दोपहर 1 बजे से। रस रंग का आनंद लीजिए कल दोपहर 2 बजे से। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम होगा कल शाम 4 बजे से। दोस्तों, इसकी रिकॉर्डिंग होगी कल दोपहर 2:30 से एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र।

एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत और अब आप जिस कार्यक्रम में

चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है aibareli@gmail.com। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 5:05 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है भजन संध्या।

हृदय बना लो भक्तो, गोकुल धाम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। दोस्तों, ये भक्ति से पूर्ण अपनी आपने भजन सुना अनूप जलोटा के स्वर में।

भक्ति भाव से भरा हुआ अभी आपने ये भजन सुना अनुपमा देशपांडे के स्वर में। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई।

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

लगन लगाए रे फकीरवा। दोस्तों, अभी आपने ये भजन सुना लता मंगेशकर के स्वर में। इसी के साथ भजन संध्या कार्यक्रम यहीं पर

0: समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो बरेली।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पर आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बंपर एंटरटेनमेंट। आज के साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो बरेली के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, चनेटा रेडियो 20 पास बरेली।
1: चनेटा से सुनील कुमार जी आज के हेलो बरेली के हमारे पहले लिस्टर हैं। तो सुनील जी, क्या करते हैं आप?
2: बस सर, घर पर रहते थे, तो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम सभी बढ़िया चल रहा है इस समय।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपना प्रेम हमारे साथ इसी प्रकार बनाए रखें। तो सुनील जी, मौसम तो बहुत सुहावना हो रखा है ना?
2: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो परमात्मा की कृपा है कि थोड़ा गर्मी से निजात मिली है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्मी पड़ रही थी, 3 दिन से थोड़ी राहत मिली है।
1: जी जी। तो सुनील जी, आज आपकी कॉल लगी, कौन सा गीत सुनेंगे?
2: सनम पिक्चर का नींदों आंखों में नींदें ना दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है।
1: तो सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: बरेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से बोल रहा हूँ।
0: लाल मोहम्मद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप बताएं आप कैसे हो। एक जमाने के बाद आज इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम भी कुछ अपना खुशगवार है। गर्मी का मौसम जो थोड़ा सा मध्यम हुआ और बादलों ने अपना असर दिखाया तो मौसम एकदम खुशगवार हो गया, और ऐसे मौसम में खड़ी बरेली में अगर फोन लग जाए एक चीज सुनने को मिल जाए तो समझो सोने पे सुहागा हो जाता है सर।
0: हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करते हुए। तो लाल मोहम्मद जी, आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी आज गाना सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है अंदाज, इसका एक गाना है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है सर, लेकिन चार महीने जरूर अर्ज करना चाहूंगा अगर आप कहें तो।
0: इरशाद इरशाद।
1: कसम हम उनकी आजमाए बैठे हैं, कसम हम उनकी आजमाए बैठे हैं, पास तो है मगर वो दूर जाके बैठे हैं, नजरों से नजरें मिले तो कोई बात हो, मुश्किल तो ये है वो नजरें झुकाए बैठे हैं।
0: बहुत सही कहा आपने। इसी पे एक शेर हमें भी याद आ रहा है।
1: इरशाद
0: ये माना कि हमें इजहारे जरूरत नहीं, ये माना कि हमें इजहारे जरूरत नहीं, मगर वो आंखों की जुबा तो समझते होंगे।
1: हो, बिल्कुल समझते होंगे, और आंखों की भाषा समझना भी सर एक बहुत बड़ी कला है। जी
0: बिल्कुल सही बात, आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं बिना कुछ कहे।
1: जी जी सर।
0: तो सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: हाँ नमस्कार, देवेंद्र रावत साहब का हमारा वंदे मातरम सर।
0: वंदे मातरम मखीजा साहब।
1: यस सर, आप तो आवाज से पहचान गए, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: तो मखीजा साहब, छत्तीसगढ़ में कैसा मौसम हो रखा है?
1: छत्तीसगढ़ में मौसम तो सर कल बदल था और ठंडक का थी रात में भी, अभी एकदम तेज धूप निकल रही है।
0: छत्तीसगढ़ में किस जगह रहते हैं आप?
1: धमतरी। आपके उधर मोहल्ला बोलते हैं ना, हमारे में बनियापारा बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: बनियापारा हो गया, या जैसे वार्ड हिसाब से आमापारा हो गया, कोष्टापारा हो गया, इधर पारा लगा दिया ना मोहल्ला।
0: तो लग रहा पारा ज्यादा ही चढ़ा रहता उधर।
1: जी जी।
0: कैसे लग रहे हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको?
1: एक से बढ़कर एक जोरदार, और खास कर तो जो आपकी पसंद वगैरह आप चलाते हैं वो भी अच्छा रहता है, नमस्कार बरेली वो भी बढ़िया रहता है, और जो खास लुभाने वाले प्रोग्राम में जो ज्ञान में वृद्धि करता है, तार्किक ज्ञान है ना।
0: जी जी।
1: वो 4 बजे जो आप पेश करते हैं विषय को देकर, 2:30 बजे रिकॉर्डिंग वाला।
0: हाँ, उसमें
1: आकाशवाणी के साथ वाले
0: विषय बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने पत्र या मेल के माध्यम से आप कौन से विषय पे आप प्रोग्राम सुनना चाहते हैं वो सुझाव भी दे सकते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो आज आपकी कॉल लगी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज सुनेगा गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
0: फिल्म लाल पत्थर का ये गीत सुनते हैं आप और हम और सारे।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं रावेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ दड़िया बाजार से।
0: दड़िया बाजार कहाँ पड़ता है भाई साहब?
1: ये निगोय क्लियर मार्ग पर है जी।
0: तो रविंद्र जी क्या करते हैं आप?
1: मैं खेतीबाड़ी करता हूँ।
0: बहुत अच्छा कार्य करते हैं आप, अन्न उगाते हैं और समाज का पेट भरते हैं, इस बढ़ के और क्या कार्य है ना?
1: जी जी जी।
0: हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं?
1: जी, कार्यक्रम सारे अच्छे लगते हैं मुझे।
0: हाँ, तो हम चाहेंगे आपका पत्र मिला, मैं पत्र के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि मतलब कि कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और उसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं।
1: जी जी जी।
0: रविंद्र जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर आज आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सॉन्ग सुना दीजिए।
0: चलिए, आज के मौसम को देखते हुए सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: सर मैं ग्राम पंचायत चौड़ा चौड़ी थाना निगोई जिला शाहजहांपुर से ओमकार मौर्य बात कर रहा हूँ, आपका नीमू श्रोता।
1: ओमकार मौर्य जी शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। ओमकार जी क्या करते हैं आप?
0: सर मेरी पुस्तकों की दुकान है, काफी अभी तो सर बंद है, पढ़ाई चालू होने वाली है तो मेरा सर डिपो खुलेगा।
1: बहुत अच्छा कार्य करते हैं आप, मतलब शिक्षा आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते हैं, है ना?
0: जी सर जी।
1: ओमकार जी कैसे हैं, लग रहे हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको?
0: आपके कार्यक्रम सर हमको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्य मेरे सर में रेडियो घर पे हैं, एक नहीं दो दो रेडियो हैं, एक को दुकान पे चलता रहता है, एक मेरे घर पे रहता चलता रहता है सर।
1: बहुत अच्छी बात है, आप अपना प्रेम इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखें, और हम चाहेंगे कि हमारा एक प्रत्येक रविवार को एक कार्यक्रम आता है, आपका पत्र मिला।
0: जी आपका पत्र मिला,
1: तो हम चाहेंगे कि आप अपने खतों या मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस कार्यक्रम से जुड़ें और हमारे
0: विचार दें
1: और हमारा एक कार्यक्रम आता है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, उसके हाँ उसके लिए कोई विषय अगर आपके दिमाग में आए तो उन विषयों को भी आप दे सकते। तो ओमकार मौर्य जी आपसे बात करी मुझे बहुत अच्छा लगा, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
0: सर मूवी है आई मिलन की रात और गाने के बोले सावन का महीना आया है गटा से बरसा है पानी, ये वाला।
1: तो सुनते हैं गीत आपके साथ।

0: इसी गीत के साथ आज का हेलो बरेली कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम था हेलो बरेली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बज चुके हैं। अब युवा दोस्त सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी।

दोस्तों कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। यह है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और मैं हूँ आपका दोस्त वैभव। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने सपने और पूरे उत्साह के साथ उनको फॉलो करने यानी कि उनको पाने के लिए पीछे दौड़ी रहे होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी क्योंकि युवाओं का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम युवाओं की बात तो करेंगे ही, अपने शहर की बात करेंगे, अब मौसम की भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, साथ ही में ये भी जिक्र कर लेंगे कि आज क्या खास है। दोस्तों देखें तो बरेली का मौसम हम युवाओं ने देखा ही है कि कभी युवाओं की तरह जोश में रहा तो कभी शांत नजर आया। कुछ दिन पहले आई तेज आंधी ने पूरे शहर को कहीं ना कहीं बड़ा हिला कर रख दिया। धूल भरी हवाएं चली, पेड़ झूम उठे और कई जगहों पर बिजली की व्यवस्था है वो भी प्रभावित हुई क्योंकि पेड़ अक्सर गिर गए। तो श्रोताओं, हम युवा हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम अपनों का ध्यान रखें। खास तौर से आपने देखा है आजकल जो प्रशासन है हमारा मोबाइल पर तेजी से भेजता है नोटिफिकेशन। जैसे आपने देखा होगा अक्सर एक नोटिफिकेशन आ जाता है जब शहर में पानी या तेज आंधी आ रही हो तो उस समय आप खुद जागरूक हो। अब देखिए हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें मोबाइल चलाना तो आता नहीं इतना, तो उन्हें बताएं कि इस समय थोड़ा सा सावधानी रखें और इस समय घर से बाहर ना निकलें क्योंकि अभी श्रोताओं देखिए मौसम आएगा जिसमें और बारिश का संभावना रहती है, लेकिन इस सब में हमें देखें तो बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत भी दी है। हालांकि अब एक बार फिर से सूरज अपनी ताकत दिखा रहा है और तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से तो नहीं, धीरे धीरे तो बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों मौसम चाहे जैसा भी हो, बरेली की रौनक कभी कम नहीं होती। सुबह पार्कों में लोग दौड़ते हुए दिख जाएंगे, कॉलेजों में चहल पहल दिख जाएगी। हाँ, स्कूलों की छुट्टी भले ही चल रही है लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते नौजवान, यही तो हमारी शहर की असली पहचान है। दोस्तों कहते ना, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो बहानों को नहीं खुद को बदलना होगा। आज का युवा पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, उसके पास जानकारी है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात कुछ कर गुजरने का जुनून। लेकिन अक्सर हम देखते हैं श्रोताओं कि कई युवा छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं। परीक्षा में सफलता ना मिले, नौकरी देर से मिले या किसी काम में मनचाहा परिणाम ना मिले तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, युवा दोस्तों, इस वक्त याद रखिए, असफलता यही नहीं है कि हम कमजोर हैं बल्कि ये बताती है कि अभी कुछ और सीखना बाकी है। श्रोताओं दोस्तों, बरेली के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। कोई प्रशासनिक सेवाओं में जा रहा है, कोई सेना में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई खेल के मैदान में अपना नाम कमा रहा है और कोई डिजिटल दुनिया में नए अवसर तलाश रहा है। आज के दौर में सफलता देखें तो केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। यदि आपके पास प्रतिभा है और मेहनत है तो आप बरेली में रहकर भी पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें समझदारी से करना चाहिए। ऐसी सामग्री देखें जो आपको कुछ नया सिखाएं, प्रेरित करें और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाएं। दोस्तों कुछ ऐसी खबरों जो नकारात्मक हैं और जिनकी सत्यता की पुष्टि नहीं है उसको शेयर ना करें, ये हम युवाओं का दायित्व भी बनता है। दोस्तों तो गर्मी अभी थोड़ी सी बढ़ेगी, कम होगी, इस बीच अपना सेहत का ध्यान रखिए, है ना, और भरपूर पानी पीजिए। धूप में निकलते समय सिर को ढक कर निकलें, फास्ट फूड के बजाय पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें और सबसे जरूरी है अपने दिन का कुछ समय व्यायाम और योग के लिए जरूर निकालें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको कार्यक्रम में स्वागत करते हैं क्योंकि अभी कार्यक्रम शुरुआत हुई है, कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ है। तो चलते चलते एक गीत सुनते हैं और उस गीत से सुनने से पहले मैं अपने युवा दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, राह कठिन हो तो हिम्मत बढ़ाया करो, धूप ज्यादा हुआ करे तो मुस्कुराया करो, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है दोस्तों, हर हाल में इसे दिल से निभाया करो। सुनते रहिए कार्यक्रम युवाणी सिर्फ और सिर्फ 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: तो ये है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली को और मैं हूँ आपके साथ वैभव। श्रोताओं, आपको पता है कि हम कार्यक्रम में आपको हर दिन किसी न किसी

0: अपने युवा साथी से रूबरू कराते हैं। और
1: मेरा
0: आज भी हम ऐसी एक युवा साथी से बात करेंगे जो कि बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में काम कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो अपना पहले नाम बताइए एक बार।
2: सर मैं अर्जुन यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमें एक बार श्रोताओं को बताइए कि ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है, आसान भाषा में।
2: सर ये सिविल के लिहाज से आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है, कंपनी की तरफ से मिलता है आपको।
0: जी
2: इसमें आपको 45 डेज टाइमिंग रहता है पेमेंट रिटर्न करने के लिए, जिसमें आपका सिविल और कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपको अप्रूवल दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे कार्ड होते हैं, अलग अलग कार्ड के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो कस्टमर के अकॉर्डिंग मतलब आप कार्ड दे सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए अर्जुन जी, जैसे ये क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए सिविल, अक्सर हम कहते हैं सिविल अच्छे होना चाहिए, तो ये सिविल क्या होता है ये थोड़ा सा आप बताइए।
2: देखिए सिविल आपका ये बैकग्राउंड के लेवल के अकॉर्डिंग सिविल माना जाता है। जैसे मान लो अगर आपका सिविल ठीक है तो कंपनी नजर में रहता है कि आपका बैकग्राउंड ठीक है, पिछला कोई रिकॉर्ड मतलब फ्रॉड नहीं है, मतलब आप बिल्कुल जेन्युइन व्यक्ति हो, कस्टमर हो, कोई दिक्कत नहीं कंपनी का। कंपनी लगता है अगर आपका सिविल 750 प्लस है वो बिल्कुल अच्छा माना जाता है, अच्छा स्कोर होता है।
0: अच्छा अच्छा,
2: 750 प्लस जो भी स्कोर होता है तो वो उसी हिसाब से आपको अप्रूवल दिया जाता है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये जैसे सिविल आपने बताया कि फाइनेंशियल जो भी आपकी चीजें हैं उसमें रिकॉर्ड रहता है इस तरीके से, तो अगर जैसे सिविल ठीक करना हो तो क्या कर सकता है कोई?
2: इसके लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड लोन का। अगर आप गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं, गोल्ड लोन का इंटरेस्ट भी कमी है, 0.90 रहता है, आपका सिविल बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, ऑलमोस्ट 3 महीने में बहुत अच्छा सिविल इंक्रीज हो जाएगा आपका।
0: अच्छा अच्छा,
2: और भी ऑप्शन है जैसे कि मोबाइल को फाइनेंस करा लेना, एलईडी टीवी है, फ्रिज इन सारी चीजों को अगर हम फाइनेंस कराते तो उससे भी आपका सिविल इंक्रीज होता है।
0: और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर आप ईएमआई ले तो उसका पेमेंट टाइम पे भरे, है ना?
2: बिल्कुल टाइम पे करिए। और ईएमआई में आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डिस्काउंट अच्छा मिलता है क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, तो मतलब आपको 30% तक डिस्काउंट मिलता है शॉपिंग पे। अब मान लो कुछ परचेज कर रहे हो आपको फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन एसी, तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट है वहाँ पे।
0: हाँ, तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन यही है कि टाइम से अपने पेमेंट दे दो। लेकिन अर्जुन जी, क्रेडिट कार्ड लोग बहुत कहते हैं अब है तो एक तरीके से लोन ही, तो उसमें क्या सावधानी रखें अगर कोई क्रेडिट कार्ड ले रहा है तो क्या क्या ध्यान रखें उसमें?
2: देखिए क्रेडिट कार्ड में वैसे तो किसी को भी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी होती है, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया आपका, एक्सपायरी डेट हो गई, डेट ऑफ बर्थ है, सीवीवी नंबर होता है जो क्रेडिट कार्ड पे, ये कभी भी किसी को शेयर नहीं किया जाता है। साथ में ओटीपी भी कभी किसी को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन सारे चीजों से आपका ही फ्रॉड होता है। उसमें सर आपके ही कहीं कहीं मिस्टेक होता है, तो उसमें बाद में फिर कंपनी पे क्लेम लगाया जाता है। कंपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी कभी भी किसी का कोई डाटा शेयर नहीं करती है, कहीं कहीं सर आप ही प्रॉब्लम। जैसे मान ली कोई भी लिंक आ जाता है, लिंक ओपन कर देते हैं या किसी को ओटीपी दे दिया, तो आपका फ्रॉड हो जाता है। इस चीज से बचे हैं, मतलब सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट कार्ड का नंबर, ये कभी भी किसी को शेयर नहीं करना।
0: चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
5: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
6: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
7: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
9: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
8: बिना नंबर जांचे
1: अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
9: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
9: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
10: आरबीआई कहता है,
11: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है, युवाणी में हम अपने युवा दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ ये भी जानकारी देते हैं कि क्या उस दिन खास है। तो श्रोताओं, आपको बता दें, हर वर्ष 13 जून को यानी कि आज के दिन पूरी दुनिया मनाती है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और इससे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों, सम्मान और समान अवसरों को बढ़ावा देना। अब आप ये पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि एल्बिनिज्म है क्या? तो देखिए श्रोताओं, ये एक अनुवांशिक स्थिति होती है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक जो रंग द्रव्य की मात्रा है वो बहुत कम होती है या बिल्कुल बनती ही नहीं। अब होता क्या है, इसके कारण त्वचा, बाल और आंखों का रंग सामान्य से काफी हल्का दिखाई देता है। श्रोताओं, एल्बिनिज्म कोई संक्रामक रोग नहीं है और ना ही किसी की क्षमता या प्रतिभा को प्रभावित करता है। दुर्भाग्यवश ये है कि कई स्थानों पर एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव होता है और उनके साथ गलत धारणाओं और समाज में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दिन हमें संदेश देता है कि हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले और अधिकार मिले, चाहे उसका रंग कैसा भी हो, है ना। और श्रोताओं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता होती है, प्रतिभा होती है, क्षमता होती है या सपनों को पाने की जो कोशिशें होती हैं, वो कोई रंग या फिर रूप से नहीं आती है, उसके आत्मविश्वास से आती है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने शिक्षा, खेल, कला, विज्ञान और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में एल्बिनिज्म को लेकर गलतफहमियां और अंधविश्वास मौजूद हैं। कई लोग इसे बीमारी समझते हैं, जबकि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक अनुवांशिक स्थिति है और इसमें शायद किसी का दोष भी नहीं है अगर वो अनुवांशिक रूप से ऐसा पैदा हो रहा है। तो जागरूकता ही श्रोताओं इन भ्रांतियों को दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। युवा साथियों, एक जिम्मेदार समाज की पहचान यही है कि वो हर व्यक्ति को समान अवसर दे और किसी के साथ उसके रंग, रूप या शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भेदभाव ना करे। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति बिना किसी डर और संकोच के अपनी प्रतिभा को विकसित करे। आज के दिन का संदेश केवल एल्बिनिज्म का तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमें विविधता को स्वीकार करने और मानवता को सम्मान करने की सीख भी देता है। श्रोताओं, अब हम सब अलग अलग हैं लेकिन हमारी गरिमा और अधिकार सपने समान होते हैं। एक छोटी सी पंक्ति है, रंगों से नहीं इंसानियत से पहचान बनती है, दिलों में मोहब्बत हो तो हर जिंदगी आसान बनती है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर हम ये सभी संकल्प लें कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रूप रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे और एक अधिक समावेशी, संवेदनशील और जागरूकता समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली पर अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाओं का अपना कार्यक्रम युवाणी वैभव के साथ।

तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की ये जो जानकारी रही, हमारी जो बातें रही, वो आपको पसंद आई होंगी और उपयोगी भी साबित होगी। जाते जाते एक छोटी सी पंक्ति के साथ हम चलना चाहेंगे। राहों में मुश्किलें आए तो हिम्मत मत हारना, सपनों की खातिर हर दिन एक नया कदम बढ़ाना। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, बस अपने इरादों को कभी मत बदलना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इस गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी पीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने सपनों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। और जाते जाते मुझसे एक वादा भी करके जाइए कि आप अपना और अपनों का बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। नमस्कार, शुभ संध्या, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नई ऊर्जा और नई सोच के साथ। अब अपने दोस्त वैभव को अगले कार्यक्रम में कुछ नया और नया लाने के वादे के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आपका अपना कार्यक्रम किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसानवाड़ी में सब भैया बहन को अपने भैया हेडलपाल सिंह
2: और अपने भैया तेजपाल की
1: राम राम। सुनावत तेजपाल भैया, कैसे हालचाल है आपके और आपकी खेती बाड़ी के?
2: हेडलपाल भैया, हालचाल बहुत बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान साथी हैं वो भी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी खेती बाड़ी को काम धंधो करते होंगे। और काम धंधो तो खेती बाड़ी में भैया लगो ही रहता है।
1: बिल्कुल सही बात है कि आज भैया एक समस्या उत्पन्न होगी।
2: कौन सी भैया?
1: भैया कल बालक को पेपर हो तो हमारी जो भैंस है वो 2 घंटा को धूप में बंदी रह गई और बासे वो बीमार हो गई।
2: अरे तो भैया जवाब को तो हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो हमारे पशु हैं जहाँ गर्मी में जो है अब छायादार स्थान पर बांध हैं और समय समय पर उनको पानी पिलाते रहें।
1: बिल्कुल सही बात है भैया, कोशिश तो हमारी भी यही, लेकिन क्या करें, बालक को पेपर दिलवा जाने हो तो वहाँ चले गए। कोई बात ना, आज तो ठीक हैगी। तो हम तो अपने भैया बहनों से यही कहना चाहेंगे कि भैया ऐसी चूक ना करें जैसे आज हमने कर दी कल। तो अपने पशुओं के लिए छायादार स्थान पर बांधें और खान पान को उनको विशेष ध्यान रखें। जैसे पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। भोजन की लागत को 70% हिस्सा पशुओं के पोषण पर ही खर्च होते हैं, इसलिए चारे को सही अनुपात और पोषक तत्वों को ध्यान हमें जरूर रखने चाहिए।
2: बिल्कुल सही बात बताई क्योंकि हरे चारे को बड़ो महत्व है और हरे चारे को जरूर पशुओं को खिलाना चाहिए और साथ साथ में भूसा मिला के, भूसा के साथ में दाना मिला में, चोकर मिला में और खली भी मिला में, और जो है इसके साथ साथ में अगर 50 ग्राम अगर नमक की जो मात्रा है वो दाने के साथ में घोल बना के अगर जो है ना दही है तो वो बहुत अच्छा काम करता है और साथ साथ में गुड़ भी खिला में।
1: हाँ भैया देखो, गुड़ तो थोड़ा अगर गर्म है वो तो हमारे जो भैया बहन है जैसे ही नान शांति करते हैं तो वहाँ में 50 ग्राम यानी 40 से 50 ग्राम बड़े पशुओं को नमक मिला लें और जो छोटे लवारे हैं उनको 10 से 15 ग्राम नमक देनु अब जरूरी है जिससे उनकी पाचन शक्ति बढ़िया रहे। इस पर भैया जी बताओ, आज कोई सवाल लेके नहीं आए?
2: हाँ सवाल हम लेके आए हैं और जो है पूछ रहे थे आज को सवाल अपने भैया बहन से। तो भैया बहनों आज को सवाल है, धान की नर्सरी डालने से पहले बीज नमक के घोल से डालने में क्या फायदा होता है?
1: सवाल तो आप बड़ो सामसा एक लेके आए हो क्योंकि इस समय हमारे जो भैया बहन है वो धान की नर्सरी डाल रहे हैं। तो आपने जो सवाल पूछा ना कि धान के बीज को नमक के घोल में डालना क्यों जरूरी है, जिससे भैया का फायदा होएगा, तो वो तो बतावेंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक हमारे जो भैया बहन है वो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक सुनते रहें। और तेज पर भैया आज दिन है शनिवार।
2: हाँ भैया, और आज के दिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भैया बहन हैं उनको इंतजार रहते कि आकाशवाणी की टीम हमारे गांव में आउट हुई।
1: बिल्कुल भैया, तो आज चलते हैं काऊ ना काऊ गांव में। किसान भाई

0: करते हैं तो हमारे जो किसान भाई हैं कई तरीके के धान उगाते हैं, एक तो मोटे धान और एक बारीक धान। हाँ। तो खास तौर से कौन से धान उगाते हैं?
1: सामान्य तौर पर छोटे जो काश्तकार हैं वो अपने मतलब के हिसाब से, जैसे सरबती है या इस समय मोटे धान आ गए हैं जैसे 26-26 है, ज्यादा बड़े काश्तकार हैं 15-09 या इसके अलावा और भी कई वैरायटी आ गई है नई, वो करते हैं
0: जी।
1: फिलहाल हमारे पास तो इस समय 26-26 और सरबती।
0: जी शिवलाल जी, आप एक जागरूक किसान हैं और एक समृद्ध किसान भी नजर आ रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ?
1: जी सर, मैंने IMA किया है।
0: अच्छा, कौन से विषय से?
1: सोशियोलॉजी से।
0: जी बहुत बढ़िया, और इस पढ़ाई लिखाई का आप खेतीबाड़ी में क्या फायदा उठाते हैं?
1: खाद क्या लगनी है या कौन सा बीज हमें बोना चाहिए, यही सब जानकारी मायने रखती है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से
0: जी।
1: हाँ, अपने आप खुद ही सोच समझ के या मतलब जो

0: सम्मान निधि आ रही है?
1: जी हाँ, हमारी किसान सम्मान निधि आ रही है
0: जी।
1: जब आती है तो उसका सही प्रयोग करने की कोशिश करते हैं
0: जी,
1: और करते भी हैं
0: जी।
1: जहाँ तक
0: बहुत बढ़िया बात है। शिवलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने अपने खेतीबाड़ी के अनुभव हम लोगों के बीच साझा किए। तो इस पर भैया, हमारे कुछ अन्नदाता किसान भाई हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमसे भी कोई ना कोई बातें पूछी जाए,
2: और अगली कड़ी में हमारे साथ में जो किसान साथी हैं उनसे बात

0: खेती करते ही हैं और आज के समय में ज्यादातर हमारे किसान साथी रासायनिक खादों को उपयोग ज्यादा करते हैं और होना जो चाहिए कि जैसे पहले हमारे किसान साथी जो खेतीबाड़ी करी करते हैं ज्यादा ज्यादा पशु पालते हैं हाँ। उनसे गोबर की खाद हुए करती
1: है। देसी खाद थी वो उसका खादी का रुआब अलग है।
0: आपके पास में क्या पशु है?
1: हमारे पास में है दो पशु है, एक गाय है और एक भैंस है।
0: दूध दे रही है?
1: नहीं, भैंस दूध नहीं दे रही है, दोनों ऐसे लुगाबे ना इसमें।
0: अच्छा, तो पशुपालन से फायदे तो होंगे?
1: हाँ, फायदा क्यों नहीं, उससे ऐसे हम लोग अंडा भी होता है, जैसे गाय चूल्हे की मदद करता है वो, और खाद भी बनती है। अच्छा। खाद खेत में डालने के लिए खाद हो जाती है। और गांव में रहेगा, खैर पशु नहीं पालेंगे तो गुजारा भी नहीं है, जो इतना चारा हो रहा है इसको कहाँ ले जाएंगे।
0: बहुत सही बात बताई। हाँ। लेकिन आप जब तो पशुपालन करते तो इनके लिए हरे चारे के रूप में कौन कौन सी फसल अपने खेतन में करते?
1: ये बरसीम है और ये घर के चरी है, ज्वार जिसको ज्वार बोलते हैं। और घर
0: तो पशुपालन आप करते हैं तो आपने पशुपालन करने के जो फायदे हैं वो भी आपने बताए। और इस समय देखो बरसात को मौसम चल रहा है और जब मौसम में हमारे पशुओं के लिए संक्रामक बीमारियां उनको ज्यादा खतरा बन रहे थे, जैसे कि खुरपका है, मुंहपका है और थनेल हो जाता है, तो ये बीमारियां ना हो इनके लिए का उपाय करते?
1: इसके ये देसी दवा इस्तेमाल करते हैं और जो हो जाता है डॉक्टर लोगों भी इलाज करते हैं इसका।
0: यानी कि आपके जो नजदीकी चिकित्सा केंद्र है वहाँ से डॉक्टरों को बुला के समय से टीकाकरण करा देते हैं। होना भी यही चाहिए, अगर हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तभी हमको उनसे उत्पादन अच्छा मिल पाएगा। इस समय जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके गाँव में के रोड बने हुए हैं, सीसी रोड पड़ा हुआ है, गाँव में का विकास चल रहा है और पहले से और अब में
1: पहले से अब मैं बहुत फरे गए, बहुत अच्छा हो गया गांव। पहले तो खींच कांच ज्यादा थी, अब घर खींच कांच नहीं है, जगह जगह रह गई, वो भी हो जाएगा।
0: अच्छा।
1: प्रयास चल रहा है इसका। ये हमारे गांव से अखा मोड़ से मजनूपुर तक गांव कच्चा था, ये डाबर रोड हो रहा है।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: काफी अच्छा काम।
0: और घर मकान पहले कच्चे होते?
1: पहले कच्चे थे, अब तो पक्के, अब आदमी जागरूक तो हो गया है इसमें, जो शहर से लगा हुआ है अब चल फिर रहा है तो वो देखता है तो अपने आप को भी सोचता है कि हम भी बढ़िया और बढ़िया चल रहा है कहानी।
0: बात करूं साफ सफाई की तो साफ सफाई कैसी व्यवस्था है अपने यहाँ?
1: साफ सफाई सही है, अपने आप भी लोग करते हैं अपने दरवाजे के आगे, और फिर जो रोज आते हैं जो सफाई कर्मी वो भी गांव में देख रहे हैं।
0: अच्छा, होना तो यही चाहिए, अगर मान लो सफाई कर्मी अगर नहीं आते हैं तो अपने आसपास की जो साफ सफाई है स्वयं कर लें।
1: स्वयं कर लें
0: और साफ सफाई से फायदे हुए हैं?
1: फायदा भी है, बीमारी भी नहीं आएगी,
0: क्योंकि जो मच्छर मक्खी से फैलने वाली जो बीमारियां बिना होंगी। भैया जयपाल जी, हमारी आपसे बातचीत हुई और इस बातचीत के माध्यम से आपने खेतीबाड़ी पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और तेजपाल भैया देखिए, और भी किसान साथी हैं जो प्रतीक्षा में हैं बातचीत करने के लिए, तो उनसे भी बातचीत की जाए।
0: बिल्कुल भैया, हाँ कर लेते हैं।
2: एक बुजुर्ग अन्नदाता है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, उनसे जानेंगे आपका शुभ नाम।
3: तोताराम।
2: तोताराम जी, हमारी और आपकी कौन से गांव बातचीत हो रही है?
3: ग्राम बाहनपुर
2: जी। कितनी उम्र होगी अपनी?
3: हमारी उम्र 70 साल।
2: अरे बहुत बढ़िया बात है, और आपका स्वास्थ्य भी इस समय बढ़िया है, तो ये जानना चाहेंगे कि इस समय आप खान पान क्या रखते हैं जो अपना स्वास्थ्य अच्छा सा बना हुआ है?
3: खान पान के लिए देखो दूध मठा की
2: कमी ना है?
3: कमी नहीं है, जानवर हमारे पास है भैंसा
2: जी,
3: तो बेचते भी है लेकिन खाते पहले हैं
2: जी,
3: इसलिए
2: जी होना भी चाहिए। जो हम मेहनत कर रहे हैं, जब हम खाएंगे ही नहीं तो मेहनत कहाँ से हो जाएगी?
3: बिल्कुल सही बात।
2: तो इस समय क्या कामदारी चल रही है?
3: कोई कामदारी नहीं, जानवर को खिलाना
2: जी,
3: और पौधे पड़ रही है, धान की पौध डालना
2: जी। कौन कौन से धान की पौध डाल रहे हैं आप?
3: सरबती की पौध पड़ी है।
2: अच्छा।
3: ताज की भी पड़ी है।
2: अच्छा।
3: यही दो तीन धान रखे हैं।
2: उम्र आपकी काफी है, आप बता रहे हैं कि 70 साल हमारी उम्र हो चुकी है, तो जानना चाहेंगे कि पहले आपका गाँव कैसा था और आज आपका गाँव कैसा है?
3: था कच्चे मकान बने हैं, मढ़ियां पड़ी हैं, एक मकान था गांव में हमारे उस पर।
2: अच्छा।
3: आज तो घर घर के मकान हैं
2: जी, सब पक्के हैं।
3: बिल्कुल।
2: सड़कें कैसी हैं?
3: सड़का भी बढ़िया है
2: जी। गांव में बिजली की व्यवस्था?
3: बिजली फिजली की सब साधन है,
2: तो देखा जाए तो एक तरीके से समृद्ध गांव है आपका।
3: गांव दुखी नहीं है
2: जी,
3: बढ़िया है गाँव।
2: अधिकतर हमने देखा जब हम आ रहे थे आपके गांव में, तो पशुपालन काफी तादाद में होता है।
3: पशु काफी पालते हैं हम लोग
2: जी। बरेली भी नजदीक है, तो लोग जो दूध का उत्पादन करते हैं उसको बरेली ले जाते होंगे बेचने के लिए?
3: जाता है, यहाँ भी डेयरी पे दे देते हैं।
2: अच्छा।
3: डेयरी खुली है?
2: डेयरी खुली हुई है, तो डेयरी पे किस हिसाब से दूध जाता है?
3: 50 रुपया लीटर।
2: अच्छा।
3: 50 रुपया लीटर जाता है।
2: वो मुद्द खरीद लेते हैं या फिर फैट के अनुसार?
3: 50 रुपया तो लीटर पर वैसे भी दे दो।
2: अच्छा। और वैसे मशीन पे कंप्यूटर पर लगा करके भी लेते हैं?
3: जैसी युवा में
2: फैट आ जाए
3: फैट आ जाए
2: तो वो उसी हिसाब से जो है दूध की बिक्री होती है। अब बात करें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ

0: इस समय आपको मिल रहा है? किसान सम्मान निधि आ रही है आपकी?
1: हाँ आ रही है।
0: अच्छा, और वृद्धा पेंशन?
1: ना,
0: वो नहीं आ रही है। तो आपकी उम्र तो काफी हो चुकी है, वृद्धा पेंशन का भी लाभ उठाए आप?
1: मैं अनपढ़ आदमी हूँ, दो एक लोगों से कही
0: जी,
1: तो बोले तुम्हारे नाम जमीन नहीं मिलेगा।
0: अच्छा, तो इसलिए वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी। जमीन है तो हमें किसान सम्मान निधि तो प्राप्त हो ही रही है।
1: वो ही हो रही है।
0: क्या करते हैं उस सम्मान निधि का?
1: पैसे मिलता है, खर्चा में अपने लेते हैं, मौन सौ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
0: बात सही है और होना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आता है कि किसान भाई के घर में पैसे नहीं है और खेती पैसा मांग रही है और उसी समय आ जाती है किस्त।
1: बड़े आराम से आ रही किस्त, बाबू लगा लगाओ तो जमीन में
0: जी, तो उसकी हम समय पर लगा लगा देते हैं।
1: हाँ, टाइम पर
0: जी, जिससे खेती हमारी धोखा नहीं देती।
1: हाँ।
0: और होना भी यही चाहिए। घर परिवार में कितने लोग हैं?
1: घर परिवार में छोटे मोटे 50 आदमी।
0: अच्छा, यानी बड़ा परिवार है,
1: बड़ा
0: सब मिलजुल करके ही रहते हैं?
1: सब मिलजुल कर रह रहे हैं, चैन से काट रहे हैं
0: जी। अब थोड़ी सी बातचीत करें, गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए? स्कूल,
1: बच्चों की पढ़ाई को स्कूल इंटर तक है।
0: अच्छा, गांव में ही?
1: गांव में।
0: तो ये अच्छी बात है, किसी किसी गांव में तो इंटर कॉलेज नहीं, 8वीं तक की व्यवस्था है।
1: 8वीं है, इंटर कॉलेज है, इस व्यवस्था सब सरकार ने करी है।
0: अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ता है।
1: नहीं, बीए तक का बस, इंटर तक तो पढ़ाओ।
0: हाँ, इंटर तक तो पढ़ाओ जी, फिर बरेली घर में
1: बस
0: है, वहाँ पर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं।
1: जाइए रहे हैं बच्चा
0: जी। हमने सुना कि आपके गांव में पहले समय पर काफी मात्रा में देश की सेवा के लिए फौजी काफी थे।
1: हैं, 3-4 लोग फौजी है।
0: अच्छा,
1: रिटायर हो चुके हैं?
0: सब रिटायर हो चुके हैं, अब घर पे ही हैं
1: सब
0: जी। काफी योगदान दिया है आपके गांव ने देश की सेवा में। हम ये जानना चाहेंगे, ये पिछले दिनों कुछ छुटपुट बूंदाबांदी हुई है, बरसात हुई है, हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा हुआ इससे?
1: इससे फायदा काफी हुआ, जमीनें जुत गईं, घास कूड़ा सूख गया
0: जी,
1: और बाकी न तो जमीनें पड़ी होती
0: जी,
1: अब सब जमीनें जुती गई हैं।
0: पहले ही खेत जोत देने से इन गर्मियों के दिनों में क्या फायदा होता है खेतों?
1: उसमें दो फायदा हो जाते हैं, एक तो घास नहीं होती है
0: जी,
1: दूसरी बात जाए फसल अच्छी होती है
0: जी,
1: मिट्टी भुन जाते घाम में, इसलिए
0: जिससे जो है हमारी खेती बाड़ी पानी बरसात के दिनों में अच्छी तरीके से पी लेती
1: अच्छी
0: है।
1: होगी जितनी भी जमीन
0: जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद तोताराम जी, आपसे हमारी बातचीत हुई। तेज पर भैया, समय भी इस समय काफी हो चला है कि अब अपने किसान भाइयों से अनुमति लेते हैं और पुनः लौटते हैं आकाशवाणी केंद्र की ओर, मुलाकात करते हैं अपने अन्नदाता बाहनपुर गांव के किसान भाइयों से। इन्हीं सब बातों के साथ बाहनपुर गांव के सभी किसान भाइयों से अनुमति लेते हैं। भैया बहनों, राम राम। तेज पर भैया।
2: हाँ भैया।
0: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ, और आज कार्यक्रम में प्रतिभागी है शिवलाल, श्री जयपाल दिवाकर और श्री तोताराम, और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति ही गौरव सक्सेना की। तब जी बताओ, अब अपने भैया बहन को क्या सुनवा रहे हो?
2: मनोरंजन करा देते हैं अपने भैया बहन को जो लोकगीत के माध्यम से।
0: बिल्कुल भैया, तो जब प्यारे से लोकगीत को सुनने के लिए कुछ सोशल मीडिया संदेश भी आए उनको शामिल कर लें।
2: हाँ बिल्कुल
0: जी, हमारे साथी हैं कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं द्वारकाधीश जय श्री राम जय हनुमान लिख रहे हैं, ये सफेदी सिटी हरियाणा से, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाड़ो और लवली खन्ना, साथ में है रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और समस्त खन्ना फैमिली। तो भैया, आप सभी के अनुरोध पर आवाज सुन लेते हैं जय मधुर लोकगीत।

0: तो वो जो काम जरूर करें जिससे उनकी धान की नर्सरी अच्छी होए। और ये बताओ भैया, हमारे जो भैया बहन हैं वो इस समय और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे इन दिनों हल्की फुल्की वर्षा हुई गई है जहाँ तक, तो जहाँ खेत जुतन लायक हैं उनकी जुताई कर दें।
1: हाँ हाँ, और जा जुताई से तो बहुत फायदे हैं।
0: खरपतवार बेउग के नष्ट हो जाएंगे और खेतन की जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो हमारे जो भैया बहन हैं खेती बाड़ी के काम में देखो फुर्सत तो मिलता ना है
1: ना।
0: अब खरीफ की फसलन की खेती को काम शुरू हुई हो, तो पहले जो है हमारे भैया बहन जो मेड़ बंदी है खेतन की वो अच्छी तरीका से कर लें, क्योंकि धान की फसल उनको लगानी है। कुछ हमारे किसान भैया बहन है जो उर्द बाजरा की खेती करेंगे, है ना। तो हमारे खेतन में हमारे जो भैया बहन है वो देसी खाद डाल देंगे, कुछ हमारे भैया बहन है वो रासायनिक खाद डाल देंगे। तो जिससे होता का है कि जब हमारी मेड़ कटी फटी होंगी तो निश्चित रूप से जब वर्षा होगी तो पानी हमारे खेत को निकल जाएगा।
1: और धान की फसल के फसल के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो अच्छे से अगर मेड़बंदी करके रखेंगे तभी अपने जो खेत में पानी को एकत्रित कर सकते हैं हमारे किसान साथी।
0: बिल्कुल भैया, और जो पोषक तत्व हम अपनी फसलों को देते हैं वे बह के दूसरे के खेतन में ना जाएंगे, है ना। तो जिस तरीका से हम जो बता रहे हैं अपने भैया बहन को ये काम इस समय मेड़बंदी को जरूर कर लें। और हाँ, अब बरसात के दिन आ रहे हैं, हमारे भैया बहन एक काम और कर सकते हैं। कहीं कहीं आपने देखा तो होगा काफ़ी दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नजर ना आवत है, वो धूप में काम कर रहे हैं तो परेशान होते हैंगे। तो सुस्तान के लिए पेड़न की छाया बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो आने वाले समय में बरसात के दिनों में अपने खेतन पे कोई ना कोई छायादार वृक्ष लगा लें या फलदार वृक्ष लगा लें।
1: और होनू जे चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जो पेड़ पौधे हैं खेतन में लगावेंगे तो आगे आने वाले समय में वो उपयोगी भी बहुत होते हैं। बखत बखत पे आकर उनको बेच के अपने जो है उसके पैसा को अपने अन्य किसी काम में लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, पैसा उनको काम में भी लगा सकते हैं और फलदार वृक्ष लगाएंगे तो भी हमको फल भी देंगे, तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बन रहे हो। तो अब देखो धीरे धीरे घड़ी भी टिक टिक करके शुरू करने लगी है, जी बताओ चल चल तो अपने भैया बहन से क्या कहना चाहोगे।
1: हम अपने भैया बहन से यह कहना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम से हमको जो नसीहत मिलता है वो यह है कि हमारी जो खेती बाड़ी करने वाली जो ज़मीन है उसकी उर्वरता बरकरार बनी रहे, यानी कि उसकी उर्वरता में बढ़ोतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जैविक जो है खादों को इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल सही बात है, देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालें, अपने खेतन में हरी खाद उगावें और जो जैविक खादें हैं उनको उपयोग करें जिससे हमारे भूमि की उर्वरता बनी रहे और हमारे जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया बहनों से अनुमति लेते हैं। भैया बहनों राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: तेजपाल भैया।
1: हाँ भैया,
0: मधुर लोकगीत को सुनने के लिए कुछ संदेश और है जो हमारे भैया बहन ने भेजे हैं। ग्राम ललहुआ जिला खीरी से भेजन वाले हमारे साथी विजयपाल यादव, शुभम यादव, शेखा यादव, ऋचा यादव और गुड़िया यादव, इन्होंने भी सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल भए लोकगीत सुनने के लिए। और अब ये बताओ भैया, कार्यक्रम के शुरू में आपने एक सवाल पूछो, कहो तो आपको मिलान करवाए दें।
1: बिल्कुल भैया,
0: सवाल हो, धान के बीज को नमक के घोल में डालने से क्या फायदा होता है वो? तो भैया क्या है जाको उत्तर?
1: जा सवाल को जवाब है, धान के बीज को नमक के घोल में डालने से हल्के और खराब धान पानी में तैर के ऊपर आ जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और जो स्वस्थ बीज होते हैं वो बैठ जाते नीचे।
0: अच्छा।
1: और नर्सरी में उन्हीं बीजों की बुझाई वो ही है जो नीचे बैठ जाए पानी।
0: बिल्कुल सही बात है कि भैया उन्हीं बीजों को इस्तेमाल करें तो हमारी जो नर्सरी है वो स्वस्थ होगी। तो इस तरीका से हमारे जो भैया बहन हैं, इस समय कुछ भैया ने तो नर्सरी धान की डाल दी है और कुछ भैया योजना बना रहे हैं धान की नर्सरी डालने की। तो जिन भैया योजना बना रहे हैं धान की नर्सरी डालने की

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: एक बार फिर ग्राम जगत कार्यक्रम में सब भैया बहन को बहुत बहुत स्वागत है। तेज पर भैया,
1: हाँ भैया,
0: देखो हमारे जो भैया बहन है वो हर समय काम धंधे में कोई ना कोई लगे रहते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हमें अपने खान पान को विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, खान पान हमारा ठीक ठाक रहेगा, तभी हम अपनो काम धंधो है वो अच्छे से कर सकेंगे और अपनो

0: निकास कर सकें।
1: बिल्कुल सही बात है। और इन दिनों में तो भैया गर्मी खूब पड़ रही हैगी, तो ऐसे में गर्मी में काम करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान रखनी है, जैसे कि खान पान में सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खानी है ना। वहाँ में हरी मिर्च है, नींबू है, टमाटर है, प्याज है, इन चीज़ों को सेवन करें। और साथ ही साथ तरबूज खरबूज अगर खूब चल रहे हैं भैया, है ना, तो तरबूज खरबूज इस समय खूब खाएं, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे।
0: हाँ भैया। और देखो भैया, हमारे जो देश में देख रहे हो कि जो महिलाएं हैं वो आज के समय में भी काफ़ी पिछड़ी हुई हैं गांव में,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और जब पिछड़ने को कारण है कि शिक्षा को अभाव। अभी जब सोच पुरानी वाली अभी खत्म ना भी गांव में कि लड़कियों को कम पढ़ाओ और लड़कन को पढ़ने दो।
1: लेकिन भैया ये बात तो गलत है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो खास तौर से हमारे जो ग्रामीण भैया हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़कियां हैं उनको भी उतना ही पढ़ाना चाहिए जितने हम लड़के को पढ़ा रहे हैं।
0: और कहीं कहीं हमारे गांव में स्कूल जो हैं वो 8वीं तक हैं और कहीं कहीं हाई स्कूल इंटर तक हैं, लेकिन जहाँ स्कूल 8वीं तक हैं तो वे जय कहते हैं कि बस 8वीं तक पढ़ा लो, हम अपनी लड़कियों को बाहर ना पढ़ने भेजेंगे।
1: लेकिन भैया आज के समय में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी खूब नाम रोशन कर रही हैं। हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे आप रेलवे के क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ भी आज महिलाएं हैं वो ट्रेन चला रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। और स्कूलों में देखें तो शिक्षा का कार्य भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं कर रही हैं।
0: बिल्कुल भैया। और देखो हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ काम कर रही हैं।
1: और बात करें खेती बाड़ी में, तो खेती बाड़ी के काम धंधे तो भैया महिलाओं के बिना बहुत अधूरे हैं। अब जैसे घर पे खेतन पे तो काम धंधे हमारे किसान भैया करे आए, लेकिन बा में घर पे बाबू भंडारण करने हैं, छरनू फटकनू हैं, ये सब काम तो महिलाओं के ही हैं।
0: और घर पे पशु हैं, ज्यादातर जो है पशुओं की देखभाल घर पे महिलाएं ही करती हैं।
1: तो महिलाएं भी कम नहीं है भैया पुरुषों से, लेकिन हाँ शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो जो महिलाएं हैं वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज के समय में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी अधिक जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जगह जगह पर। जैसे अपने यहाँ IVRI है, वहाँ पर भी प्रशिक्षण चलते रहते हैं महिलाओं के। कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी जा सकते हैं, अचार मुरब्बा पापड़ इन चीज़ों के बनाने के प्रशिक्षण ले सकते हैं, कचड़ी पापड़ उनके घर पर उद्योग लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल, जिसमें जिससे जो महिला जो है सेल्फ यानी कि अपने पर आधारित हो जाए और जो है सशक्त रहे।
1: बिल्कुल सही बात है। तो तेज पर भैया कार्यक्रम में बातें तो आगे भी होंगी, एक क्षेत्र संकलित बातचीत है। आज हम क्षेत्र भ्रमण में गए तो करके लाए, तो कहो तो सुन लें।
0: बिल्कुल भैया। हाँ भैया,
1: किसान भाई प्रतिदिन क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको अन्नदाता किसान भाई उनसे बातचीत कराते हैं। और आज भी हमारे साथ में एक अन्नदाता किसान भाई हैं, उन्हीं से जानते हैं कौन से गांव में उनसे हमारी बातचीत हो रही है और किस तरीके से अपनी दिनचर्या चलाते हैं। आपका नाम सुखलाल?
2: सुखलाल।
1: सुखलाल जी कौन से गांव में रहते हैं?
2: बाहनपुर।
1: बाहनपुर कौन से ब्लॉक का गाँव है ये?
2: आलम मुजफ्फराबाद। और
1: अच्छा क्या करते हो?
2: हम किसानी करते हैं।
1: अच्छा
2: मजदूरी करते हैं
1: और जानवर भी पालते हैं, यानी कई कार्य आपने कर रखे हैं। समय निकलता है जब घर पे काम नहीं है तो मजदूरी को निकल गए, खेती का काम है तो खेती कर ली, और वरना पशु तो अपने हैं ही हैं। तो कितने पशु पाल रखे हैं आपने?
2: एक गाय एक भैंस।
1: अच्छा दो पशु पाल रखे हैं, दूध का क्या करते हैं?
2: दूध खाते भी बेचने भी रहते खर्चा भरे को।
1: अच्छा कितना दूध बेच देते हैं एक दिन में?
2: 3-4 किलो।
1: 3-4 किलो किस भाव बता है?
2: 50 रुपए किलो।
1: अच्छा तो 4 किलो अगर दूध हमने बेच भी दिया तो 200 रुपए का दूध
2: भैंस का खर्चा निकल आया
1: हो गया, और भैंस का खर्चा निकल आया, हमारे लिए खाने को दूध भी मिल गया, बच गया। तो इस तरीके से अपनी दिनचर्या रहती है। खेती बाड़ी कितने समय से कर रहे हैं?
2: खेती बाड़ी तो हम पैदा से हमारी यहाँ बाप दादे पैदा यहाँ जमीन करते हैं
1: जी। तो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की?
2: पढ़ाई लिखाई हमें नागरिक करते।
1: वैसे तो किसी के माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे ना पढ़े, कभी कभी बच्चे भी मक्कारी दे जाते हैं कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते।
2: हम छोटे पे हमारे बाप देव की सांस की मर्जी, उन पे काम है ना वो करते, तो हम ही ने काम करा वो हर बारे का,
1: यानी कि जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर
2: हम ही पर रही,
1: इसी कारण से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए।
2: हर जो तो काश्तकारी करी,
1: काश्तकारी की, यानी कि उनकी परेशानी आपने अपने ऊपर ली,
2: अपने उठाई
1: है, इसी कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पाए। क्या आपको एहसास होता है?
2: ऐसा तो बेहतर होता है कि टिकट लेने जाओ तो पूछो कौन सी डिब्बे में बैठे, कौन सी गाड़ी है,
1: जी
2: हाँ, कहूँ रास्ता देखो, वोट देखो, किधर को जाए किधर को नहीं, पूछ नहीं पड़ता है।
1: दूध भी कहीं बेचने जाते होंगे वो भी पर्ची पे लिख देता होगा कि पता नहीं कितने लीटर
2: कितने लीटर, हमें नहीं पता है, चाहे कुछ भी दे दे।

0: आपके जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं?
1: हाँ, वो पढ़ रहे हैं।
0: तो ये सारी चीजें फिर उनको दिखानी पड़ती होंगी?
1: सब दिखानी पड़ती, लड़की पढ़ी हुई है, लड़का पढ़े हुआ है, इंटर करे।
0: अच्छा
1: जी,
0: सुना है आपके गांव में तो इंटर कॉलेज है?
1: इंटर कॉलेज हमारे गांव में है।
0: बाहर नहीं भेजने पड़ते?
1: नहीं, नहीं, हमारे बच्चा ने इंटर यहीं करा है भानपुर में।
0: अच्छा,
1: दसवीं पास हो गया ऐसे?
0: अच्छा, ये बढ़िया। अब क्या कराने की सोचिए?
1: अब देखो अपने पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाने की योजना है?
1: जहाँ तक इच्छा है मिनी बाल करने की।
0: बाल करने की
1: बस?
0: यानी घर से आपने तो पूरी छूट दे रखी।
1: पढ़ लो जितने पढ़ मिले तुम्हें
0: जी, और फिर सफलता तो अपने आप मिल ही जाएगी जब अच्छे पढ़े लिखे होंगे
1: तो।
0: हैं, मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी।
1: हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया। तो आपको किसान सम्मान निधि आ रही है? किसान सम्मान निधि सरकार के माध्यम से 2,000 रूपए आते
1: हैं। वो आते हैं, अब जैसे कोई कमी आ गई, रुक गए
0: तो आपने दिखाया नहीं?
1: दिखाएंगे।
0: हाँ दिखाइए, क्योंकि सरकार के माध्यम से योजना चल रही है हमारे किसान भाइयों के कल्याण। तो जमीन आपके ही नाम है?
1: हाँ, जमीन हमारे नाम है।
0: तब तो सही है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बातें आ जाती है कहीं KYC नहीं है। हाँ, किसी का नाम गलत है, किसी का खाता गलत हो गया है, तो इस कारण से रुक गई है। तो जन सेवा केंद्र पर जाएं आप, या फिर अपने ब्लॉक में जाएं, वहां पर संपर्क करें, तो आपकी किसान सम्मान निधि आने लगेगी। जो भी रुकी हुई किस्तें हैं वो भी आ जाएंगे।
1: हाँ,
0: तो उसको जरूर से जरूर दिखाइएगा, ठीक है?
1: दिखाएंगे।
0: अब ये बताओ आगे आने वाले समय में कौन कौन सी फसलें करेंगे?
1: अब धान करेंगे, बाजरा करेंगे।
0: अच्छा, धान और बाजरा,
1: हाँ।
0: दो फसलें ही करते हैं?
1: फसल।
0: अच्छा, हमने देखा कि आपके इधर उड़द बहुत कम होता है।
1: उड़द होता है, कम होता है, गाय खा लेती है।
0: गाय खा लेती है,
1: दाल कम करते हैं लोग।
0: अच्छा, सुनने में आ रहा है कि सभी गांव में हमारे किसान भाई शिकायत करते हैं कि जो आवारा पशु हैं वो बहुत हैं।
1: बहुत हैं, रात रात भर जगते रहते हैं, आंखें खोलते रहते हैं, दिन में काम करो, रात को पशु रखाओ
0: जी। सुखलाल जी, एक बात बताइए हमें, आप जो शिकायत आप भी कर रहे हैं और अन्नदाता किसान भाई भी करते हैं, ये पशु आए कहाँ से?
1: पशु आएगा, हम ही सबके हैं, अपने सबके हैं,
0: अपने सबके।
1: इसने दूध नहीं दिया, उसने लोगे खोल दिए, तो वो ही लोगे घूम रही है
0: और आपकी फसलें खा रही हैं?
1: अपनी फसलें खा रही हैं।
0: है, तो कमी तो सरकार की है नहीं इसमें?
1: सरकारी नहीं है,
0: है?
1: अपनी है।
0: आपकी कमी है
1: जी।
0: तो जब तक दूध दिए तब तक तो पकड़े रहे
1: तो छोड़ दें।
0: उसके बाद छोड़ दी, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप क्या उपाय करते हैं?
1: कुछ उपाय ना करते, तार लगाते हैं और रात को रखाते हैं।
0: बड़ी समस्या,
1: तार लगाते हैं, गाय कट रही है,
0: जख्मी हो जाती है जी। बहुत समस्याएं आती हैं,
1: बहुत समस्याएं
0: हैं। आपने, हमने देखा कि आपके गांव को आ रहे तो चारे वाली फसलें, जैसे किसी के घर खेत में बाजरा खड़ा है, किसी के खेत में चरी खड़ी है।
1: हाँ, चरी बहुत है आपके हमारी, चरी बहुत है।
0: तो हरे चारे की कमी नहीं है?
1: ना, हरे चारे की तो खूब खा रहे हैं
0: जी। उधर जाड़े के दिनों में कौन सा चारा उगाते हैं? बरसीम
1: और जई
0: जई, और इन दिनों में आपकी ज्वार हो जाती है?
1: ज्वार हो जाती है।
0: तो इस तरीके से पशुओं को हरे चारे की कमी रहती है। निखालस हरा चारा खिलाते
1: हैं? मिला के खिलाते हैं।
0: अच्छा, निखालस चारा खिला दे तो क्या कोई समस्या?
1: तो पोंकंगे खाएंगे ना पोंगे।
0: अच्छा, पशु गोबर ढीला करेंगे हैं, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सूखा चारा मिलाना जरूरी है।
1: सूखा चारा जरूर मिलाना है। तो चरी में देखो सूखा चारा जरूर मिलाते हैं, थोड़ा बहुत देखो भूसा
0: जी। तो अब इस समय भूसा मिला रहे होंगे?
1: अब इस टाइम भूसा मिला रहे हैं, फिर प्यारी कुटी मिलाएंगे,
0: प्यारी कुटी हो जाएगी। गन्ना होता नहीं है?
1: गन्ना होता है, कम होता है, एक आदमी
0: जी।
1: क्योंकि जमींदार है, ज्यादा जमीन है उनकी, 10-20 बीघा काट देते हैं।
0: और जैसे
1: 10-5 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, वो गन्ने गाड़ के खाया होगा
0: जी, उसका औजार भी काफी होगा। सुखलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारी खेती बाड़ी के विषय में बातचीत हुई।
2: भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे सुखलाल जी के अनुभव खेती बाड़ी के, और इससे और इनसे बातचीत कर रहे हमारे भैया हैडलपाल।
3: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
4: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
0: प्रिंसिपल भैया, अब अपने भैया बहन को कुछ मनोरंजन करवा दो जाए।
2: हाँ, मनोरंजन तो अपने भैया बहन करावेंगे, लेकिन हमारे कुछ भैया बहन ने फरमाइश व्यक्त करी है।
0: अच्छा,
2: वो इस प्रकार से है कि रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और साधुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़।
0: और जी, चिट्ठी हमको मिली है ग्राम दूरी नगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया, मनोज कुमार, विशाल, संगम, बिभू, आदर्श, आदित्य, कुमकुन, निव्य और सरता की। तो भैया, आप सुन लेते हैं आप सभी के अनुरोध पर जे मधुर लोकगीत।

0: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: तेज पर भैया आप समय आए अपने भैया बहन से और अधिक बातें करें और उनको गीत संगीत सुनवावे। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया हेडलपाल सिंह
3: और अपने भैया तेजपाल को दे अनुमति। भैया बहनों
2: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। प्रवेश कुमारी पुत्री श्री तेजराम निवासी ग्राम बैकनिया चंपतपुर थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली से 14 फरवरी 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 16 वर्ष

है, कद 5 फीट, इकहरा मजबूत जिस्म, रंग सांवला, आंख नाक कान औसत है। ये नीले रंग का सूट और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में जिस किसी को भी कोई भी सूचना मिले तो कृपया थाना प्रभारी, थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली को सूचित करने का कष्ट करें। श्रोताओं, आप इन फोन नंबर्स पर भी सूचित कर सकते हैं। फोन नंबर्स हैं 9454403090। नंबर एक बार फिर सुन लीजिएगा, 9454403090। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। मेहनत और सही नजरिया आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तय करें कि आप वास्तव में क्या पाना चाहते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे दैनिक या साप्ताहिक कार्यों में विभाजित करें। जो लोग अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं उनके सफल होने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। वो क्या कह रहा है, वो क्या कहेगा, वो क्यों कहेगा, इन सब विचारों में ना उलझें और हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी पीछे मुड़कर ना देखें। अपने आगे का रास्ता कैसे तय करना है इस पर ध्यान केंद्रित करें। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दो दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन

0: के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था, और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
5: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय, समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका, शंकाएं एवं समाधान। आज

0: विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
2: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप, वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
5: बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
2: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
2: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
4: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
2: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
1: गंगवार हॉस्पिटल,
2: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
6: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: सभी श्रोताओं को और पंडित जी आपको मेरा नमस्कार।
6: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और कब उन्हें कोई नई जानकारी मिले। हालांकि विषय हमारा पुराना ही है आज भी, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि हमारे श्रोता कुछ नया जान पाएंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमने एक बार पुनः रखा है, समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। क्योंकि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बात है तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे किन्हें कहा जाए।
7: जी देखिए, जो नॉर्मल गर्भा पीरियड है,
6: जी गर्भकाल,
7: गर्भकाल है 37 वीक से,
6: यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह का जो समय है,
7: जी वो नॉर्मल एक गर्भकाल का इंसान का है
6: जी।
7: तो लेकिन जो 37 सप्ताह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं,
6: अच्छा,
7: वो प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं
6: जी, जी।
7: तो प्रीमेच्योर में भी अलग अलग कैटेगरी है
6: जी,
7: जैसे कि लेट प्रीटर्म जो 37 से 32 सप्ताह के बीच में,
6: अच्छा,
7: जो 32 सप्ताह से और पहले पैदा हो जाते हैं वो प्रीटर्म,
6: अच्छा,
7: और जो मान लीजिए 28 वीक्स या उससे पहले पैदा हो जाते हैं वो वेरी प्रीमेच्योर।
6: तो क्या डॉक्टर साहब ये संभव है 28 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ जीवन जी पाएगा?
7: देखिए, इन बच्चों को जो परेशानी है वो इस वजह से है कि ये समय से पूर्व पैदा हुए
6: जी।
7: समय से पूर्व पैदा होने में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग है
6: जी
7: वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने विकसित हो जाने चाहिए।
6: अच्छा अच्छा।
7: तो इसलिए हर अंग शरीर का अपने आप में एक कठिनाई पैदा करता है
6: जी, जी।
7: जो बच्चा समय से पूर्व पैदा है, जो सर्वाइवल संभव है आज की तारीख में
6: जी, अच्छा।
7: और वो बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं 25 वीक्स एंड 26 वीक्स के
6: जी, जी।
7: तो उससे कम जो और पहले के पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ जगह रिपोर्टेड है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे बच जाते हैं।
6: अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्भकाल 9 महीने का कहा जाता है, 9 महीने, 9 दिन, 10 दिन इस तरह से, उसकी जगह आप बता रहे हैं कि 6 महीने, यानी जो 26-24
7: 9 महीने 7 दिन गर्भकाल नॉर्मल माना
6: जाए, नॉर्मल माना जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आप गर्भकाल बता रहे हैं तो 6 महीने, 6.5 महीने का ही बच्चा?
7: जी जी जी, 6.5 महीने के जो बच्चे, 6 महीने के बच्चे, जैसे 24-25 वीक्स के जो बच्चे पैदा होते हैं
6: जी,
7: तो उनमें एक तो सबसे अधिक जो कॉमन समस्या आती है कि लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते,
6: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत नहीं,
7: हाँ मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर, जब तक बच्चा या प्रीटर्म बेबी माँ के गर्भ में है तो उसको ऑक्सीजन हुआ, बाकी सारी न्यूट्रिशनल सप्लाई हुई या जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब माँ से मिलता है थ्रू ब्लड। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं और वो उसको ऑक्सीजन अपने आप उतनी बनानी पड़ती शरीर में कि जो उसका काम चल सके
6: जी, जी।
7: जब लंग्स इमेच्योर होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
6: अच्छा,
7: तो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसकी सांस तेज चलना शुरू करती है क्योंकि बच्चा कंपनसेट करने की कोशिश करता है उस प्रीमेच्योरिटी को या लंग की उस इनसफिशियंसी को जल्दी जल्दी सांस लेके,
6: यानी जो फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है वो नेचुरली
7: कम, क्षमता तो कम है ही
6: जी,
7: जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस कम है। दूसरा, उस चीज को बच्चा पूरा करने की कोशिश करता है उसे जल्दी जल्दी टैकिपनिया करके,
6: अच्छा,
7: मतलब सांस की गति बढ़ा के,
6: ऑक्सीजन की जो जरूरत
7: रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर सर्फेक्टेंट कम है जिसको

0: के बोलते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी एनआरडीएस या एचएमडी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज
1: जी।
0: अगर प्रीमेच्योर बच्चे में वो है तो आपको सर्फेक्टेंट एक दवाई होती है या एक पदार्थ या मटेरियल है जो कि आपको उसके फेफड़ों में डालना होता है, जिससे कि वो जो उसकी कमी है उस सब्सटेंस की उसको बाहर से पूरा किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुदरती तौर पर ये फेफड़े में मौजूद होता है सल्फेक्ट?
0: ये सर्फेक्टेंट कुदरती तौर मौजूद होता है, लेकिन जब बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो उनमें कम होता है। ये 28 वीक ऑनवर्ड्स बनना शुरू होता है अच्छे से, और जो बच्चे 30 वीक्स या 32 वीक्स के ऊपर निकल जाते हैं उनमें इतना जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो बच्चे 32 वीक्स हैं उनमें हमेशा एक डर रहता है, मतलब ये पता लग चुका है कि अगर इन मदर्स को जिनके बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस समय से पूर्व पैदा होंगे उनको एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाए प्रॉपर डोजेज में तो लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है।
1: ये जो आप बता रहे हैं दवाइयां बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, तो ये माँ को दी जाती है?
0: ये माँ को इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये अंदेशा होता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है तो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इंजेक्शन 2 दिन का कोर्स है उसको करके, तो उसमें लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि बच्चे को एनआरडीएस यानी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो या सर्फेक्टेंट की कमी पड़े।
1: यानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो ये फैसला लेती है?
0: वो फैसला लेती है।
1: अच्छा।
0: कि अगर उनको ये रहता है कि इसमें जल्दी डिलीवरी हो सकती है तो वो माँ को ही लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसके लगाने के ये तो फायदा है ही लंग्स की मेच्योरिटी, और भी फायदे हैं जैसे कि गट की मेच्योरिटी बढ़ती है और ब्रेन की भी मेच्योरिटी बढ़ती है। और ब्रेन पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा तो हमेशा एक डर रहेगा कि ब्रेन को इंसल्ट ना हो जाए। दूसरी चीज ब्रेन में हेमरेज होने का, जिसको बोलते हैं आईवीएच इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वो होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, जो आप दवाइयां बता रहे हैं ना स्टेरॉइड कहा जाता है, और स्टेरॉइड ये कहा जाता है कि बहुत नुकसानदायक होता है?
0: नहीं नहीं, ये तो कोर्स ही ना, पर्टिकुलर डोजेस दी जाती है वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे जैसे स्टेरॉइड नुकसान करते हैं ब्लड प्रेशर में शुगर में, लेकिन ये स्टेरॉइड बच्चे को आपको हेल्प करने जा रहे हैं, और अगर माँ को शुगर है या माँ को ब्लड प्रेशर है तब भी ये स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: जिससे कि बच्चे को फायदा दे सके।
1: यानी अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये तय करती है कि जो गर्भवती माता है उसे स्टेरॉइड के रूप में बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन दिया जाना है तो ये उचित है
0: जी,
1: ये बच्चे के हित में है।
0: अभी एक दवाई जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट
1: जी जी,
0: वो भी एक्लेम्सिया के मदर्स को पहले देते थे, अब जहाँ पे हमें सस्पेक्ट हमें डाउट अंदेशा रहता है कि बच्चे को ब्रेन इंसल्ट हो सकती है, बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है या बच्चे को बर्थ एनोक्सिया हो सकता है, ये डर है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत करे, तो उन मदर्स को मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है जिससे कि बच्चे में जब पैदाइश होती है तो उनके दिमाग को नुकसान कम होता है।
1: अच्छा। ये बर्थ एस्फिक्सिया और ये जो नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें इसका मतलब क्या होता है?
0: देखिए, बर्थ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना।
1: अच्छा।
0: है ना, तो बच्चा पैदा होते समय किसी कारण से अगर ठीक से सांस नहीं ले पाया, जैसे कि पैदाइश में ज्यादा टाइम लग गया
1: जी,
0: या गर्भ में वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया
1: जी,
0: या बच्चे ने कई बार पॉटी पेट में कर ली
1: जी,
0: लैटिन पेट में कर ली तो वो सांस में ले ली, या बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस होने लगा
1: जी। डॉक्टर साहब, ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर हमारे श्रोता इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो कई ऐसी बातें हैं जो कि शिशु पैदा हुआ है उसे देख करके वो समझ सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, और जहां तक इलाज की बात है एक योग्य चिकित्सक ही इन परिस्थितियों में बच्चे की जान बचा सकता है। जहां तक डॉक्टर साहब चिकित्सा की या इलाज की बात है, तो माँ के पेट में जो बच्चे को माहौल मिलता है जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां अगर इन बच्चों को नहीं मिलेंगी जो कि 24-25 सप्ताह में पैदा हो रहे हैं, तो क्या ये बाकी इनका जो विकास होना है, शारीरिक विकास होना है या अंगों का विकास होना है, वो संभव हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो किस तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है, उनकी क्या भूमिका होती है?
0: जी, अब पंडित जी आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुदरत की बराबर इंसान तो नहीं कर सकते
1: जी,
0: जो माँ से देखभाल मिलती है एक नवजात शिशु या प्रीमेच्योर बच्चे को, वो मशीनों के द्वारा इंसान की कोशिश तो होती है, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम वैसा माहौल वो चीज दे
1: जी,
0: लेकिन नियर नॉर्मल पहुंच जाते हैं, एब्सोल्यूट तो उतना नहीं हो सकता। तो ये प्रीमेच्योर बच्चों को रखने के लिए जो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऐसी मशीन है जिनमें कि हम लोग केयर करते हैं ह्यूमिडिफाई

0: जो आर्द्रता है उसको कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं,
1: यानी जो नमी
0: ह्यूमिडिटी, हाँ नमी को और टेम्परेचर तापमान को दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इंक्यूबेटर के बाद एक और दो मशीन है जिनमें डुअल सिस्टम होता है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी की जिसको ओमनीवेड बोलते हैं या जिराफ बोलते हैं, उसमें आप एज ए ओपन सिस्टम भी काम कर सकते हो, मतलब उसे खोल के भी और दूसरा उसको एज ए इंक्यूबेटर भी यूज कर लेते हैं।
1: जी आपने बताया डॉक्टर साहब कि जिराफ ओमनीवेड, ये शब्द सुना सुनाया सा हो गया हमारे श्रोताओं के लिए। जिराफ के विषय में ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को अपने पेट में ही रख लेता है वापस, जो एक खाल सी होती है लटकती रहती है, शायद वही आशय होगा इस मशीन से भी।
0: जी जी बिल्कुल ठीक कहा है, और उसी तरह से जैसे कि जिराफ के अंदर एक पॉकेट होती है और उसमें बच्चे को वो अपने, उसका जिराफ का बच्चा भी बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत प्रीमेच्योर बच्चा होता है, और उस थैली में बच्चा वो रहता है सुरक्षित, वहां उसको दूध पीता रहता है, उसका तापमान कंट्रोल रहता है और माँ उसका ध्यान रख पाती है।
1: जी जी
0: तो उसी को शायद ध्यान रखते हुए इस मशीन का इन्होंने नामकरण किया है।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रयास आप बता रहे हैं कि किया जाता है, जैसा माँ के पेट में गर्भ में बच्चे को जो माहौल और जो वातावरण मिलता है वही वातावरण बच्चे को बाहर मिल पाए, ये प्रयास किया जाता है और प्रयास में सफलता भी मिलती है। एक श्रोता इसी बीच लाइन पर आ गए, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं।
0: हेलो।
2: हेलो
1: जी, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं। जी जी, आकाशवाणी बरेली से आपकी बात हो रही है, डॉक्टर कुलदीप गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी जी मुन्ना लाल जी, आपकी कॉल का इंतजार रहता है हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी, हमारे इस कार्यक्रम में
0: बड़ा रेगुलर श्रोता है आपके।
1: जी
0: नियमित श्रोता।
1: जी जी, आज क्या प्रश्न है आपका?
2: जी
1: जी
0: जी, चलिए एक सवाल, दूसरा
2: मशीनों की आवश्यकता पड़ती है।
0: अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल आपका?
2: सर एक और जानकारी लेना चाहेंगे, प्रीमैच्योर बच्चों में नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
0: चलिए चलिए, देखिए आपके तीन सवाल आपने पूछे हैं। तो प्रीमैच्योर बच्चा कब कहते हैं? जब बच्चे का जो जन्म है वो अगर गेस्टेशनल टाइम है या गर्भा पीरियड है वो 37 वीक्स से यानी 37 वीक से कम का है, तो उस बच्चे को प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। दूसरा सवाल था इनका पांडे जी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं,
1: मशीन
0: जो, हाँ मशीनें कौन सी आती हैं? वो तो ही समस्याएं इन बच्चों को इसलिए आती हैं कि इनके जितने अंग हैं वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने समय के साथ हो जाने चाहिए। अब जब ये विकसित नहीं हो पाते तो हर अंग अपनी दिक्कत देता है, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत आती है सांस लेने में, जिसको कि HMD बोलते हैं, ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है, कई बार हेमरेज होने का डर रहता है, ऐसे आंतों में दिक्कत आती है दूध पचाने में, खासतौर से अगर माँ का दूध ना दिया जाए, इन बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाए तो NEC यानी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर रहता है। फिर इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इनको अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी वगैरह जरूरत होती है। फिर बच्चों को इनको आपका अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत, वेंटिलेटर्स भी न्यूनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर, मतलब जो सिर्फ नवजात शिशु में ही इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं, वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि 1 ML टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ML 3 ML का, क्योंकि जो 6 ML पर KG के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ML एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में ही इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है आपके न्यूनेटल केयर के लिए। और जहां तक आपने सवाल किया है, इनको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार आपका इकोकार्डियोग्राफी वो मशीन होना चाहिए बेड साइड, जिसमें कि इन बच्चों को अक्सर समस्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की यानी PDA की, तो PDA हुआ, NEC हुआ, फिर अब बाद में इनको जरूरत पड़ती है आंखों के चेकअप के लिए या हियरिंग की जरूरत पड़ती है, हियरिंग इनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इनकी हियरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ROP होने का डर रहता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, इनको खून की कमी होने का डर रहता है, इसको बोलते हैं एनीमिया और प्रीमेच्योरिटी। तो इस तरह तरह की समस्याएं आती है इनको कि डिफरेंट मशीन, जहां आपने सवाल किया INO का, आईनो प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आईनो जो इस्तेमाल

0: थी नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी, वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती, जो कि टर्म बेबी में खासतौर से उन बच्चों में जो जिनकी पैदाइश मुश्किल से हो, जिसको हम बोलते हैं बर्थ एनोक्सिया बर्थ एस्फिक्सिया, उन बच्चों में जरूरत पड़ती है, या उन बच्चों में जो कि फेफड़ों में गंदा पानी ले लें जिसको बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अगर तो बर्थ एस्फिक्सिया और मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बच्चों में ये मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो नवजात शिशु वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्लक्चुएटिंग होता है उसका ऑक्सीजन लेवल, आप उसे टच करो या उसका सैंपल लो तो उसकी ऑक्सीजन गिरने लगती है और उसको कई बार ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो बहुत कम जाता है, लंग्स की तरफ इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स को ब्लड कम पहुंचता है तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती। तो ये सिलेक्टिव पल्मोनरी वैसोडायलेटर है, मतलब ये लंग्स के जो ब्लड जा रहा है उन ब्लड वैसो उन धमनियों को और नसों को चौड़ा कर देता है जिससे कि लंग्स को ब्लड ज्यादा जाता है और बच्चे को ऑक्सीजन बढ़ाने में आसानी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी जो अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों में कभी जरूरत पड़ती है वरना ज्यादातर टर्म बेबी में और उन बच्चों में जो पैदा होने के समय जिनको मुश्किल आती है या उन बच्चों में जो पैदा होने से पूर्व या पैदा होते समय फेफड़ों में गंदा पानी ले लेते हैं।
1: जी और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी?
2: एक प्रश्न और है सर, जो अखबार में निकलता है ना बगैर खून लिए फ्लोरविन का, तो वो सर कौन सी मशीन है जो बगैर खून लिए सीरम फ्लोरविन हो जाता
0: है? वो उसके लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलोनोमीटर। तो आपका स्किन से या फिर ईयर लोब्यूल से आप उसको अगर रीडिंग वहां से नाप सकते हैं उससे आपको एक पीलिया कितना ये आइडिया लगता है, लेकिन उस मशीन से ये पता नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है। अच्छा, और तो प्रीमेच्योर बच्चों की जो समस्याएं ये होती है, और एक बहुत बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों में होती है इन्फेक्शन होने की, खासतौर से सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं और कई बार इन बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
1: जी
0: ठीक है,
1: जानना है,
2: बहुत बहुत जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के शायद समझ से परे हों, लेकिन आप उनके उत्तर जान लेते हैं, प्रश्न भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न बताएं।
0: हेलो,
3: हम राजपुर कला से बोल रहे हैं साहब,
1: बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी आज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने रेडियो पर सुनी ही कि रेडियो हेल्पलाइन में समय से पहले पैदा भाई बच्चन के बारे में बताई जाएगी।
1: जी
3: तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे बच्चा 8 या 7 महीना को जन्म हो जाए
1: जी,
3: तो बाकी मतलब सही तरीका से घर पर ही जन्म हो है और वो मतलब सही सांस वास सही ले रहे हो, लेकिन अच्छी तरीका से जैसे तंदुरुस्ती ना बच्चा एकदम बढ़वार पर सही हो रहा है बना है खा रही है, तो जाके लिए अब हमें क्या करने हो जो डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह लेना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब लाइन पर है, अगली आवाज डॉक्टर साहब की।
0: जी ऐसे है, जो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया है, तो इसका वजन कितना कितना समय से पूर्व पैदा हुआ?
3: लगभग 8 महीना को जन्म है होगा।
0: और वजन कितना है इसका?
3: वजन तो ऐसी हो जाए मेरी ना चाहे 120 के करीब।
0: देखो जो बच्चे 1 किलो 600 ग्राम से कम वजन के होते हैं वो अपने आप दूध पीने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को दूध आपको पिलाना पड़ेगा या तो चम्मच कटोरी से या फिर हम लोग कहते हैं एनजी फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो तीसरा तरीका है कि इनको पलैदी से दूध पिला सकते हैं, तो माँ का दूध ही इनको पिलाना चाहिए, अगर ऊपर का दूध पिलाएंगे तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो माँ का दूध अगर 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा है तो इसको आप करीब कितने दिन का हो गया?
3: लगभग 22 दिन को।
0: 22 दिन का हो गया, तो इसको करीब 1 किलो पे 160-180 ml दूध आपको पिलाना है 24 घंटे में, तो आपको करीब 20-22 ml 23 ml दूध पिलाना है और डेली दूध बढ़ाना है। तो ये बच्चा अपने आप तो दूध पी नहीं पाएगा माँ से डायरेक्ट, तो आपको या तो दूध माँ का निकलवा के चम्मच कटोरी से पिलाना होगा या पलादी से, या आप किसी हॉस्पिटल में तो आपको एनजी डलवा के एनजी फीडिंग करा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप एनजी इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पढ़वा लीजिए और घर पे फीड करिए, बाकी इसके तापमान का ध्यान रखिए, इसको इन्फेक्शन ना होने पाए उसका ध्यान रखिए, और अगर 20-25 काल ले गया बच्चा तो बच्चा स्वस्थ हो जाना चाहिए।

0: निप्पल ना आते वो प्लास्टिक वाली
1: ना, उससे दूध नहीं पिलाएंगे, वो निप्पल वाले आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर उससे मतलब दूध पिलाएंगे तो।
0: शुरू शुरू में तो साहब रुई से मतलब जो है घर में गांव में पिया दो, अब वो निप्पल से जो है शुरू कर दो है, तो अब पी तो निकलो लेकिन समस्या क्या आएगी वो उतनी तरीका से जैसे ना बच्चा एकदम हिचपुसो चलवाता तंदुरुस्त उस तरीका की।
1: देखिए निप्पल से दूध पिलाएंगे तो दिक्कत ये आएगी, बच्चा निप्पल से दूध पीने में ताकत का इस्तेमाल करता है और जो अपनी ताकत वो दूध पीने में लगा देगा तो वो ताकत उसको वजन बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नली से दूध पिलाएंगे या चम्मच के टूटी दूध पिलाएंगे तो उसकी वो ताकत बचेगी और वो ताकत भी उसको वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप अगर निप्पल से दूध पिलाएंगे तो कई खतरे हैं, एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है, दूसरा उसको वजन बढ़ाने

0: एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है, दूसरा उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत आएगी।
1: अच्छा तो साहब आपकी सलाह के अनुसार चलो दूध की बात जो होगी, लेकिन बागो सही तरीका से तंदुरुस्ती मिले जागे ले हमने कहा करने पड़ेगा।
0: देखिए दो तीन चीजें हैं, अगर बच्चे का वजन 1 किलो आप कुछ बता रहे हैं तो एक तो उसको एक बार डॉक्टर दिखा के एक उसको विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन, ये दवाइयाँ चलनी चाहिए। अच्छा पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। तीसरा उसके बच्चे का तापमान हमेशा, आप अगर बच्चे को छुएं तो बच्चा आपको गर्म लगना चाहिए, अगर बच्चे के हाथ पैर आपको छूने पर ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को मतलब तापमान कम हो रहा है, और बच्चे की अगर बॉडी भी ठंडी लग रही है, आपको शरीर भी ठंडा लग रहा है, तो इसका मतलब तो तापमान बहुत कम हो गया। तो इसके लिए एक तरीका ये भी करते हैं जिसको हम लोग कंगारू मदर केयर बोलते हैं, KMC केयर। तो माँ या घर में कोई और है सदस्य है जो बच्चे को हमेशा अपनी छाती से बिना कपड़े के लगा के रखे, गाय भैंस का दूध ये कुछ भी नहीं देंगे 6 महीने तक आप।
1: अच्छा हाँ, जो पड़ोस में है जैसा कह रहे कि बकरी का दूध है, लेकिन कोई बात ना है तो आप देंगे तो नुकसान दे तो
0: नहीं, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए है, आपके बच्चे के लिए नहीं है।
2: जी
1: बिल्कुल सही बात है,
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, 6 महीने तक माँ के दूध की सिफारिश की जाती है, लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर साहब, जब अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य है, और
0: अमृत तुल्य है, अमृत है
2: जी, वो अमृत ही पिलाना चाहिए,
0: और हर माँ का दूध बच्चे के हिसाब से होता है, जिस माँ का बच्चा 26 वीक का है उसका दूध उसके बच्चे के हिसाब से।
2: अच्छा ये बात,
0: और अगर जिसका बच्चा टर्म बेबी है, जिसका फुल टर्म बेबी है, उस माँ का दूध अलग होता है।
2: अच्छा।
0: तो ये टेलर मेड होता है, जो नवजात शिशु है उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी माँ को दूध होता है, और उतना ही होता है जितना जरूरत होती है, तो आप ऊपर का जब दूध पिलाने की कोशिश करते तो माँ का दूध कम हो जाता है।
2: अच्छा।
0: एक चीज, और इसलिए एक माँ दूसरी माँ को दूध, अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसको उसी माँ का दूध चाहिए जो उसकी रियल में माँ है।
2: अच्छा,
0: या उसी उतने हफ्ते की डिलीवरी हुई है,
2: यानी जिसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ है उसी माँ का दूध उसके।
0: हाँ वो टेलर मेड है, जैसे आप दर्जी के पास जाते हो तो आपके हिसाब से पैंट शर्ट बनाता है, रेडीमेड नहीं है ये, है ना
2: डॉक्टर साहब। ये और बताइएगा, कई बार महिलाएं कहती है जो प्रसव के उपरांत दूध नहीं आता माँ को, तो ये बात वाकई में सत्य है, विज्ञान क्या कहता है इस विषय में?
0: देखिए ये सिर्फ इंसानों की सोच है कि, और कोई प्राणी तो ये सोचता ही नहीं है
2: जी,
0: कि दूध कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, सब माँ के दूध पे पूरी कुदरत चल रही है, कोई ऊपर प्रकृति ने कोई कहीं छेड़छाड़ नहीं करता, इंसान थोड़ा समझदार हो गया वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वो अपने फालतू सोचने की कोशिश करता है कि माँ को दूध नहीं हो रहा, कम हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन माँ को दूध पर्याप्त होता है। हर माँ को, जिस माँ के 2 बच्चे होते हैं उसको, उस माँ को 2 बच्चे के हिसाब से दूध होता है
2: जी,
0: और जब बच्चे का जैसे शुरू का दूध अलग होता है तो बोलते हैं कि शुरू के 7-8 दिन जो दूध होता है वो अलग होता है
2: जी,
0: और शुरू के 2-3 दिन बिल्कुल दूध अलग होता है जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं
2: जी,
0: और बच्चा जब 15 दिन को जाता है तो वो दूध अलग हो जाता है।
2: अच्छा।
0: तो वो हर दिन के हिसाब से दूध का क्वालिटी बदलती जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वो सब चेंज होते जाते हैं
2: बच्चे की आवश्यकता के अनुसार।
0: जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी माओ को दूध में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है, उनको विकसित होना होता है
2: जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब चूंकि अभी भी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमा हमारे सामने है, फिर भी हम चाहेंगे आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कोई खास संदेश, हालांकि कई ऐसे संदेश हैं जो हमारे श्रोताओं को आज जरूर मिले होंगे, फिर भी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए मैं कहना चाहूंगा, एक तो जब भी कोई जो प्लानिंग हो आपकी गर्भधारण करने की, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल।
2: अच्छा।
0: ये नहीं कि साहब माँ गर्भ धारण कर लिया मैंने, आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, माता पिता दोनों को डॉक्टर से अपने मिलके प्लान करके बच्चे को आप लाएं दुनिया में। दूसरी चीज, माँ का रेगुलर चेकअप कराएं, अपने लेडी डॉक्टर को समय समय पर जब जब आपको बुलाएं, माँ को समय से टीके लगवाएं, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ की यूरिन, माँ की शुगर, माँ का थायराइड और जो भी आवश्यक हो वो जांच कराएं, है ना। फिर उसके बाद उसका जो जन्म है वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन तुरंत मिल जाए। बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा होने का अंदेशा है तो माँ को स्टेरॉइड कोर्स के हिसाब से लगना चाहिए, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन
2: जी।
0: और बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा हो गया उसके बाद जो उसे देखभाल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉपर उचित देख

0: माल मिल सके। सिर्फ नर्सरी में रख देने से किसी बच्चे की परवरिश नहीं होती, उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है, और उसको जब हम बचा के दे रहे हैं तो उसका सर्वाइवल इंटैक्ट है या नहीं, उसको हम बच्चा अगर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, बच्चा हमारी कान सही होना चाहिए, उसकी हियरिंग सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसकी देखने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसका आईक्यू सही होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह एक ऐसे सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे सारी सुविधाएं हो। आप अगर ये सोच के कि नर्सरी में हमने बच्चा रख दिया सब जगह नर्सरी एक सी है सब जगह एक सा इलाज होता है, ये गलत एक धारणा है, इस धारणा से बचें। तो और हर बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, समय से उसको टीके लगवाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें, और कोई घर में अगर किसी को खांसी बुखार है वो बच्चे से दूर रहे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षित होने का प्रमाण भी देना चाहिए। जो बातें आपने बताई हैं अगर हमारे श्रोता ध्यान रखते हैं तो उनके नवजात शिशु एक अच्छे युवा, हम ये कहेंगे कि
0: देश के लिए एक अच्छे नागरिक,
1: देश के लिए अच्छे नागरिक बन करके आगे आएंगे,
0: और माँ का दूध पिलाएं तो 2-4 आइंस्टीन में पैदा होंगे देश में।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर, एचएफएनसी और ईयर वो मशीनें,
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय था समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका, शंकाएं एवं समाधान। आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को है। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रमों से जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई, माफ कीजिए, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
5: प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार से हास्य कविता पाठ।
6: माँ शारदा की वंदना में एक कुंडलियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मई हर की माँ शारदे करूं सदा गुणगान, ज्ञान चक्षु वरदान दो अम्ब सदा हो मान, अम्ब सदा हो मान ज्ञान की तुम हो देवी, रचना लिखता माँ तू आपका बनकर सेवी, कहीं प्रेम कविराय सुभिक्षा से मंगल कर, ब्रह्म ज्ञान का दान दीजिए माता मैहर। भगवान राम, सीता और जयंत प्रसंग पर दो कुंडलियां प्रस्तुत हैं। चुन चुन कर श्री राम ने भांति भांति के फूल, श्रृंगारित सिय को किया निज अभिरुचि अनुकूल, निज अभिरुचि अनुकूल रूप का गाधर आया, चोंच मार सिय चरण जयंता रक्त बहाया, किया सीख संधान काग उड़ चला हृदय गुन, मिला न कोई ठौर राम हंते रिपु चुन चुन। नारद मिले जयंत से दीन दुखी अति जान, शरणागत हो राम के राय हमारी मान, राय हमारी मान दया के सागर प्रभु जी, चरण शरण में गए करें रक्षा रघुवर की, दंड दिए प्रभु राम नेत्र कर एक नदारद, रख।

का प्राण गए निज गृह मुनि नारद, रख जयंत का प्राण गए निज गृह मुनि नारद। जल प्रदूषण से संबंधित कुछ कुंडलियां समर्पित कर रहा हूं। बंधे में घिरती हुई नालों में तब्दील, सई गोमती घाघरा होती सबको फील। सही होगी यदि नियत करें प्रदूषण दूर, यहाँ पर हर एक कीमत। कहीं प्रेम कविराय बंद हो गोरख धंधे करके बंद सुरक्षित होंगे बंधे। गंगा जल के पान से खुले स्वर्ग के द्वार, उल्टी दस्त जुलाब से मिले मोक्ष हर बार। कानपुर हो या पटना, दूषित बहती गंग नित्य होती यह घटना। कहीं प्रेम कविराय सदा सच होता नंगा, करें प्रदूषण दूर बिवस रोती माँ गंगा। यमुना कल कल बह रही झेल प्रदूषण वार, श्वेत फेन से है भरी दूषित जल की धार। शहर के नाले गिरते शोधित जल हर बार, फेल वह करते फिरते। कहीं प्रेम कविराय किसी को कोई गम ना, हुआ कलंकित काल प्रदूषित देखी यमुना। मलवा सामुद्रिक भरा दूषित जल संसार, जीव जंतु मरने लगे करते हाहाकार। लुप्त होते कुछ प्राणी, संरक्षित हो जीव समय की दुर्लभ वाणी। कहीं प्रेम कविराय कभी मत चाटे तलवा, नीति बने अविराम हटे सागर का मलवा। मित्रों, दान तो सभी लोग करते हैं, पर एक ऐसा दान भी है जो जीवन दान देता है। इस स्वैच्छिक रक्तदान विषय एक दो कुंडलियां प्रस्तुत कर रहा हूं। होता जो व्यापार यदि रक्तदान का काम, व्यवसायी बन बेचते करें इसे बदनाम। रक्त से रोग चुनेंगे, पंसारी का काम चिकित्सक शीस धुनेंगे। कहीं प्रेम कविराय अस्मिता मानो खोता, रक्तदान बिन शुद्ध रक्त क्या संभव होता। अवसर आया है अभी करें रक्त का दान, नेक कार्य पर हित करें जीवन दान महान। प्रेम जनहित में भरिए रक्तचाप नियंत्रित हो, मधुमेह से लड़िए। कह प्रवीण कविराय रक्तदानी मिल जमकर, कर लें दान महान आज ही अनुपम अवसर। मित्रों, हिंदी भाषा के समर्थन के लिए, विकास के लिए एक कुंडलिया प्रस्तुत है। भाषा चुनिए वोट से लोकतंत्र दरबार, डालें मत अपना सभी प्रजातंत्र आधार। अधूरी सबकी आशा, हिंदी भाषा बने राष्ट्र भारत की भाषा। कह प्रवीण कविराय लोकनायक से आशा, हिंदी चुनकर बने आज भारत की भाषा। सहमत हों सब राज्य मिल आवश्यक यह कार्य, पूर्ण राष्ट्रभाषा बने हिंदी ही स्वीकार्य। राष्ट्र अपना ये माने प्रजातंत्र आधार, इसी को दिल से जाने। कह प्रवीण कविराय वने संसद में जनमत, हिंदी को दे मान राज्य सारे हूँ सहमत। मित्रों, खेलों की सब बातें करते हैं, इसमें ओलंपिक खेल सर्वश्रेष्ठ है। प्रस्तुत है कुंडलियां। प्रतियोगी हो विश्व में ओलंपिक का खेल, सर्वश्रेष्ठ देकर करें स्वर्ण पदक से मेल। तेज सबसे कहलाएं, सबसे ऊंचा कूद साहसी जब इतराएं।

0: खेल कराता मेल भावना हो सहयोगी, हिस्सेदारी प्रमुख खेल खेलें प्रतियोगी, हिस्सेदारी प्रमुख खेल खेलें प्रतियोगी।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रवीण कुमार से हास्य कविता पाठ। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
3: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
4: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति के पथ, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में पेश है गजलें। कलाकार हैं गुलाम कासिम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें आप सुन रहे हैं गजलें और कलाकार हैं गुलाम कासिम।

0: अभी आप सुन रहे थे गुलाम कासिम की आवाज़ में ये गज़ल। इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम चित्रपट से बस थोड़ी देर में।

इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं मिलन, सूरज और चंदा, प्रतिज्ञा। आवाज लता मंगेशकर की थी, शब्द रचना आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के थे।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को

0: देश वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में

शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं।

0: भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने

0: कहा कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी
2: भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में 10 नंबरी फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का यह अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में है, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म डार्लिंग डार्लिंग।

सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत, अब क्या होगा इस फिल्म से ये गीत सुनिए, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ।

करे महफिल मेरा। आइए आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गाना, शकील अहमद का लिखा हुआ, संगीत आनंद शंकर का है, गायक स्वर मुकेश और आरती मुखर्जी के।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें ये पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहां वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या का राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार

केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी। इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

0: वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।
1: तनन, तनन, तनन।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों रहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका।
2: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम इनहेरिटेड हिज म्यूजिकल फाउंडेशन एट एन अर्ली एज। He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi, it reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Raag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of
2: Main Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवार्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है